हो पैर समाध सना हो ज्ञान गए आसन चढ़यो धर्म तनक कर गयो भगत सील है सर लड़यो पै निरपो हर अटल मान शब्द गुर ने जा गड्यो काम क्रोध लोभ मोह अवत पंच दूत बिखंडयो पलो पुहाल तेजो तना निरपतनाथ नानक बार गुर अमरदास सच सल पान तय दल जितो इव युद्ध कर कण हर बूंद बसो रो मावल कुसुम बसंत गणंत न आवै रस करण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे उदर ध्यान ज्ञान सदगुर के।

जंपो गुण बेमल सुजन जन केरे आमे नाम जा को फुरिया। इन सदगुर से शब्द रस पाया नाम निरंजन उर थरिया हर नाम रसक गोविंद गुण गाहक त्याग तत् संत सरे कब काल ठकर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे छुड़त प्रवाह अमे अमरा पद अमृत सरोवर सद परया ते पीवे संत करे मन मज्जन उब जिनो सेवा करिया तिन पाओ निवार अनपय पद दीना शब्द मात्र ते उदर तरे कब काल ठगर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे सदगुर मत गूढ़ बिमल सत्संगत आत्म रंग चिलूल पया जाग्या मन कवल सहज प्रकाशया अपय निरंजन करे लहा सदगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया इस प्रसाद फल पंच करे कब काल ठगर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे आन पो उन्मान अगले लागी पारस फेटिया सहज करे सदगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए पंडार परे मिट्या जिन मात मरण पौ भागा चित लागा संतोख सरे कब काल ठकर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे अपार परे पायो अपार निद अंतर तारयो दो पंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारयो सदा चाहे हर पाए प्रेम रस आपे जाने सदगुर कै प्रसाद सहज से ती रंग मान नानक प्रसाद अंगद सुमत गुर अमर अमर वरतायो गुर रामदास कल उच्चर ते अटल अमर पद पायो संतोख सरोवर बस अमे रस रसन प्रकाश मिलत सा उपजय

सदगुर प्रमाण बिद न सिरयो जग जस दूर बजायो। गुर रामदास कल उचरै तै अपाए अमर पद पायो। जग जितौ सदगुर प्रमाण मन एक तिहायो। तन तन सदगुर अमरदास जिन नाम दिरड़ायो। नाम रिद नाम निधान रिद सिता की दासी। तै सरोवर मिलयो पुरख भेट्यो अविनासी। आदले भगत जित लग तरे।

अपरपार मन गुर शब्द वसायो, गुर रामदास कल उच्चरै तै जगत्य उदाहरण पायो, जगत्य उदाहरण नव निधान भगते पौतारण, अमृत बूंद हर नाम बिस्की बिहे निवारण, सहज तरोवर फल्यो ज्ञान अमृत फल लागे, गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बड़ भागे, ते मुक्ते भय सतगुर शब्द।

की सेव सेव सिद्ध साधक तोर असुर गण तरे ते तीस गुर बचन सुन कन रे सुन तरे ते संत हित भगत गुर गुर कर तरे उपरे लाद गुर मिलत मुन जन रे तरे नारदास संकाद हर गुरमुखे तरह एक नाम लग तजो रस अन रे दास बेंत कहे नाम गुरमुख लहे गुरु गोर गुरु गोर गुरु जप मन रे श्री गुरु साहेब सब ऊपर करी कृपा सहयुग जिन त्रू पर श्री प्रहलाद भगत को धरियं हस्त कमल माथे पर तरियं अलख रूप जी लखिया ना जाई साधक सिद्ध सगल सरनाई गुर के बचन सत जी धारो मानस जन्म दे निस्तारो गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए गुर प्रसाद प्रापाई है गुर बिन मुक्त ना होए गुर नानक निकट बसे बनवारी ते लैणा ताप जोत जग तारी लैणे पंथ धर्म का किया अमरदास पल्ले को दिया ते श्री रामदास थोड़ी सिर थप्यो हर का नाम अखय निद अप्यो अप्यो हर नाम अखय निद चौ जुग गुर सेवा कर फल लईं बंधे जो चरण शरण सुख पावे परमानंद गुरमुख कहियं प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी आदि रूपोखण परण सतगुर गुर सेव अलागत जाकी श्री रामदास तारण तरण जे अमृत बजन बाणी साधु जन जप करब चित चाओ आनंद नित मंगल गुर दर्शन सबल संसार संसार सबल गंगा गुर दर्शन परसन परम पवित्र गते जीते जम लोक पत जे प्राणी हर जन शिव गुर ज्ञान रते रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ घर मुन बंचे जाकी शरण सतगुर गुर सेव अला कद जाकी श्री रामदास तारण तरण संसार अगम सागर तुलखा हर नाम गुरु मुख पाया जग जन मरण पगा ए आई ए प्रतीत प्रतीत ही आई जिन जन कहे तिन को पदवी उच पई तज माया मोह लोभ अर लाल काम क्रोध की बिरथा गई अब लोकया ब्रह्म परम सब छुटकया देव दृष्ट कारण करण सतगुर गुर सेव अल

तीन लोक रहे आसमाए, सुते सिद्ध रूप तरयो, सहन कै सहाय जियो, सत साच श्री निवास, आद पुरख सदा तुही, वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे जियो, सतगुरु सतगुरु, सतगुरु गोविंद जियो, बले शलन सबल मलन, भगत फलन कान कुर, नेकलंक बजी डंक, चढ़ू दल रविंद जियो, राम रावण दुर्त दवन, सगल पवन कुसल करण, सर्ब पूत आप ही देवाद देव, सहस मुख फनिंद जियो, जर्म कर्म मश कश हो ब्रह, यमुना के कूल खेल खेल लो जिन गिंद जियो, नाम सार ही ए तार, तब कार मान गए अंत, सतगुरु सतगुरु सतगुरु गोविंद जियो, श्री गुरु श्री गुरु सत जियो, पुर कया मान निज निधान, सत जान मंत्र एह, निस्बासर होए कल्याण, लह परम गत जियो, काम क्रोध लोभ मोह, जन जन सुषाड़ तोह, होमे का फंद काट, साध संग रत जियो।

सदकार मन गए अंध, श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो, सेवक कहे भरपूर जुग जुग, वाहगुरु तेरा सब सदका, निरंकार प्रसदा सलामत, कह न सके को तू कद का, ब्रह्मा विष्णु सिरे ते अगणत, तिनको मोह भया मन मद का, 84 लख जोन उपाई, रिजक दिया सबहू कौ तद का, सेवक कहे भरपूर जुग जुग, वाहगुरु तेरा सब सदका, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, आपे हसे आप ही चितवे, आपे चंद सूर परगासा, आपे जाल आपे थल थमन, आपे किया कड़ कड़ बासा, आपे नर आपे फुन नारी, आपे सार आप ही पासा, गुरमुख संगत सबे विचार हो, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना, तू जल थल गगन पयाल पूर रहया, अमृत ते मीठे जाके बचना, मन ब्रह्मादक रुद्रादक, काल का काल निरंजन जचना, गुर प्रसाद पाइगे परमार्थ, तत्संगत स्थिति मन खजना, किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाह गुरु तेरी सब रचना, अगम अनंत अनाद, आज कोय न जाने, शिव ब्रंतर ध्यान, नितेज से वेद बखाने, निरंकार निर्वैर, अवर नहीं दूसर कोई, पंजन गण समत, तरन तारन प्रसोई, नाना प्रकार जिन जग कियो, जन मथरा रसना रस है, श्री सत नाम करता पुरख, गुर रामदास चित्ते बस, गुरु समरथ गय करिया त्रोव, बुद्ध सुमत सुमारन कहो, हुन त्रम तुजा फैरंत सदा, अग पुंज तरंग निवारण कहो, मथरा जन जान कई जी साच, तो और कछु ना विचारन कहो, हर ना भूत बड़ो कल मैं, हव सागर पार उतारन कहो, संत की सत संगत संग।

भाग पले उनके मन इच्छित ही फल पावत है। रब के सुध को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुधा पर पूर्ण शब्द तरंग प्रगट दिने आगर। गैर गंभीर अथा अत बड़ सुबर सदा सबिद रतनागर। संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। कल जुग दुर्त दूर कर बे कौ दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जाको मन ध्यान तरे फिरत सगल जुग कब को पावे आत्म प्रगास कहो। वेद बाणी सहित बिरंजस गावे जाको शिव मन गए न तजात कबलास कहो। जाको योगी जति सिद्ध साधक अनेक ताप जटा जूट पेख किए फिरत उदास कहो। सो तिन सब गुरु सुख पाए कृपा धारी जी नाम की बड़ाई दई। गुरु रामदास को नाम निधान ध्यान अंतरगत तेज पुंज ते लोक प्रगस। देखत दर्श पटक परम भजत दुख परहर सुख सहज बेगस। सेवक सिख सदा अत लुभत आल समूह जो कुसुम सुबासे। वैद्यमान गुर आप थप्यो थेर ताचो तख्त गुरु रामदास। तारियो संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो सुमरत। हुन कीर्तवंत सदा सुख संपत रिधर सिद्ध न छोड़े सत। दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास कहो त्यो तथ। ताहे का प्रवाह काहू की जाके बसीस तरयो गुरगत। तीन पवन पर पूर रहो सोई अपन सरस कियो न जगत कोई। अपन आप ही उपायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो। पायो नहीं अंत सुरे असुरे नर गण गंधर्व खो जंत फेरे। अविनाशी अचल अजो नहीं संभव पुरखोत्तम अपार परे। कारण कारण सुमरत सदा सोई सर्व जी मन त्यायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तय घर परम पद पायो। सदगुर नानक भगत करी एक मान तन मन तन गोविंद दियो। अंगद अनंत मूर्त निज तारी अगम ज्ञान रस रस्यो हीयो। गुर अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो कर त्यायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तय घर परम पद पायो। नारद त्रू प्रहलाद सुदामा पुप पुत हर के जोगण। अम्बरीक जय देवतर लोचन नामा अवर कबीर पण। तिनको अवतार पयो कल पिंतर जय जगतर परछायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तय घर परम पद पायो। मनसा का स्मरण तुझे नार काम क्रोध मिट्यो जो तिण। वाचा का स्मरण तुझे तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिण। कर्म कर तो दर्श परस पार सार बल पड़ जस गायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तय घर परम पद पायो। जे सदगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटे खेन। जे सदगुर सिमरंत हृदय घर नाम दिनो दिन। जे सदगुर सिमरंत जी की तप्त मिटावे। जे सदगुर सिमरंत हृदय सिद्ध नवन पावे। तो ही रामदास गुर बल पान मिल संगत तन तन करो। जे सदगुर लग प्राप्त पाई है तो सदगुर सिमरो नरो। जिन शब्द कुमाए परम पद पायो सेवा करत न छोड्यो पास। ताते गौर ज्ञान प्रट पुजियारो दुख दरिद्र अंधियार को नास। कब कीर्त जो संत चरण मुड़ लाग है तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास। ये अंगद अंग संग नानक गुर तेव गुर अमरदास कह गुरु रामदास। जिन सदगुर सेव पदार्थ पायो निज बस्त्र घर चरण निवास। ताते संगत सगन पाए पौ मान तुम मलियागर प्रगट सुवास। रूप प्रहलाद कबीर तलोचन नाम लय उपजो जो परगास। जे पिकत अत होय रहस मन तोई संत सहार गुरु रामदास। नानक नाम निरंजन जानियो इन्नी भगत प्रेम लिवलाई। ताते अंग अंग संग पयो सायर तेन शब्द सुरत की नीव
ਰਖਾਈ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀ ਕਛ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ, ਥੋਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਕਲ ਤਾਰਨ ਕਉ, ਅਬ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੀ ਬਡਾਈ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਪਰੇ ਇਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੇ ਵਿਖ ਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪਏ ਫੂਲੇ, ਸੁਧ ਧਾਰਾ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇਕ ਉਤੋਂ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾੜ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ। ਮੋਹ ਮਲ ਵਸ ਕੀਓ, ਕਾਮ ਗਏ ਕੇਸ ਪਛਾੜਿਓ, ਕ੍ਰੋਧ ਖੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਲੋਭ ਅਮਾਨ ਸਿਓ ਚਾੜਿਓ। ਜਨਮ ਕਾਲ ਕਰ ਜੋੜ, ਹੁਕਮ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋ ਮੰਨੈ, ਪਵ ਸਾਗਰ ਬੰਧਿਓ ਸਿਰ ਤਾਰੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਸਿਰ ਆਦ ਪਤ ਸਚੋ ਤਖਤ, ਜੋਗ ਪੁਗ ਸੰਜੁਤ ਬਲ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਜ ਸਲ ਪਾਣ, ਤੂੰ ਅਟਲ ਰਾਜ ਅਪਗ ਦਲ, ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਹੁ ਜੁਗੀ, ਆਪੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸੁਰ ਨਰ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ, ਸਿੱਖ ਸੇਵੰਤ ਤੁਰੇ ਤੁਰ, ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਅਨਾਦ ਕਲਾ ਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਓਲੋ ਹੈ। ਆਗਮ ਨਿਗਮ ਉਦਰਣ ਜਰਾ ਜੰਮੇ ਆਰੋ ਹੈ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਸਿਰ ਥਪਿਓ ਪਰਗਾਮੀ ਤਾਰਨ ਤਰਨ, ਅਗ ਅੰਤਕ ਬਦੇ ਨਾ ਸਲ ਕਬ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣ। ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕੇ, ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਿਮਰੰਗ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਅਚਲ ਅਬਨਾਸੀ, ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਦੁਰਮਤ ਮਲਨਾਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਕਬਲ ਧਾਰੰ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਗੁਣ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰੰ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਰ ਕੀਓ ਪਰਗਾਸਾ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀ ਆਸਾ, ਤੇ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ, ਕਲ ਜੋੜ ਕਰ ਸੁਜਸ ਵਖਾਣਿਓ, ਭਗਤ ਜੋਗ ਕਉ ਜੈ ਤਵਾਰ, ਹਰ ਜਨ ਕਿਉ ਪਾਇਓ, ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਪਰਕਾਸਿਓ, ਹਾਰ ਰਸਨ ਬਸਾਇਓ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਲਾਗ, ਉੱਤਮ ਪਦ ਪਾਇਓ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਭਗਤ ਪੁੱਤਰ ਆਇਓ, ਬੜਭਾਗੀ ਉਨ ਮਾਨਿਓ, ਰਿਧ ਸਬਦ ਬਸਾਇਓ, ਮਨ ਮਾਨਕ ਸੰਤੋਖਿਓ, ਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸਾਇਓ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਅਨਪਉ ਠਹਿਰਾਇਓ, ਜਨਕ ਰਾਜ ਵਰਤਾਇ ਸਤਜੁਗ ਆਲੀਣਾ, ਗੁਰ ਸਬਦੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਅਵਤੀਜ ਪਤੀਣਾ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਚ ਨੀਵ ਸਾਜ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਲੀਣਾ, ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਅਪਰੰਪਰ ਬੀਣਾ, ਖੇਲ ਗੂੜੋ ਕੀਓ, ਹਰਾਏ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਰਿਓ, ਬੇਮਲ ਬੁੱਧ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਾਣੋ, ਆਜੋਨੀ ਸੰਭਵਿਓ, ਸੁਜਸ ਕਲ ਕਵੀਨ ਵਿਖਾਣਿਓ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਵਰਿਓ, ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਨਿਧਾਨ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਵਰਿਓ, ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਸਭ ਜੀਵਨ ਅਰਜਨ ਅਮੋਲ, ਆਜੋ ਨੀ ਸੰਭਉ, ਭਏ ਭੰਜਨ ਪਰ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰ, ਅਪਾਰ ਅਨੰਭਉ, ਆਗੇ ਗੈਣ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੈਣ, ਸੀਤਲ ਸੁਖ ਦਾਤਉ, ਅਸੰਭਉ ਉਦਵਯੋ, ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵਿਧਾਤੁ, ਨਾਨਕ ਆਦ ਅੰਗਦ ਅਮਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਇਓ, ਧਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਜਿਨ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਮਿਲਾਇਓ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਾ ਜਗ ਅੰਦਰ, ਮੰਦਰ ਭਾਗ ਜੁਗਤ ਸਿਵ ਰਹਿਤਾ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਓ ਬੜਭਾਗੀ, ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਮੇਦਨ ਪਰਸਹਿਤਾ, ਭਏ ਭੰਜਨ ਪਰ ਪੀਰ ਨਿਵਾਰਨ, ਕਲ ਸਹਾਰ ਤੁਹ ਜਸ ਭਗਤਾ, ਕੁਲ ਸੋਢੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਨ, ਧਰਮ ਤੁਝਾ ਅਰਜਨ ਹਰ ਭਗਤਾ, ਧਰਮ ਧੀਰ ਗੁਰਮਤ ਗੰਭੀਰ ਪਰ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ, ਸਬਦ ਸਾਰ ਹਰ ਸਮ ਉਦਾਰ, ਅੰਗਮੇਵ ਨਿਵਾਰਨ, ਮਹਾਂਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ, ਮਨ ਚਾਉ ਨਾ ਹੁਟੈ, ਸਤਵੰਤ ਹਰ ਨਾ ਮੰਤਰ, ਨਮ੍ਰਿਤ ਨਾਨ ਖੁਟੈ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨ ਸਰਬ ਮੈ, ਤੈ ਚਿੰਦੋਵਾ ਤਾਣਿਓ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਲ ਉਚਰੈ, ਤੈ ਰਾਜੋਗ ਰਹਿ ਜਾਣਿਓ, ਭੈ ਨਿਰਪੋ ਮਾਣਿਓ, ਲਾਖ ਮੈਂ ਅਲੱਖ ਲਖਾਇਓ, ਅਗਮੈ ਅਗੋਚਰ ਗਤ ਗੰਭੀਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚਾਇਓ, ਗੁਰ ਪਰਚੇ ਪ੍ਰਵਾਣ, ਰਾਜਮੈ ਜੋਗ ਕਮਾਇਓ, ਧਨ ਧਨ ਗੁਰ ਧਨ, ਅਪਾਰ ਸਰ ਸੁਬਰ ਫਰਾਇਓ, ਗੁਰ ਗੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਜਰ ਜਰਿਓ, ਸਰ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਇਓ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਲ ਉਚਰੈ, ਤੈ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਨਿਜ ਪਾਇਓ, ਅਮਿਓ ਰਸਨਾ ਬਦਨ ਬਰਦਾਤ,
अलख अपार पुरसूर शब्द होमे निवार्यो पंचारण दलयो सुन सहज नित कर सहार्यो हर नाम लाग जग उधरयो सब गुरदे बसायो गुर अर्जन कल उच्चरय तै जन के कलश दीप पायो सोरठ गुर अर्जन पुरख प्रमाण पारथो चाले नहीं नेजा नाम निशान सतगुर शब्द सवार्यो पवजल सायर सेत नाम हरि का बोहिथा तो सतगुर संघेत नाम लाग जग उधरयो जगते उदाहरण नाम सतगुर तुठे पायो अब नहाय अवर सर काम बारंतर पूरी पड़ी ज्योत रूप हर आप गुरु नानक कहायो तादे अंगद पयो तत स्यो तत मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमर दास अमृत छतर गुर राम है दियो गुर राम दास दर्शन परस कै मथुरा अमृत बैन मूर्त पंज प्रमाण पुरख गुर अर्जन पिखो नैन सत रूप सत नाम ससंतोख तरयो ओर आद पुरख प्रतख लिखो अक्षर मस्तक तोर प्रट जोत जगमग तेज भूमंडल छायो पारस परस परस परस गुर गुरु कहायो पान मथुरा मूल सदा थेर लाए चित सनमुख रहो कल जुग जहाज अर्जन गुरु सग सिट लग बेतरो तेजन जाचो जगतर पर जानियत बस रैन बास जा कोहित नाम स्यो परम अतीत परमेश्वर के रंग रंगयो बस ना ते बार पाए देखियत ताम स्यो अपर परंपर पुरुषों प्रेम लाग गयो बेन भगवंत रस नाही औरे काम स्यो मथुरा को प्रभ सर्प में अर्जुन गोर भगत के हेत पाए रहो मिले राम स्यो अंत न पावत देव सबे मोन इंद्र महासवि जोग करी हुन वेद बेरंच विचार रहे हो हर जापन छाड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सिट निहाल करी रामदास गुरु जग तारण को गुरजोत अर्जुन माय करी जग और न जाए महात्म में अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोट के दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो ए पद ते मद चू कह रे मन भेद बपेद न जान पियो पर तछर दे गुर अर्जन कह हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो जब लो नहीं पागल लार उदय तब लो प्रमते फिरते बोतायो कल कोर समुद्र में बूढ़ थे कबू मिट गए नहीं रे पछतायो तत् विचार जय मथुरा जगतारन को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो काल समुद्र पय रूप प्रट हर नाम उदाहरण बसे संत जिस दे दुख दर्द निवारण निर्मल पेख अपार तास बिन अवर न कोई मान भय जिन जानियो पयो ते संसार सोई तारण गागन नव खंड मैं जोत स्वरूपी रहो पार पान मथुरा कछ पेद नहीं गुर अर्जन प्रतख हर अजय गंग जल अटल शिव संगत सब नहावे नित पुराण बांचिए वेद ब्रह्मा मुख गावे अजय चवर सिर टुले नाम अमृत मुख लियो गुर अर्जन सिर शतर आप परमेश्वर दियो मेरे नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पै गयो हर वंश जगत जस संचरयो तो कवन कहे श्री गुरु मोयो देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंहासन दियो।

पीतर कंपै काटे सो पाप तिन नरों के गुर रामदास जिन पायो छत्र सिंहासन पृथ्वी गुर अर्जन को दे आयो। एक ओंकार

राम चुरे दल मेलव अंतर बल अधकार बंतर की सेना सेवी है मन तन जोज अपार सीता लह गया देसरो लक्ष्मण मुगो सराप नानक करता करनहार कर वेखे थाप थाप मन में चूरे राम चंद सीता लक्ष्मण जोग हनुमंतर आराध्या आया कर संजोग उला दैत न समझई इन पौ की ये काम नानक वे प्रवा

ना पदार्थ पाया अतुट परे भंडार हर गुरबाणी उच्चर है अंत न पारावार नानक सब कारण करता करे वेखे सृजनहार गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़िया दसवें आकाश इथे ऊंग ना पुख है हर अमृत नाम सुखवास नानक दुख सुख व्याप्त नहीं जिथे आत्म राम प्रगास काम क्रोध का चोलड़ा सब गले आए पाए एक उपजे एक बिन सजावे हुक्मे आवे जाए जमन मरण न चुकई रंग लगा दूजे पाए बंधन बंद पवाईयन करना कछु न जाए जिनको कृपा तारियन तिना सतगुर मिलिया आए सतगुर मिले उल्टी पई मर जीव्या सहज सुपाए नानक भगती रत्या हर हर नाम सुमाए मन मुख चंचल मत है अंतर

जिन्ना अंतर हर सुरत नाही विच होमे कर्म कमाम दे सब धर्म राय कै जाही गुरमुख हछे निर्मले गुर के शब्द सुपहाय ओना मैल पतंग न लगई जे चलन सदगुर पाए मनमुख झूठ न उतरै जे सो तोवन पाए नानक गुरमुख मेलियन गुर के अंक समाए बुरा करे सो केहा सिजै अपने रोह आपे ही दजै मनमुख कमला रगड़े लुजै गुरमुख होए तेस सब किछ सुजै नानक गुरमुख मन स्यों लुजै जिन्ना सतगुर पुरख।

गुरमुख हसै गुरमुख रोवै, जे गुरमुख करे साई भगत होवै, गुरमुख होवै सो करे विचार, गुरमुख नानक पावे पार, जिन्ना अंदर नाम निधान है गुरबाणी विचार, तिनके मुख सद उजले तित सच्चे दरबार, तिन बहिंदिया उड़दिया कदे ना विसरै।

मानव सेवा जो करे दूजे भाए चित लाए उत कलत कुटंब है माया मोह वधाए दर्घ है लेखा मंगी है कोई अंत न सकी छुड़ाए बिनावे सब दुख है दुखदाई मोह माए नानक गुरमुख नदरी आया मोह माया बिछड़ सब जाए गुरमुख हुक्म ने सह केरा हुक्मे ही सुख पाए हुक्म सेवे हुक्म आराध्य हुक्मे समय समाए हुक्म वर्तन एम सो संजम मचिंदिया फल पाए सदा सुहागण जे हुक्मे बुझे सदगुर सेवे लिवलाए नानक कृपा करे जिन ऊपर तिना हुक्मे लय मिलाए मानव हुक्म ना बुझे बपड़ी नित होमे कर्म कमाए वर्तनेम सो संजम पूजा पाखंड परम ना जाए अंतरों कसुद माया मोय वेद जो हस्ती शारे उड़ाए जेने उपाए तसे ना चेत है बिन चेते क्यों सुख पाए नानक परपंच किया तुर करत है पूर्व लिखिया कमाए गुरमुख प्रतीत पई मन मानिया अनदिन सेवा करत समाए अंतर सदगुर गुरु सा पूजे सदगुर का दर्श देखे सब आए मनिए सदगुर परम विचारी जित मिले तिसना पुख सब जाए हौ सदा सदा बलिहारी गुर अपने जो प्रभ सच्चा दे मिलाए नानक कर्म पाया तिन सच्चा जो गुर चरणी लगे आए जिन प्रिया सो ने हो से सज्जन मैं नाल अंतर बार हों फिरा ती हृदय रखा समाल जिन्ना एक मान एक चित त्याया सदगुर सो चित लाए इनकी दुख पुख हो में वड्डा रोग गया निर्दोख पय लिवलाए गुण गावे गुण उच्चर है गुण में सवे सुमाए नानक गुर पूरे ते पाया सहज मिलिया प्रव्याय मन मुख माया मोह है नाम ना लगे प्यार कूड़ कमावे कूड़ संग्रह कूड़ करे आहार बिख माया तन संच मर है अंत होए सब शार कर्म धर्म सो संजम कर है अंतर लोभ विकार नानक मनमुख जे कुमावे सो थाए ना पवे दर गए होए खुवार सबना रागा विच सो भला पाई जित वसिया मन आए राग ना सब सच है कीमत कही ना जाए रागे ना दे बहारा इनी हुक्म ना बूझिया जाए नानक हुक्मे बूझे तिना रास होए सदगुर ते सोजी पाए सब किस तिस ते होया ज्यों तिसे धीर जाए सदगुर विच अमृत नाम है अमृत कहे कहाए गुरमती नाम निर्मलो निर्मल नाम त्याए अमृत बाणी तत है गुरमुख वसे मन आए हृदय कमल पर गासया ज्योति ज्योत मिलाए नानक सदगुर तिनको मेलियोन जिन तुर मस्तक पाग लिखाए अंदर तिसना अग है मनमुख पुख न जाए मोह कुटम सब कूड़ है कूड़ रहया लपटाए अनदिन चिंता चिंतव चिंता बद्दा जाए जमन मरण ना चुकई होमे कर्म कमाए गुर सरनाई उबर नानक लय छाए सतगुर पुरख हर त्याए दा सत संगत सतगुर पाए सत संगत सतगुर सेव दे हर मेले गुर मेलाए यो भौजल जगत संसार है।

आए जो तुर लिखया लेख सोई सब कमाए साब कष्ट दे वस दूजी नाहे जाए नानक सुख अनद पए प्रभु की मन रजाए गुर पूरा जिन सिमरिया।

मन तन फब पतत उदाहरण पार ब्रह्म समरथ पुरखे पार जिसे उदारे नानका सो सिमरे सिरजनहार दूजी चोड़ कुवाटड़ी एक सौ चित लाए दूजे पावी नानका वहन लुड़ंदड़ी जाए ते हटड़े बाजार सौदा करन वणजारिया सच वखर जिनी लद्या से सचड़े पासार पंथा प्रेम ना जानई उली फिरे गवार नानक हर बिसराए कै पौंदे नरक अंधियार माया मनोना वीसर।

बंगली पौन असले की पई बारी ए फैरों की पंचो नारी पंचम हरख दे साख सुनाव है बंगालम माद माद वगाव है ललत बिलाव लगाव ही अपनी अपनी पांत अष्ट पुत्र पैरव के गावे गायन पात्र द्वितीया माल कौशक आलाप है संग रागनी पंचो थप है गोंड करी अरदेव गंधारी

दूर। कथ न कथि न आवै तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट, देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विकसै वे परवाहो, साचा साहिब साच नाए, पाख्या पाओ अपार।

सो आद अनिला नादानात जुजुए कोवे सो आसन लोय लोय पंडार जोग छपाया सो एकावार कर कर वेख सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तसै आदेश आद अनिला नादानात जुजुए कोवेस एक दूजी बहु लख हो है लख हो वै लख वीस लख लख गेड़ा आखिया एक नाम जगदीश एत राहे पत पवड़िया चढ़िया होया अकीस सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस आखण जोर चुपै न जोर जोर न मंगण देण न जोर जोर न जीवन मरण न जोर जोर न राजमाल मन सोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगति छुटै संसार जे साथ जोर कर वेखै सोए नानक तुम नीच ना कोए राती रुती रुती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी तरमसाल तिस विच जी जूत के रंग तिनके नामा अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सचा आप सचा दरबार तिथै सोहन पंच प्रवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आख हो कर्म केते पौन पानी वै संतर केते कान महेश केते ब्रह्मे घड़त घड़ी है रूप रंग के वेश केतियां कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दान मुन केते केते अतन समुंद केतियां खानी केतियां बाणी केते पात नरिंद केतियां सुरती शिव केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोडानंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथै घड़त घड़ी है बहुतानूप ਤਾਂ ਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿਛੈ ਪਿਛਤਾਏ ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਏ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਏ ਸੁਰਾ ਸਦਾ ਕੀ ਸੁਧ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ

जात पहारा तीर्ज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खल्ला अगन तपताओ पांडा पाओ अमृत तित ढाल घड़ी सबद सच्ची टकसाल जिन को नजर कर।

गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानो लिख लिख धर्म विचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्र आसन बैठे देवत्यां दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़ रखीसर जो जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुर्ग मश पयाले गावन तुदनो रतनो पाए तेरे अठसठ तीर्थ नाले गावन तुदनो जोत महाबलसूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सही तुदनो गावन जोत पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चितना आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई हैपी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिस दी वड्याई जो तिस पावै सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पात साहो सहा पात साहेब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखै सब कोए केवड़ वड्डा डीठा होए कीमत पाए ना।

आखण वाला क्या विचारा, सिफती परे तेरे भंडारा, जिस तू देह तसै क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। आसा महला पहला, आखा जीवा विसरै मर जाओ, आखण औखा साचा नाऊ, साचे नाम की लागै भूख, उत भूख।

तेरी अनक तेरी अनक करे हर पूजा जी, तब तापे जपे बेअंता, तेरे अनेक पड़े बो सिमरत शास्त्र जी। कर किरिया खड़ कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता, तू मात पुरख अपरंपर करता जी, तू जेवड़े अवर ना कोई, तू जुग जुग वेको सदा सदा तू एको जी, तू निश्चल करता सोई, तू द्यापे भाव है सोई वरतै जी, तू आपे करे सो होई, तू द्यापे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सह का जानोई, आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैं डासाई, जो तो पावे सोई थीसी, जो तू देह सोई हाँ पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करह तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया।

जप तप संजम धर्म ना कुमाया, सेवा साधना जान्या हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो शर्मा। सोहेला राग गौड़ी देव की महला पहला, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीर्ति आखिए करते का होए बिचारो, तित कर गावहो सोहेला सिवरो सिरजनहारो। तुम गावो मेरे निरभउ का सोहेला, हम वारी जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े संभालिया न देखेगा देवनहार, तेरे दाने कीमत ना पवे तिसदा ते कवन सुवार। संबत साहा लिखिया मिलकर पावहो तेल, देहो सजन आसीसड़िया जो होवे साहिब स्यों मेल। कर करे हो पहुंचा सदले नित पवन, सदन हारा सिमरिय नानक से दे आवन। राग आसा

निज कर महल पावो सुख सहजे, बहुर न होए गो फेरा। अंतर जामी पुरख बिदाते, सरदा मन की पूरे। नानक दास एह सुख मांगे, मोको कर संतन की तूरे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग श्री राग महला पहला, कर पहला। मोती ता मंदर उस रह, रतनी ता होहे जड़ाओ। कस्तूर कुंगू अगर चंदन, लीप आवे चाओ। मत देख पूला विसर, तेरा चित ना आवे नाओ। हर बिन जियो जल बल जाओ। मैं अपना गुरपुछ देखिया, अवर नाही थाओ रहाओ। धरती ता

सब मिलै संसार, नाउ सदाए अपना होवै सिद्ध सुमार, जां पद लिखै ना पवै सबा पूज खुवार, जिन कौ सतगुर थापिया तिन मेट ना सकै कोए, ओना अंदर नाम निदान है नामो प्रगट होए, नाउ पूजियै नाउ मनियै अखंड सदा सच सोए, खेहू खेर लाइयै ता जियो केहा होए, जलियां सब सियाण पा उठी चलिया रोए, नानक नाम विसारे दर गया क्या होए। श्री राग महला पहला।

काल बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ाओ, गुर हर ध्यान निहाल। गुर पौड़ी बेड़ी गुरु, गुर तुल्हा हर नाव, गुर सर सागर बोए थो, गुर तीर्थ दरियाओ। जित पावे उजली सतसर नावन जाओ, पूरो पूरो आखिए पूरे तख्त निवास, पूरे थान सुहावण पूरे आस निरास। नानक पूरा जे मिले क्यों घट गुणतास। श्री राग महला पहला। आवहो भैने गल मिले है अंक सहेलड़िया, मिलके करे कहानियां सम्राथ कंत किया। साचे साहिब सब गुण अवगुण सब असाहा, करता सब को तेरे जोर। एक शब्द बिचारी है जा तू ता क्या होर रहाओ। जाए पुछो सुहागणी तुसी राव्या किन्नी गुणी, सहज संतोख सिंगारिया मिठा बोलनी। पिररी सालू ता मिले जा गुर का शब्द सुनी, केतियां तेरियां कुदरती केवड़ तेरी दात। केते तेरे जी जंत सिफत करे दिन रात, केते तेरे रूप रंग केते जात्या जात। सच मिले सच उपजै सच में सच समाए, सुरत होवे पत उगवे गुर बचनी पौ खाए। नानक सच्चा पात साहो आपे ले मिलाए। श्री राग महला पहला। भली सरी जे उबरी होमे मुई कराहो, दूत लगे फिर चाकरी सतगुर का वेसाहो। कल्प त्यागी बाद है सच्चा वे प्रवाहो, मन रे सच मिले पौ जाए। पै बिन निरपो क्यों थी है गुरमुख शब्द समाए रहाओ। केता आखण आखिए आखण तोट ना होए, मंगण वाले केतड़े दाता एको सोए। जिसके जी प्राण है मन वसे सुख होए, जग सपना बाजी बनी खिन में खेल खेलाए। संजोगी मिलेक से विजोगी उठ जाए, ज्योतिष पाना सो थिए अवर न करना जाए। गुरमुख वस्त विसाही है सच वखर सच रास, जिन्नी सच वणजया गुरपूरे साबास। नानक वस्त पछाण सी सत सौदा जिस पास। श्री राग महल पहला। तात मिले फुन तात कहो, सिफती सिफत समाए। लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ, सच मिले संतोखिया हर जपे कह पाए। पाई रे संत जना की रेण, संत सभा गुर पाई है मुक्त पदार्थ तेण रहाओ। ऊचो थान सुहावना ऊपर महल मुरार, सच करनी दे पाई है दर कर महल प्यार। गुरमुख मन समझाई है आत्म राम विचार, तिरबद कर्म कमाई है आसन देसा होए। क्यों गुरबिन त्रिपटी छुट सी सहज मिलया सुख होए। निज कर महल पछाणिया नजर करे मल धोए, बिन गुर महल ना उतरे बिन हर क्यों करवास। एको शब्द विचारी है अवर ते अग्यास, नानक देख दिखाई है हो सत बलिहारे जास। श्री राग महला पहला। त्रिग जीवन दोहागणी मुठ्ठी दूजे पाए, कलर केरी कंध ज्यों अहनस किर टह पाए। बिन शब्द सुख ना उठिए पिर बिन दुख ना जाए, मुंदे पिर बिन क्या सिंगार। दर कर टोई ना लह दरगे झूठ खुआर रहाओ, आप सुजान ना भुलई सच्चा वड किरसान। पहला तरती साध कै सच नाम दे दान,

आवन जान न चुकई मर जन्मै होए खुआर। चंदन मोले अणाया कुंगू मंग संदूर। चोवा चंदन बहु घणा पाना नाल कपूर। जे तन कंत ना पावई ता सब अडंबर कूड़। सब रस भोगण बाद है सब सिंगार विकार। जब लग शब्द ना भेजी है क्यों सो है गुरुद्वार। नानक तन सुहागनी जिन सह नाल प्यार। श्री राग महला।

बिन गुण कामना आवई टह टेरी तनखे हे मेरे मन लै लाहा कर जाहे। गुरमुख नाम सलाही है हमें निवरी पाहे राहो। सुन सुन गंडन गंडी है लिख पढ़ बुझै पार तृष्णा अहनस अगली हमें रोग बेकार। ओह वे प्रवाहो अतोलवा गुरमत कीमत सार लक्ष्य आण पजे करी लक्ष्यों प्रीत मिलाप बिन संगत साधना त्रापिया बिन नावै दुख संताप। हर जप जी अरे छुट्टी है गुरमुख जी न आप तन मन गुर पै वेचिया मन दी सिर नाल त्रिपवन खोज टंडोलिया गुरमुख खोज निहाल सतगुर मेल मिलाया नानक सो प्रभ नाल। श्री राग महला पहला मरण की चिंता नहीं जीवन की नहीं आस तू सर्व जियां प्रतपालही लेखे सास गिरास अंत।

जो दिसै चलनहार गुरमुख रवै सुहागणी सो प्रभ सेज पतार चारे अगन निवार मर गुरमुख हर जल पाए अंतर कमल प्रगासिया अमृत भरिया अगाए नानक सतगुर मीत कर सच पावै दरगह जाए। श्री राग महला पहला। हर हर जपो प्यारिया गुरमत ले हर बोल मन सच कस वट्टी लाई है तुलिया पूरे तोल कीमत किने ना पाई है रिदमान कमोल अमोल पाई रे हर हीरा गुरमाहे सतसंगत सतगुर पाई है अहनस शब्द सलाहे रहाओ सच वखर तन रास लै पाई है गुर प्रगास जो अग्न मरै जल पाया त्यों तृष्णा दासन दास जमजन दारन लग गई यो भौजल तरै तरास गुरमुख कूड़ ना पावई सच रते सच पाए सागत सच ना पावई कूड़ै कूड़ी पाए सच रते गुर मेले सचे सच समाए मन मैं माणक लाल नाम रतन पदार्थ हीर सच वखर तन नाम है कट कट गहर गंभीर नानक गुरमुख पाई है दया करे हर हीर। श्री राग महला पहला। परमे पाहे न विजवै जे पवै दिस अंतर देस अंतर महल न उतरै त्रिग जीवन त्रिग वेस होर कितै।

मन मानक निर्मोल है, राम नाम पत पाए, मिल सत संगत हर पाई है, गुरमुख हर लिव लाए, आप गया सुख पाया, मिल सल लै सल समाए, जिन हर हर नाम ना चेत्यो सो अवगुणे आवै जाए, जे सतगुर पुरख ना भेट्यो सो पौजल पचै पचाए, एहो मानक जियो निर्मोल है, इउ कौडी बदलै जाए, जिन्ना सतगुर रस मिलै से पूरे पुरख सुजान, गुर मिल पौजल लंगी है, दरगह पत प्रवान, नानक ते मुख उजले, तुन उपजै शब्द निशान, श्री राग महला पहला, वणज करो वणजारियो वखर लेहो समाल, तैसी वस्त विसाही है जैसी निभ नाल, अगे साहो सुजान है लैसी वस्त समाल, पाई रे राम कहो चितलाए, हर जस वखर लै चलो सहो देखे पति आए, रहाओ जिन्ना रास ना सच है।

मैं मछली कैसे अंत लहा, जह जह देखा तह तह तू है, तुझ ते निकसी फूट मरा। ना जाना मैं ओ ना जाना जाली, जां दुख लागे तां तुझै समाली। रहाओ तू भरपूर जान्या मैं दूर, जो कश करी सो

पास श्री राग महला पहला कर पंजवा अशल शलाई नह शल नह काउ कुटारा कर सके ज्यो साहेब राखे त्यो रह इस लोभी का जियो टल पल बिन तेल दीवा क्यों जलै रहाओ पोथी प्राण कमाई है पौवटी ए तन पाई है सच बूझण आण जलाई है एहो तेल दीवा इं जलै कर चानण साहेब तौ मिलै रहाओ इत तन लागै बाणिया सुख होवै सेवक माणिया सब दुनिया आवन जानिया विच दुनिया सेव कमाई है ता दरगह बैसन पाई है कहो नानक बहा लुड़ाई है। श्री राग महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हाँ सतगुर सेवी अपना एक मन एक चित पाए सतगुर मन कामना तीर्थ है जिसनों दे बुझाए मन चिंदिया वर पावना जो इच्छा सो फल पाए नाओ त्याई है नाओ मंगी है नामे सहज समाए मन मेरे हर रस चाख तिख जाए जिन्नी गुरमुख चाखिया सहज रहे समाए रहाओ जिन्नी सतगुर सेविया तिन्नी पाया नाम निदान अंतर हर रस रव रहया चूका मन अभमान हृदय कमल प्रगासिया लागा सही ध्यान मन निर्मल हर रव रहया पाया दरगह मान सतगुर सेवन अपना ते वरले संसार हाँ मैं ममता मार कै हर राख्या और तार हाँ तिल कै बलिहारण जिन्ना नामे लगा प्यार सही सुखिए चहु जुगी जिन्ना नाम है खोटिया पार गुर मिलिया नाम पाईऐ चूकै मोह प्यास हर सेती मन रव रया करी माए उदास जिन्ना हर का साध आया हाँ तिन बलहारै जास नानक नदरी पाईऐ सच नाम गुणतास। श्री राग महला तीजा बहु पेह कर परमाईऐ मन हृदय कपट कमाए हर का महल ना पावै मर विष्टा माए समाए मन रे गृही माए उदास सच संयम करनी सो करे गुरमुख होए प्रगास रहाओ गुर कै शब्द मन जीतिया गत मुक्त करै मैं पाए हर का नाम त्याई है सतसंगत मेल मिलाए जे लख स्त्रियां भोग करै नवखंड राज कुमाहे बिन सतगुर सुख ना पावई फिर जोनी पाहे हर हार कंठ जिनी पहरिया गुर चरणी चित लाए तिन्ना पिछे रिद सिद फिरै ओना तिल ना तुमाए जो प्रभावै सो थीए अवर ना करना जाए जन नानक जीवै।

लख चौरासी तरस दे जिस मेले सो मिले हर आए। नानक गुरमुख हर पाया सदा हर नाम समाए। श्री राग महला तीजा सुख सागर हर नाम है गुरमुख पाया जाए। अंदर नाम त्याई है सहजे नाम समाए। अंदर रचे हर सच स्यों रसना हर गुण गाए। भाई रे जग दुखिया दूजे पाए गुरसरण आई सुखल है अंदर नाम त्याए। रहाओ साचे मैल न लग गई मन निर्मल हर त्याए। गुरमुख शब्द पछाणिया हर अमृत नाम समाए। गुर ज्ञान प्रचंड बलाया अज्ञाना दे राजाए। मन मुख मैले मल भरे हों मैं तृष्णा विकार। बिन शब्द मैल न उतर मर जमै होए खुआर। धातर बाजी पलच रहे ना और वार ना पार। गुरमुख जप तप संजमी हर कै नाम प्यार। गुरमुख सदा त्याई है एक नाम करतार। नानक नाम त्याई है सबना जिया का आधार। श्री राग महला तीजा मन मुख मोहे व्यापिया बैराग उदासी ना होए। शब्द ना चीने सदा दुख हर दर गै पत खोए। हों मैं गुरमुख खोई है नाम रते सुख होए। मेरे मन अहनिस पूर रही नित्यासा सतगुर से मोह पर जलै करी माए उदासा। रहाओ गुरमुख कर्म कमावे बिकसै हर बैराग आनंद। अहनिस भगत करे दिन राती हों मैं मारन चंद। वड्डे भाग सतसंगत पाई हर पाया सहजानंद। सो साधु बैरागी सोई हिरदे नाम वसाए। अंतर लागना ताम समूले विचों आप गवाए। नाम निधान सतगुरु दिखा लिया हर रस पिया आगाए। जिन किने पाया साध संगति पूरे भाग बैराग। मन मुख फिरे न जाने सतगुरु हों मैं अंदर लाग। नानक शब्द रते

बिन गुर महल ना पाइए, नाम ना प्राप्त होए, ऐसा सतगुर लोड लहो। जिद्दू पाइए सच सोए, असर संगार सुख वसै, जो तिस पावे सो होए। जिहा सतगुर कर जानिया तेहो जिहा सुख होए, एहो सहसा मूले नाही भाव लाए जन कोए। नानक एक जो दोई मूर्ति शब्द में लावा होए। श्री राग महला तीजा। अमृत छोड़ बिख्या लोभाणे, सेवा करे विडाणी, अपना धर्म गवावै बूझै नाही, अनदिन दुख विहाणी। मन मुख अंध न चेतही, डूमोए बिन पाणी, मन रे सदा पजो हर सरनाई। गुर का शब्द अंतर वसै, ता हर विसर ना जाई। रहाओ एहो शरीर माया का पुतला, विचह मैं दुष्टि पाई। आवन जाना जमन मरना, मन मुख पत गवाई। सतगुर सेव सदा सुख पाया, ज्योति ज्योत मिलाई। सतगुर की सेवा यत सुखाली, जो इच्छा है सो फल पाए। जात सत तप पवित शरीरा, हर हर मन वसाए। सदा आनंद रह दिन राती, मिल प्रीतम सुख पाए। जो सतगुर की शरणागति, हौ तन कै बल जाओ। दर सच्चा सच्ची वडियाई, सहजे सच समाओ। नानक नदरी पाई है, गुरमुख मेल मिलाओ। श्री राग महला तीजा। मनमुख कर्म कमावणे, जो दोहागण तन सिंगार। सेजै कंत ना आवई, नित नित होए खुवार। फिर का महल ना पावई, ना दिसै घर बार। भाई रे एक मन नाम ते आए, संता संगत मिल रहे। जप राम नाम सुख पाए। रहाओ गुरमुख सदा सुहागण।

अंतरों दुख भ्रम कटिए सुख प्राप्त होए, गुर कै पाणै जो चले दुख ना पावै कोई। गुर के पाणे विच अमृत है सहजे पावै कोई, जिन्ना प्रभ तिन पिया हमें विचों खोए। नानक गुरमुख नाम धियाई है सच मिलावा होए। श्री राग महला तीजा, जा पिर जाना है अपना तन मन अग्गै धरे, सुहागणी कर्म कमाम दिया से ही कर्म करे। सहजे सच मिलावड़ा सच वडाई दे भाई रे, गुरबिन भगत ना होए बिन गुर भगत ना पाए।

पूरे पाग सतगुर मिलै फिर पाया सच समाए से सहिया सोहागनी जिनको नजर करे खसम पछाणै अपना तन मन आगै दे घर वार पाया अपना हम मैं दूर करे नानक सो बावंतियां सोहागनी अनजन भगत करे श्री राग महला तीजा एक पिर रावै अपना हाँ कह दर पूछो जाए सतगुर सेवी भाव कर मैं पर देव मिलाए सब पाए आपे वेखै किस नेड़े किस दूर जिन पिर संगे जानिया पिर रावे सदा हदूर मुंदे तू चल गुर कै पाए आंदन रावे पिर अपना सहजे सच समाए रहाओ शब्द रतिया सोहागनी सच्चा शब्द सिंगार हर वार पायन घर अपना गुर कै हित प्यार से सुहावी हर रंग रवै भगत भरे भंडार सो प्रभु प्रीतम मन वसै जे सब सह दे आधार पिर सालाहन अपना तिन कै हो सद बलिहार जाओ मन तन अर्पी सिर दई तिन कै लागा पाए जिन्नी एक पछाणिया दूजा पाव चुकाए गुरमुख नाम पछाणिया नानक सच समाए श्री राग महला तीजा हर जी सच्चा सच तू सबके तेरे चीरे लख चौरासी तरस दे फिरे बिन गुर भेटे पीरे हर जियो बख्से बख्स लय सुख सदा शरीर गुर प्रसादी सेव करी सच गहर गंभीर है मन मेरे नाम रते सुख होए गुरमती नाम सलाही है दूजा अवर ना कोए रहाओ धर्म राय नो हुक्म है बह सच्चा धर्म विचार दूजे पाए दुष्ट आत्मा ओह तेरी सरकार अध्यात्मी हर गुण तासमान जप है एक मुरार तिनकी सेवा धर्म राय करे धन सवारन हार मन के बेकार मन तजै मन चूकै मोह अभमान आत्म राम पछाणिया सहजे नाम समान बिन सतगुर मुक्त ना पाई है।

कुदम करे पसपंखिया दिसै नाही काल ओतै साथ मनुख है फाथा माया जाल। मुक्ते से ही पाली है जे सच्चा नाम संभाल जो कर छड गवावना सो लगा मन माहे जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता नाहे फाथे से ही निकले जे गुर की पैरी पाहे कोई रख ना सके दूजा को ना दिखाए चारे कुंडा पाल के आए पया सरनाए नानक सच्चे पातशाहे डुबदा लिया कढ़ाए श्री राग महला पंजवां। घड़ी मुहत का पाहुना का स्वरण हार माया काम व्यापिया समझे नाही गावार उठ चलिया पछताया परिया वस जंदार अंधे तू बैठा कंदी पाहे जे होवी पूर्व लिखिया ता गुर का बचन कमाहे रहाओ हरी नाही नह डडरी पक्की वडन हार लै लै दात पहुतिया लावे कर तैयार जां होवा।

एको विसरना जाओ। तंदा सब जलाए कै गुर नाम दिया सच सुआओ। आसा सबे लाहे कै इका आस कमाओ। जिनी सतगुर सेवया तिने अगे मिलिया थाओ। मन मेरे करते नू सलाहे सबे छड सियाणपां गुर की पैरी पाहे रहाओ। दुख भुख न व्यापई जे सुखदाता मन होए। किथी कम न छिजिए जा हृदय सच्चा सोए। जिस तू रखे हाथ दे तिस मार ना सकै कोए। सुखदाता गुर सेवी है सब अवगण कड्डै धोए। सेवा मंगै सेव को लाइया अपनी सेव। साधु संग मसकते तूठे पावा देव। सब किश वसगत साहेब है आपे करन करेव। सतगुर कै बलिहारन है मनसा सब पूरेव। इको दिसै सज्जनो इको पाई मीत। इकसै दी सामग्री इकसै दी है रीत। इक सस्यों मन मानिया ता होवा निचरचीत। सच खाना सच पहनना टेक नानक सच कीत। श्री राग महला पंजवा। सबे थोक प्राप्ते जे आवे एक हाथ। जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ। गुरते महल प्राप्ते जिस लिखिया होवे मथ। मेरे मन एक स्यों चित लाए। एक बिन सब धंध है समिथया मोह माए रहाओ। लख खुशियां पात साहिया जे सतगुर नदर करे। निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए। जिस तो पूर्व लिखिया तिन सतगुर चरण गए। सफल मूर्त सफला घड़ी जित सच्चे नाल प्यार। दुख संताप ना लग गई जिस हर का नाम आधार। बहां पकड़ गुर काढ़िया सोई उतरिया पार।

जातो बिनस निदान, जाके हृदय हर वसै सो पूरा प्रधान। साधु की हो रेण का अपना आप त्याग, उपाव सियानत सगल छड गुर की चरणी लाग। तिसै प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होवे भाग, तिसै प्राप्त भाई हो जिस देवे प्रभ आप। सतगुर की सेवा सो करे जिस बिन से हम मैं ताप, नानक कहो गुर भेटिया बिन से सगल संताप। श्री राग महला पंजवा। एक पछाणु जी का एको रखन हार, एक सका मन आसरा एको प्राण आधार। ते शरण आई सदा सुख पार ब्रह्म करतार, मन मेरे सगल्यो पाव त्याग। गुरपूरा आराध नित एक सकी लिवलाग रहाओ, एको पाई मित एक एको मात पिता। एक सकी मन टेक है जिन जियो पिंड दिता, सो प्रभ मनो ना विसरै जिन सब किश वस कीता। घर एको बाहर एको थान थनंतर आप, जी जंत सब जिन किए आठ पहर तिस जाप। एक सेती रतिया ना होवी सोग संताप, पार ब्रह्म प्रभ एक है दूजा नाही कोए। जियो पिंड सब तिसका जो तिस पावे सो होए, गुर पूरे पूरा पया जप नानक सच्चा सोए। श्री राग महला पंजवा। जिन्ना सतगुर स्यो चित लाया से पूरे प्रधान, जिनको आप दयाल होए तनु उपजै मन ज्ञान। जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम, मन मेरे एको नाम ते आए। सर्व सुखा सुखी उपजहै दरगह पैंदा जाए रहाओ। जन्म मरण का पाओ गया पाओ भगत गोपाल, साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल। जन्म मरण की मल कटिया गुरदर्शन देख निहाल, थान थनंतर रव।

जिन मन वसिया पार ब्रह्म से पूरे प्रधान, तिन की शोभा निर्मली प्रगट पई जहान। जिनी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान। श्री राग महला पंजवा, मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वसिया मन आए, अंतर जोत प्रगासिया एक सो लिवलाए। मिल साधु मुखी उजला पूर्व लिखिया पाए, गुण गोविंद नित गावणे निर्मल साचे नाए। मेरे मन गुर शब्दी सुखोए, गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए ना कोए रहाओ। मन किया इच्छा पूरिया पाया नाम निधान, अंतर जम इसदा संग करना हर पिछान। गुर प्रसादी मुखी उजला जप नाम दान इसनान, काम क्रोध लो बिनसया तजिया सब मान। पाया लाहा लाभ नाम पूर्ण होए काम, कर कृपा प्रभ मेलिया दिया अपना नाम। आवन जाना रह गया आप हुआ मेहरबान, सच महल कर पाया गुर का शब्द पहचान। भक्त जना को राखदा।

कीमत कहन ना जाइए सागर गुणी अथाहो वड भागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाहो कर सेवा सुख सागर सिर साहा पातशाहो चरण कमल का आसरा दूजा नाही ठाओ मैं तर तेरी पार ब्रह्म तेरे तन रहाओ निमाणिया प्रमाण तू तेरे संग समाओ हर जपिए आराधिए आठ पहर गोविंद जी प्राण तन तन रखे कर कृपा राखी जिंद नानक सगले दुख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद श्री राग महला पंजवां प्रीत लगी ते

हऊ मैं रोग भ्रम कटिया ना आवे ना जाग, कर संगत तू साध की अड़ सड़ तीर्थ नाओ, जियो प्राण मन तन हरे साचा एहो सवाओ, ऐथे मिले वडियाईया दरगे पावे थाओ, करे कराए आप प्रभु सब किश्त सही हाथ, मारा पे जीवालदा अंतर बाहर साथ, नानक प्रभ शरणागति सर्ब कटां के नाथ। श्री राग महला पंजवा, शरण पए प्रभ अपने गुरु होवा कृपाल, सतगुर कै उपदेश है बिनसे सर्ब जंजाल, अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहाल, मन मेरे सतगुर सेवा सार, करे दया प्रभ अपनी एक

सतगुरु की सेवा लाग। जो दिसै सो विनसना मन की मत त्याग रहाओ। ज्यो कुकर हर काया तावै दै दिस जाए। लोभी जंत ना जानई पख अपख सब खाए। काम क्रोध मद व्यापिया फिर जोनी पाए। माया जाल पसारिया पीतर चोग बनाए। तृष्णा पंखी फासिया निकस ना पाए माए। जिन किया तिसै ना जानई फिर आवै जाए। अनक प्रकारी मोहया बहुबिदेहो संसार। जिसनो रखै सो रहै समर्थ पुरखे।

सतगुर से प्यारो, क्या थोड़ी बात गुमानो रहाओ। जैसे रैन प्राहुणे उठ चल सह प्रभात, क्या तू रता ग्रत स्यों सब फुल्ला की बागात। मेरी मेरी क्या करे जिन दिया सो प्रभ लोड़, सर पर उठी चलना षड जासी लख करोड़। लख चौरासी परम त्या दुलभ जन्म पायो, नानक नाम संभाल तू सो दिन नेड़ा आयो। श्री राग महला पंजवा, तिचर वसै सुहेलड़ी जिचर साथी नाल, जा साथी उठी चलिया ता तनखा कूराल। मन बैराग पया दर्शन देखने का चाओ, तन सो तेरा थान रहाओ। जिचर वसया कंत कार।

सबसे तू सावरड सुख वस गुरमिल चाजिया चार सिख तुद कदे न लगे दुख सबना साहुरै वंजना सब मुकलावन हार नानक धन सुहागनी जिन सह नाल प्यार।

कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार श्री राग महला पंजवा दोकृत सुकृत मंदे संसार सगलाना दोहूं ते रहत भगत है कोई विरला जाना ठाकुरो सर्वे समाना क्या कहो सुनो स्वामी तू वड पुरख सुजाना रहाओ मान अभमान मंदे सो सेवक नाही तत्सम दर्शी संतो कोई कोट मंदा ही कहन कहावन एहो कीर्त करला कथन कहन ते मुक्ता गुरमुख कोई विरला गत अवगत कश नजर ना आया संतन की रेण नानक दान पाया श्री राग महला पंजवा कर सतवा तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया भूले चुके बारक तू हर पिता माया सुहेला कहन कहावनों तेरा बिखम भावनों रहाओ।

श्री राग महला पहला कर पहला अष्टपदियां एक ओवंकार सतगुर प्रसाद आख आख मन वावना ज्यों ज्यों जापै वाए जिसनो वाय सुनाई है सो केवड कित थाए आखण वाले जेतड़े सब आख रहे लिवलाए बाबा अल्लो अगम अपार पाकी नाई पाक थाए सच्चा परवदगार रहाओ तेरा हुक्म ना जापी के तड़ा लिखना जाने कोए जे सौ सायर मेली है तिल ना पुजावे रोए कीमत कने ना पाईया सब सुन सुन आखे सोए पीर पै कामर सालक साधक सोंदे और शहीद शेख मसाइक काजी मुल्ला दर दर वे सरसीद बरकत तिनको अगली पढ़दे रहन दरूद पुछना साजे।

अंबड़ कोई न सकई हो किसनो पुछन जाओ। वरना वरन ना पावनी जे किसे वड़ा करे, वड़े हथ वड़े आईया जय पावे तैं दे हुक्म।

गणत गण आवने आईया सुभावे स्वीकार पाखंड प्रेम ना पाई है खोटा पाज खुवार हर जियो इउं प्ररावे नार तुद पावन सोहागणी अपनी कृपा लह सवार रहाओ गुरसबदी सिंगारिया तन मन पिर कै पास दोए कर जोड़ खड़ी तक सच कह अरदास लाल रती सच पै वसी पाए रती रंगरास प्रेकी चेरी कांडी है लाली मन नाओ साची प्रीतना तुटई साचे मेल मिलाओ शब्द रती मन वेदया हो सतबल हारे जाओ सा तन रंड ना बैसई जे सतगुर माहे समाए पिरी सालू नौ तनो साचो मरै ना जाए नित

कथनी झूठी जग पवै रहनी शब्द सो सार केते पंडित जोत की बेदा करै विचार वाद विरोध सलाहने वादे आवन जान बिन गुर कर्म ना छुटसी कह सुने आख वखाण सब गुणवंती आखी है मैं गुण नाही कोए हर वर नार सुहावनी मैं भावे प्रभ सोए नानक शब्द मिलावड़ा नावे छोड़ा होए श्री राग महला पहला जप तप संजम साधी है तीर्थ की चैवास पुन दान चंगियाईया बिनसा चे क्या तास जिहा राधे तिहा लुणै बिन गुण जन्म विनाश मुंदे गुण दा सिख होए अवगण त्याग समाई गुरमत पूरा सोए रहाओ विण रासी वा पारिया तके कुंडा चार मूल ना बूझै अपना वस्त्र ही कर बार विण वखर दुख अगला कूड़ मुठी कूड़ यार लाहा अहन सनौतना परखे रतन विचार वस्त लहै कर अपने चलै कारज सार वणजारिया स्यो वणज कर गुरमुख ब्रह्म विचार संता संगत पाई है जे मेले मिलन हार मिलिया होए ना विछड़ै जिस अंतर ज्योत अपार सच्चा आसन सच रहै सच्चा प्रेम प्यार जिनी आप पछाणिया घर मैं महल सो थाए सच्चे से तीरतिया सचो पल्ले पाए त्रिपवन सो प्रभ जानिया साचो सचे नाए सातन खरी सुहावनी जिन पर जाता संग महली महल बुलाई है सोपर रावे रंग सच सुहागण सा भली पिर मोही गुण संग पूली पूली थल चढ़ा थल चढ़ डूंगर जाओ बन मैं पूली जे फिरा बिन गुर बूझ ना पाओ नाम पूली जे फिरा फिर फिर आवो जाओ पुछो जाए पधाऊआ चले चाकर होए राजन जाने अपना दर कर ठाक ना होए नानके को रव रहा दूजा अवर ना कोए श्री राग महला पहला गुरते निर्मल जानिए निर्मल देह शरीर निर्मल साचो मन।

सुखदाता दुख मेटनो सतगुर असर संगार भाव जल बिखम डरावनो ना कंधी ना पार ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना तिसवंज मलार सतगुर पै का बोए था नदरी पार उतार एक तिल प्यारा विसरै दुख लागे सुख जाए जिहवा जलो जलावनी नाम ना जपै रसाए घट बिनसै दुख अगलो जम पगड़ै पहताए मेरी मेरी कर गए तन तन कलत ना साथ बिरना मैं तन बाद है भूलो मार गयाथ साचो साहेब सेवियै गुरमुख कथो काथ आवै जाए पवाईऐ पया किरत कमाए पूर्व लिखिया क्यों मेटियै लिखिया लिख रजाए बिन हर नाम ना छुटियै गुरमत मिलाए मिलाए तिस बिन मेरा को नहीं जिसका जियो प्राण हम मैं ममता जल बलो लोभ जलो अभमान नानक शब्द विचारियै पाइये गुणी निदान श्री राग महला पहला रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी जल कमले लहरी नाल पिछाड़ी पी विकसे असनेह जल मैं जी उपाय कै बिन जल मरण तनेह मन रे क्यों छूटे बिन प्यार गुरमुख अंतर रव रह बक्से भगत भंडार रहाओ रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी मछली नीर ज्यो अदको त्यो सुखकणो मंतन सां शरीर बिन जल कड़ी न जीवई प्रभ जाने अब पीर रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी चात्रक में है सार पर थल हरी आवले एक बूंद न पवी के कर्म लै सो पाई है किरत पया सिर देह रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी जल दोए आवटन आपे खवै दुध को खपन ना दे आपे मेल विशुनिया सच वड़ियाई दे रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी चकवी सूर खिन पल नींद ना सोवई जाने दूर हजूर मनमुख सो जी ना पवै गुरमुख सदा हजूर मनमुख गणत गणावनी करता करे सो होए ता की कीमत ना पवै जे लोचै सब कोए गुरमत होए ता पाई है सच मिलै सुख होए सच्चा निहो ना टुटई जे सतगुर पेटै सोए ज्ञान पदार्थ पाई है तिरपमन सो जी होए निर्मल नाम ना विसर

ज्ञान पदार्थ खोया ठग्या मुठा जाए, बाबा माया परम पुलाए, परम पुली डोहागणी ना पर्यंक समाए रहाओ। पुली फिर जसा

आपे हर जग जीवन दाता, आपे बस मिलाए, जी जनते क्या विचारे, क्या को वाक सुनाए। गुरमुख आपे दे वड़ियाई, आपे सेव कराए, देख कुटांब मोहे लोभाना, चल दिया नाल ना जाई। सतगुर सेव गुण निधान पाया, तिस दी कीम ना पाई, प्रभ सखा हर जियो मेरा, अंते होए सखाई। पेई अड़ै जग जीवन दाता, मनमुख पत गवाई, बिन सतगुर को मग न जाने, अंधे ठौर ना काई। हर सुख दाता मनी वसिया, अंत गया पछताई। पेई अड़ै जग जीवन दाता, गुरमत मन वसाया, अन दिन भगत करै दिन राती, हौं मैं मोह चुकाया। जिस स्यों राता तै सो होवै, सच्चे सच समाया, आपे नदर करे भाव लाए, गुर सबदी बीचार। सतगुर सेवे सहज उपजाय, हमें तृष्णा मार। हर गुण दाता सद मन वसै, सच रखिया उर धार। प्रभ मेरा सदा निर्मला, मन निर्मल पाया जाए। नाम निदान हर मन वसै, हमें दुख सब जाए। सतगुर शब्द सुनाया, हम सद बलिहार जाओ। अपने मन चित कह कहाई, अपने मन चित कह कहाए, बिन गुरे आप ना जाई। हर जियो भगत मच्छर सुखदाता, कर कृपा मन वसाई। नानक शोभा सुरत दे प्रभु, आपे गुरमुख दे वड़ियाई। श्री राग महला तीजा, हमें कर्म कमाव दे, जम डंड लगे तिन आए। जे सतगुर सेवन से उबरे, हर से ती लिवलाए। मन रे गुरमुख नाम ते आए, तुर पूर्व करत लिखिया, तिन्ना गुरमत नाम समाए रहाओ। विण सतगुर प्रतीत ना आवई, नाम ना लागा उपाओ, सुपने सुख ना पावई, दुख

आए से प्रमाण है सब कुल का करे उधार। सब नदरी कर्म कमाम दे, नदरी बाहर ना कोए। जैसी नदर कर देखे सच्चा तैसा ही को होए। नानक नाम वडाइया कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा गुरमुख नाम ते आई है मनमुख बूझ ना पाए। गुरमुख सदा मुखी उजले हर वस्या मन आए। सहजे ही ते सुख पाई है सहजे रह समाए। पाई रे दासन दासा होए। गुर की सेवा गुर भक्त है विरला पाए कोए। रहाओ सदा सुहाग सुहागनी जे चले सतगुर पाए। सदा पिर निचल पाई है ना ओह मरे ना जाए। शब्द मिली ना विछड़े पिरके अंक समाए। हार निर्मल अतुजला बिन गुर पाया ना जाए। पाठ पढ़े ना बूझई पेखी परम पुलाए। गुरमति हर सदा पाया रसना हर रस माए। माया मोह चुकाया गुरमति सहि सुभाए। बिन शब्द जग दुखिया फिराए मन मुखा नो गई खाए। सबदे नाम ते आईए सबदे सच समाए। माया पूले सिद्ध फिरे समाध ना लगे सुभाए। तीने लो व्यापत है अद कही लपटाए। बिन गुर मुक्त ना पाई है ना दुबदा माया जाए। माया किसनो वाखिए क्या माया कर्म कमाए। दुख सुख एहो जियो बद है अहो मैं कर्म कमाए। बिन शब्द परम ना चुकई ना विचो हो मैं जाए। बिन प्रीति भगत ना हो वई बिन शब्द थाए ना पाए। शब्द हो मैं मारी है माया का परम जाए। नाम पदार्थ पाई है गुरमुख सह सुभाए। बिन गुर गुण ना जापनी बिन गुण भगत ना होए। भगत वछल हर मन वसिया सहज मिलिया प्रभ सोए। नानक शब्दे हसा लाही है कर्म प्राप्त होए। श्री राग

दैत पुत कर्म धर्म किछ संजम ना पड़े, दूजा भाव न जाने, सतगुर भेटे निर्मल होवा, अंदन नाम वखाणे। एको पढ़े एको ना बूझे, दूजा अवर न जाने, खड़ दर्शन जोगी सन्यासी, बिन गुर परम भुलाए, सतगुर सेवै ता गत मित पावै, हर जियो मन वसाए। सच्ची बाणी सो चित लागै, आवन जान रहाए, पंडित पढ़ पढ़ वाद वखाणे, बिन गुर परम भुलाए, लख चौरासी फेर पया, बिन शब्द मुक्त ना पाए, जा नाव चेतै तां गत पाए, जा सतगुर मेल मिलाए। सत संगत में नाम हर उपजै, जा सतगुर मिलै सुभाए, मन तन अर्पी आप गवाई, चला सतगुर पाए, सतबलिहारी गुर अपने विटाओ, जे हर से ती चित लाए। सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे, हर से ती रंग राता, प्रभ निकट वसै सबना घट अंतर, गुरमुख वर लै जाता। नानक नाम मिलै वडियाई, गुर कै शब्द पछाता, श्री राग महला तीजा, सहजै नो सब लोई दी, बिन गुर पाया ना जाए, पढ़ पढ़ पंडित जोत की थके, भेखी परम भुलाए, गुर भेटे सहज पाया, अपनी कृपा करे रजाए, भाई रे गुर बिन सहज ना होए, शब्द ही ते सहज उपजै, हर पाया सच सोए रहाओ, सहजे गावया थाए पवै, बिन सहजै कथनी बाद, सहजे ही भगति उपजै, सहज पैर प्यार बैराग, सहजे ही ते सुख शांत होए, बिन सहजै जीवन बाद, सहज सलाही सदा सदा, सहज समाध लगाए, सहजे ही गुणी उचरै, भगत करे लिवलाए, सबदे ही हर मन वसै, रसना हर रस खाए, सहजे काल विडारिया, सशरण आई पाए, सहजे हर नाम वसिया, सच्ची कार कमाए, सेवड भागी जिनी पाया, सहजे रहे समाए, माया विच सहजन उपजै, माया दूजै पाए, मनमुख कर्म कमावणे, हौ मैं जलै जलाए, जमण मरण ना चुकई, फिर आवै जाए, त्रेह गुणा में सहज ना पाई है, त्रै गुण परम भुलाए, पढ़िए गुणिए क्या कथिए, जा मुंडो कुथा जाए, चौथे पद में सहज है, गुरमुख पल्लै पाए, निर्गुण नाम निदान है, सहजे सोजी होए, गुणवंती सालाहया, सच्चे सच्ची सोए, भुलिया सहज मिलाए सी, शब्द मिलावा होए, बिन सहजे सब अंध है, माया मोह गुबार, सहजे ही सोजी पई, सच्चे शब्द अपार, आपे बख्श मिलायन, पूरे गुर करतार, सहजे अदिष्ट पछाणिए, निरपौ ज्योत निरंकार, सबना जिया कायक दाता, ज्योति ज्योत मिलावनहार, पूरे शब्द सलाही है, जिसदा अंत ना पारावार, ज्ञानिया

स्वार्थ स्वाओ ना को करे, ना किश होवै काज, चित आवै ओस पार ब्रह्मो, ता निचल होवै राज। जा कहो चिंता बहुत बहुत, देही व्यापै रोग, ग्रस्त कुटुंब पलेटिया, कदे हरख कदे सोग। गौण करे चहो कुंटका, कड़ी ना बैसन सोए, चित आवै उस पर ब्रह्म, तन मन शीतल होए। काम क्रोध मोहे वस किया, किरपन लोग प्यार, चारे किलवख उन अग किए, होवा असर संघार। पोथी गीत कवित किश कदे ना करन धरिया, चित आवै उस पर ब्रह्म, ता निमक सिमरत तरिया। शास्त सिमरत वेद चार, मुखागर बिचरे, तपे तपी सर जोगिया। तीर्थ गमन करे खटकर में खटकर, माते दुगणे पूजा करता नाए, रंग ना लगी पार ब्रह्म, ता सर पर नरके जाए। राज मिलक सिकदारिया, रस भोगन विस्थार, बाग सुहावे सोहणे, चलै हुक्म अफार। रंग तमासे बहु विधि, चाहे लग रहया, चेतना आयो पार ब्रह्म, ता सर्व की जून गया। बहुत तनाड्या चारवंत, शोभा निर्मल दे।

भगवती रहत जुगता, योगी कहत मुक्ता, तपसी तप है राता, मुनि मोन धारी, सन्यासी ब्रह्मचारी, उदासी उदास राता, भगत नमह प्रकारा, पंडित वेद पुकारा, गृहस्थी ग्रस्त धर्माता, एक शब्दी बहुरूप अवधूता, कापड़ी कौते जागूता, एक तीर्थ नाता, निरहार वर्ती अपरसा, एक लूकना देवै दरसा, एक मन ही ज्ञाता, काटना किन्ही कहाया, सब कहते हैं पाया, जिस मेले सो भगता, सगल उगत उपावा, त्यागी शरण पावा, नानक गुर चरण पराता, एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, श्री राग महला पहला कर तीजा, जोगी अंदर जोगिया, तू भोगी।

मात पिता सुत नेह कनेरा माया मोह सबाई संजोगी आया किरत कमाया करनी कार कराई राम नाम बिन मुक्त ना होई बुढ़ी दूजा हेत कहो नानक प्राणी पहले पहरे छूटे गार चेत दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा पर जो बन मैं मत अहनस काम व्यापिया मन जा रहा मित्रा अंदले नाम ना चित राम नाम कट अंतर नाही होर जाने रसकस मीठे ज्ञान ध्यान गुण संजम नाही जन्म मरोंगे झूठे तीर्थ वर्त सुच संजम नाही कर्म धर्म नहीं पूजा नानक भाए भगत निस्तारा दुबदा व्यापै दूजा तीजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा सरहंस अलथड़े आए जोबन कटै जरुआ जनैवन जा रहा मित्रा आव कटै दिन जाए अंत काल पछतासी अंदले जां जम पकड़ चलाया सब किछ अपना कर कर राखिया खिनमै पया पराया बुद्ध विसरजी गई स्याणप कर अवगण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभचे तो लिवलाए चौथे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा बिरद पया तन खीण अखी अंध ना दी सही बन जा रहा मित्रा कन्नी सुने ना वैण अखी अंध जीव रस नाही रहे भरा कौ ताणा गुण अंतर नाही क्यों सुख पावै मन मुख आवण जाना खड़ पक्की कुड़ भजै बिनसै आए चले क्या मान कहो नानक प्राणी चौथे पहरै गुरमुख शब्द पछाण ओढ़ के आया तिन साहयावन जा रहा मित्रा जर जर वाणा कन एक रती गुण ना समाण आवन जा रहा मित्रा अवगण खड़सन बन गुण संयम जावै चोट ना खावै ना तिस जमण मरना काल जाल जम जोहे ना साकै पाए भगत पै तरना पत सेती जावै सहज समावै सगले दुख मिटावै कहो नानक प्राणी गुरमुख छूटै साचे ते पत पावै श्री राग महला चौथा पहले पहरै रहन कैवन जा रहा मित्रा हर पाया उदर मझार हर त्यावै हर उचरै वन जा रहा मित्रा हर हर नाम समार हर हर नाम जपया राधे विच अग्नि हर जप जीविया बाहर जन्म भया मुख लागा सरसे पिता मात थीविया जिसकी वस्तो तिस चेतो प्राणी कर हृदय गुरमुख विचार कहो नानक प्राणी पहले पहरे हर जपिए कृपा तार दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा मन लागा दूजे पाए मेरा मेरा कर पालिए वन जा रहा मित्रा ले

दासा ने भावै बिंदर सावै एखन तीरज क्यों करै। नाम बिहुना तन मनहीना जल बिन मछली ज्यो मरै। मिल मेरे प्यारे प्राणे आधारे गुण साध संग मिल गावै। नानक के स्वामी धार अनुग्रह मंत्र अंक समावै। डखना सो हंदड़ो हबठाए कोई न दिसै डुजड़ो खुलड़े कपाट। नानक सतगुर भेट ते संत तेरे बचना नू पिया पार। संतन आधार बाणी बिचारी है जियो सिमरत सास गिरास। पूर्ण विश्वास क्यों मनो विसारी है जियो क्यों मनो बिसारी है निमख नहीं टारी है। गुणवंत प्राण हमारे मन बाइंथ फल देते है स्वामी जी की बिरथा सारे। अनाथ के नाथे सर्व के साथे जप जुवे जन्म नहारी है। नानक की बेनंती प्रपै कृपा कर पव जल तारी है।

सुंदर स्वामी ताम भगत विश्राम आसा लग जीवते जियो मंतन गलतान सिमरत प्रभ नाम हर अमृत पीवते जियो अमृत हर पीवते सदा थिर थीवते बिखे बन फीका जानिया भय किरपाल गोपाल प्रभ मेरे साध संगत निधमानिया सर्ब सो सुख आनंद घन प्यारे हर तन मन अंतर सीवते एक तिल नहीं विसरे प्राण आधारा जप जप नानक जीवते डखणा

तोर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम ते आए। मन हर हर प्रीत लगाए वड भागी गुर पाया गुर शब्दी पार लंघाए रहाओ। हर आपे आपो पाएंदा हर आपे दे वैले हर आपे परम भुलाएंदा हर आपे ही मत दे। गुरमुखा मन परगास है से विरले के हम बलिहारी तिन कहो जिन हर पाया गुरमते। जन नानक कमल परगासिया मन हर हर उठड़ाओ है मन हर हर जपन करे हर गुरसरण आई भज पाओ जिंदु। सब किल विख दुख पर हरे रहाओ घट घट रमैया मन वसै क्यों पाई कित भत। गुरपुरा सतगुर भेटिया हर आए वसै मन चित। मैं तर नाम आधार है हर नामे ते गत मत। मैं हर हर नाम विसाहो है हर नामे ही जत पत। जन नानक नाम ते आया रंग रतड़ा हर रंग रत। हर त्यावो हर प्रभ सत गुर बचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत। रहाओ जिन कहो पूर्व लिखिया से आए मिले गुर पास। सेवक पाए वन जा रहा मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास। तन तन वन जवा पारिया जिन वखर लद्याड़ा हर रास। गुरमुखा दर मुख उजले से आए मिले हर पास। जन नानक गुर तिना पाया जिन्ना आप तुठा गुणतास। हर त्यावो सास गिरास मन प्रीत लगी तिना गुरमुखा। हर नाम जिन्ना रहरास रहाओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्री राग की वार महला चौथा श्लोका नाल श्लोक महला तीजा। रागां विच श्री राग है जे सच तरे प्यार। सदा हर सच मन वसै निश्चल मत अपार। रतने मूलक पाया गुर का शब्द विचार। जेवा सच्ची मन सच्चा सच्चा श्री रियाकार। नानक सच्चा सतगुर सेवे है सदा सच वापार महला तीजा। होर बिरहा सब धात है जब लग साहिब प्रीत ना होए। एहो मन माया मोहया वेखण सुन ना होए। सह देखे बिन प्रीत ना उपजै अंधा क्या करे। नानक जिन अखी लीतिया सोई सच्चा दे पौड़ी। हर इको करता एक इको दी बाण हर। हर इक सह दा है अमर इको हर चित तार। हर तिस बिन कोई नाहे डर भ्रम पौ दूर कर। हर तिसै नो सालाहे जे तुद रखै बाहर घर। हर जिसनो होए दयाल सो हर जप पौ बिखमतार। श्लोक महला पहला। दाती साहेब संधियां क्या चलै तिस नाल। एक जा गंदे ना लहन एक ना सुत्यां दे उठाल। महला पहला। सिदक सबूरी साधका सबर तो सा मलाए का। दीदार पूरे पाए सा थाओ नाही खाए का। पौड़ी सब आपे तो दियो पाए कै आप कर लाई। तू आपे वेख वेखदा अपनी वड्याई। हर तुदो बाहर किश नाही तू सच्चा साई। तू आपे आवरदा सबनी थाई। हर तिसै त्यावो संत जनों जो ले छड़ाई। श्लोक महला पहला। फकड़ जाती फकड़ नाओ सबना जिया इका शाओ। आपो जे को पला कहाए नानक ता पर जापै जा पत लेखै पाए। महला दूजा। जिस प्यारे स्यो ने हो तिस आगै मर चलिया। त्रिग जीवन संसार ता कै पाछै जीवना पौड़ी। तुद आपे धरती साजी है चंद सूरज दुए दीवे। दस चार हट तुद साजिया वापार करीवे। इकना नो हर लाभ दे जो गुरमुख थीवे। तिन जम काल ना वे आपई जिन सच अमृत पीवे। ओए आप छुटे परवार स्यों तिन पिछे सब जगत छुटी वे। श्लोक महला पहला। कुदरत करके वसया सोए वक्त विचारे सो बंदा होए। कुदरत है कीमत नहीं पाए जा कीमत पाए ता कहीं ना जाए। सरै सरैयत करे विचार बिन बूझे कैसे पावे पार। सिदक कर सिजदा मन कर मकसूद जेह तिर देखा ते तिर मौजूद। महला तीजा।
ਗੁਰਸਭਾ ਏਵ ਨਾ ਪਾਈਐ ਨਾ ਨੇੜੈ ਨਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਮਿਲੈ ਜਾ ਮਨ ਰਹਿ ਹਦੂਰ ਪੌੜੀ ਸਪਤ ਦੀਪ ਸਪਤ ਸਾਗਰਾ ਨਵ ਖੰਡ ਚਾਰ ਵੇਦ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਪੁਰਾਣਾ ਹਰ ਸਭਨਾ ਵੇ ਤੂੰ ਵਰਦਾ ਹਰ ਸਭਨਾ ਭਾਣਾ ਸਭ ਤੁਜੈ ਧਿਆਵੈ ਜੀ ਜੰਤ ਹਰ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣਾ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰਿਆ ਰਾਧ ਦੇ ਤਿਨਹਉ ਕੁਰਬਾਣਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆ ਵਰਦਾ ਕਰ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਕਲੋ ਮਸਾਜਨੀ ਕਿਆ ਸਦਾ

अस पौड़ी सो ऐसा हर नाम त्याई है मन मेरे जो सबना उपर हुक्म चलाए सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो अंति अवसर ले छाए सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए सो गुरमुख नाम जपिया वडभागी तिन निंदक दुष्टो सब पैरी पाए नानक नाम आराध सबना ते वड्डा सब नावे अगे आण निवाए श्लोक महला तीजा वेस करे क्रूप को लखणी मन खोटे कूड़ियार पिर कै पाणे ना चले हुक्म करे गावार गुर कै पाणे जो चले सब दुख निवारण हार लिखिया मेट न सकिए जो तुर लिखिया करतार मंत्र सौपे कंत कहो सब दे तरे प्यार बिन नामे कने ना पाया देखो हृदय विचार नानक सा सुआल्यो सुलखणी जे रावि सृजनहार महला तीजा माया मोह गुबार है तिसदा ना दिसै उरवार ना पार मनमुख अज्ञानी महा दुख पाए दे डुबे हर नाम विसार पाल के उठ बहु कर्म कमावै दूजे पाए प्यार सतगुर सेवै अपना भौजल उतरे पार नानक गुरमुख सच समावै सच नाम उरतार पौड़ी हर जल थल महियल भरपूर दूजा नाहे कोए हर आप बै करे न्याओ कूड़ियार सब मार कढोए सचियारा दे वड़ियाई हर धर्म न्याओ की ओए सब हर की करो उसत जिन गरीब अनाथ राख ली ओए जयकार कियो धर्मिया का पापी को दंड दी ओए श्लोक महला तीजा।

क्या हंस क्या बगला जा कौ नदर करे, जो तिस पावे नानका कागो हंस करे। पौड़ी कीता लोड़ी है काम सो हर पै आखी है, कार्ज दे सवार सतगुर सच साखी है। संता संग निधान अमृत चाखी है, पै पंजन मेहरवान दास की राखी है। नानक हर गुण गाए अलख प्रभ लाखी है। श्लोक महला तीजा, जियो पिंड सब तिसका सब सह दे आधार, नानक गुरमुख सेवी है सदा सदा दातार। हाँ बलिहारी तिन कहो जिनत आया हर निरंकार, ओना के मुख सद उजले ओना नो सब जगत करे नमस्कार। महला तीजा, सतगुर मिले उल्टी पई नवनिद खर्चो खाओ, अठारह सिद्धि पिछे लगियां फिरन निज घर वसै निज थाए। अनहद तुनी सद वज दे उनमन हर लिव लाए, नानक हर भगत तिन्ना कै मन वसै जिन मस्तक लिखिया तुर पाए। पौड़ी हाँ ढाडी हर प्रभ खसम का, हर कै दर आया हर अंदर सुनी पुकार। ढाडी मुख लाया हर पुछया ढाडी सद कै, केते अर्थ तू आया। नितेवो दान दयाल प्रभ हर नाम ते आया, हर दाते हर नाम जपाया नानक पैनाया सुध। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग कबीर जियो का, एक सवान कह कर गावना। जननी जानत सुत बड़ा होत है, इतना को ना जाने जे दिन दिन अवध घटत है। मोर मोर कर अधकलाड़ तार पेखत ही जमरा हसै, ऐसा तैं जग पर मलाया कैसे बुझे जा मोया है माया। रहाओ कहत कबीर छोड़ बिखिया रस, इत संगत नहीं चो मरनार। मैया जपो प्राणी अंत जीवन बाणी, इन बिद पव सागर तरना जा तिस पावे ता लागे पाओ। भरम भुलावा विचों जाए उपजे सहज ज्ञान मत जागे, गुर प्रसाद अंतर लिव लागे। इत संगत नाही मरना हुक्म पछाणता खसम मिलना। रहाओ दूजा श्री राग त्रिलोचन का, माया मोह मन अगलड़ा प्राणी जरा मरण पौ विसर गया। कुटुंब देख बिकसै कमला ज्यों, पर कर जो है कपट नरा।

रेन संतन की मेरे मुख लागी, दुरमत बिन सीख बोध्या भागी, सच कर बैस रहे गुण गाए।

माज महला पंजवा सबे सुख पय प्रभ तुठे गुरपुरे के चरण मन मुठे सह समाद लगी लवे अंतर सोरा सोई जाने जियो आगमा गोचर साहिब मेरा कड़कड़ अंतर वरतै नेरा सदा लिप्त जिया का दाता को विरलाया पछाण जियो प्रा मृणै की है निशानी मन को सच्चा हुक्म पछाणी सह संतोख सदा तृप्ता से अंध खसम कह पाण जियो हथी दित्ती प्रभ देवन हारे जन्म मरण रोग सब निवारे नानक दास किए प्रभ अपने हर कीर्तन रंग माणे जियो माज महला पंजवा कीनी दया गोपाल गुसाई गुर के चरण वसे मन माही अंगीकार की आतन करता दुखा डेरा टाहया जियो मंतन वसिया सच्चा सोई बिखड़ा थान न दिसै कोई दूत दुश्मन सब सज्जन होए एको स्वामी आया जियो जो किश करे सो आपे आपै बुद्ध स्याणप किशु ना जापै अपने संता नो आप सहाई प्रभ भरम भुलावा लाया जियो चरण कमल जन काया धारो आठ पह राम नाम वापारो सहज आनंद गावे गुण गोविंद प्रभ नानक सर्ब समाया जियो माज महला पंजवा सो सच मंदर जे सच त्याई है सोरदा सुहेला जित हर गुण गाई है सा तरत सुहावी जित वसै हर जन सच्चे नाम विटो कुर्बानो जियो सच वडाई कीम ना पाई कुदरत कर्म ना कहना जाई त्याय त्याय जीवै जन तेरे सच शब्द मन मानो जियो सासा लाहन वट पागी पाई है गुर प्रसादी हर गुण गाई है रंग रते तेरा तुद भावै सच नाम निशानो जियो सच्चे अंत न जाने कोई थान थन अंतर सच्चा सोई नानक साहित्य आई है सद ही अंतर जामी जानो जियो माज महला पंजवा रैन सुहावड़ी दिन सुहेला जप अमृत नाम संत संग मेला कड़ी मूर्त सिमरत पल वन्या जीवन सफल थाई जियो सिमरत नाम दोग सब लाथे अंतर बाहर हर प्रभ साथे पै पाओ परम खोया गुरपुर देखा सबनी जाई जियो प्रभ समरथ वड ऊचा पारा नौनद नाम परे पंडारा आद अंत मध प्रभ सोई दूजा लवै न लाई जियो

माज महला पंजवा अथ है तू है आगे आपे जी जंत्र सब तेरे थापे तुद बिन अवर ना कोई करते मैं तारे ओठ तो मारी जियो रसना जब जब जी वै स्वामी पार ब्रह्म प्रभ अंतर जामी जिन सेव्या तिन्ही सुख पाया सो जन्म ना जुवै हारी जियो नाम अवखद।

पूर्ण पूर रहया सब आपे गुरमत नदरी आवणिया आपे आप निरंजन सोई जिन सिर जीतन आपे गोई नानक नाम समाल सदा तू सहजे सच समावणिया। माज महला तीजा से सच लागे जो तुद पाए सदा सा सेवै सह सुभाए सच्चे शब्द सच्चा सालाही सच्चे मेल मिलावणिया। हाँ वारी जियो वारी सासा लाहणिया सच ते आए न से सच राते सच्चे सच समावणिया। रहाओ जह देखा सच सबनी थाई गुर प्रसादी मन वसाई तन सच्चा रसना सच राती सच सुन आख वखानणिया। मनसा मार सच समाणी इन मन डीठी सब आवण जानी सतगुर सेवे सदा मन ने चलो निज कर वासा पावणिया। गुर कै शब्द हृदय दिखाया माया मोह सब जलाया सचो सच्चा वेख सालाही गुर शब्दी सच पावणिया। जो सच राते तर सच्ची लिव लागी हर नाम समालै से वड भागी सच्चै शब्द आप मिलाए सत संगत सच गुण गावणिया। लेखा पढ़ी जे लेखे विच होवै ओह अगम अगोचर शब्द सुध होवै आन दिन सच शब्द सालाही होर कोई ना कीमत पावणिया। पढ़ पढ़ थाके सांत ना आई तृष्णा जाले सुध ना काई बिख विहाजै बिख मोह प्यासे कूड़ बोल बिख खावणिया। गुर प्रसादी एको जाना दूजा मार मन सच समाणा नानक एको नाम वरतै सब अंतर गुर प्रसादी पावणिया। माज महला तीजा वर्ण रूप वरतै सब तेरे मर मर जमै फेर पवै कनेरे तू एको नेह चलो अगमया पारा गुरमती बूझ बुझावणिया। हाउ वारी जियो वारी राम नाम मन वसावणिया जिस रूप ना रेखिया वर्ण ना कोई गुरमती आ बुझावणिया। रहाओ सब एका जोत जाने जे कोई सतगुर सेवे प्रगट होई गुप्त प्रगट वरतै सब थाई ज्योति ज्योत मिलावणिया। तिसना यगन जलै संसारा लोभ अवमान बहुत हंकारा मर मर जन्मै पत गवाए अपनी बिरथा जन्म गवावणिया। गुर का शब्द को विरला बूजै आप मारे तांत्र पवन सूजै फिर ओह मरै ना मरना होवै सहजे सच समावणिया। माया मह फिर चेतना लाए गुर कै शब्द सद रह समाए सच सा लाहे सब घट अंतर सचो सच सुहावणिया। सच सा लाही सदा हजूरे गुर कै शब्द रहया परपूरे गुर प्रसादी सच नदरी आवै सच्चे ही सुख पावणिया। सच मन अंदर रहया समाए सदा सच निह चलो आवै ना जाए सच्चे लागै सो मन निर्मल गुरमती सच समावणिया। सच सालाही अवर ना कोई जित सेवै सदा सुख होई नानक नाम रते विचारी सचो सच कमावणिया। माज महला तीजा निर्मल शब्द निर्मल है बाणी निर्मल जोत समहे समाणी निर्मल बाणी हर सा लाही जप हर निर्मल मैल गवावणिया। हाँ वारी जियो वारी सुखदाता मन वसावणिया हर निर्मल गुर शब्द सा लाही शब्दो सुनत सा मिटावणिया। रहाओ निर्मल नाम वसिया मन आए मन तन निर्मल माया मोह गवाए निर्मल गुण गावै नित साचे के निर्मल नाद बजावणिया।
ਨਿਰਮਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਮੁਵਾ ਤਿੱਥੈ ਮੋਹ ਨਾ ਮਾਇਆ। ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਅਤਿ ਨਿਰਮਲ, ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ, ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਸੇਵੇ ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗੁਰਸਬਦੇ ਧੋਵੈ। ਨਿਰਮਲ ਵਾਜੈ ਅਨਹਤੁਨ ਬਾਣੀ, ਦਰ ਸੱਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਸਭ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ, ਨਿਰਮਲ ਮਨੁਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਪਰੋਵੈ। ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਲੱਗੇ ਵਡਭਾਗੀ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵਣਿਆ। ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਜੋ ਸ਼ਬਦੇ ਸੋ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਮਨ ਤਨ ਮੋਹੈ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਮਲ ਕਦੇ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਮੁਖੀ ਉਜਲ ਸੱਚ ਕਰਾਵਣਿਆ। ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਏ, ਮੈਲਾ ਚੌਕਾ ਮੈਲਾ ਥਾਏ, ਮੈਲਾ ਖਾਏ ਫਿਰ ਮੈਲ ਵਧਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਮੈਲ ਦੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਮੈਲੇ ਨਿਰਮਲ ਸਭ ਹੁਕਮ ਸਵਾਏ, ਸੇ ਨਿਰਮਲ ਜੋ ਹਰ ਸਾਚੇ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਅੰਤਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੈਲ ਚੁਕਾਵਣਿਆ। ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਗੋਵਿੰਦ ਉਜਲ ਉਜਲ ਹੰਸਾ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਮੇਰੀ ਮਨਸਾ। ਮਨ ਉਜਲ ਸਦਾ ਮੁਖ ਸੋ ਹੈ, ਅਤ ਉਜਲ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਣਿਆ। ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਣਿਆ। ਰਹਾਉ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਪੈ ਉਜਲ ਹਉਮੈ ਮਲ ਜਾਏ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ। ਮਨੁਆ ਨਾਚੈ ਭਗਤ ਦਿਰੜਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ

माया मोहे जोहया जमकाले, माया मोह इस मने निचाए अंतर कपट दुख पावने आ। गुरमुख भगत जा आप कराए तन मन राता सही सुभाए, बाणी वजाए शब्द वजाए।

लिख दिया कागद मस खोई, दूजे पाए सुख पाए ना कोई। कूड लिखे तै कूड कमावे, जल जावे कूड चित लावणिया। गुरमुख सचो सच लिखे विचार, सेजन सच्चे पावे मोख द्वार। सच कागद कलम मसवाणी, सच लिख सच समावणिया। मेरा प्रभ अंतर बैठा वेखे, गुरप्रसादी मिले सोई जन लेखे। नानक नाम मिले वड्याई, पूरे गुरते पावणिया। माज महला तीजा, आत्म राम प्रगास गुरते होवे। हम मैं लागी गुरसबदी खोवे। मन निर्मलो अंदन भगति राता, भगत करे हर पावणिया। हाँ वारी जियो वारी, आप भगत करन अवरा भगत करावणिया। तिना भगत जना कहो, सद नाम सकार की जय। जो अंदन हर गुण गावणिया, रहाओ आपे करता कारण कराए। जित पावे तत्कार लाए, पूरे भाग

हाँ वारी जियो वारी जग जीवन मन वसावणिया हर जग जीवन निरपौ दाता गुरमत सहज समावणिया रहाओ। करी मैं तरती तौल पाताला कर ही मैं प्रीतम सदा है बाला सदा आनंद रह सुखदाता गुरमत सहज समावणिया काया अंदर हो मैं मेरा जमन मरण ना चुके फेरा गुरमुख हो।

अंदर महल रतनी परे भंडारा, गुरमुख पाए नाम अपारा। गुरमुख बन जे सदा वापारी, लाहा नाम सद पावने आ। आपे वथ राखै आपे दे, गुरमुख बन जै के ई के। नानक जिस नदर करे सो पाए, कर कृपा मन वसावने आ। माज महला तीजा, हरे आपे मेले सेव कराए, गुर कै शब्द भाव दूजा जाए। हर निर्मल सदा गुणदाता, हर गुण मैं आप समावने आ। हाँ वारी जियो वारी, सच सच्चा हिरदय वसावने आ। सच्चा नाम सदा है निर्मल, गुर शब्दी मन वसावने आ। रहाओ आपे गुरदाता, कर्म विधाता, सेवक सेवै गुरमुख हर जाता। अमृत नाम सदा जन सो है, गुरमत हर रस पावने आ। इस गुफा मैं एक थान सोहाया, पूरे गुरह मैं भरम चुकाया। अंदन नाम सलाहन रंग राते, गुर कृपा ते पावने आ। गुर कै शब्द एहो गुफा विचारे, नाम निरंजन अंतर वसै मुरारे। हर गुण गावै शब्द सुहाए, मिल प्रीतम सुख पावने आ। जम जा गाती दूजे पाए, कर लाए नाम पूले दे सजाए। कड़ी मोहत का लेखा लेवै, रतियो मासा तोल कढ़ावने आ। पेयड़ प्रचेते नाही, दूजे मुठी रोवै ताही। खरी कुवाल्यो क्रूप कुलखणी, सुपने पर नहीं पावने आ। पेयड़ पर मन वसाया, पूरे गुरह दूर दिखाया। कामन पर राख्या कंठ लाए, सबदे पर रा वैसे सुहावने आ। आपे देवै सद बुलाए, अपना नाम मन वसाए। नानक नाम मिलै वडियाई, अंदन सदा गुण गावणे आ। माज महला तीजा, ऊतम जन्म सुथान है वासा। सतगुर सेवै कर माहे उदासा, हर रंग रहै सदा रंग राते। हर रस मंत्र बतावणे आ। हाँ वारी जियो वारी, पढ़ बुझ मन वसावने आ। गुरमुख पढ़े हर नाम सलाह है, दर सच्चै सोभा पावने आ। रहाओ अलख अपेओ हर रया समाए, उपाय न किती पाया जाए। कृपा करे ता सतगुर भेटे, नदरी मेल मिलावने आ। दूजे पाए पड़े नहीं बूजे, त्रिबद माया कारण लूजे। त्रिबद बंधन टूटे गुरसबदी, गुरसबदी मुक्त करावने आ। एहो मन चंचल

हाँ हाँ करे तय आप जनाए, बहु कर्म करे एक स्थाए न पाए। तो इते बाहर किशु ना होवे, बक्से शब्द सुहावणिया। उपजै पचै हर बूजै नाही, अंदन दूजै पाए फिराही। मनमुख जन्म गया है बिरथा, अंत गया पछतावणिया। पिर पर दे सिंगार बनाए, मनमुख अंध ऐसे कर्म कमाए। हलत ना सोभा पलत ना ढोई, बिरथा जन्म गवावणिया। हर का नाम किने विरलै जाता, पूरे गुर कै शब्द पछाता। अंधन भगत करे दिन राती, सहजे ही सुख पावणिया। सब मैं वरतै एको सोई, गुरमुख विरला बूझै कोई। नानक नाम रते जन सोहै, कर किरपा आप मिलावणिया। माज महला तीजा, मनमुख पड़े पंडित कहावै। दूजे पाए महा दुख पावै, बिख्या माते के सूजै नाही। फिर जूनी आवणिया, हौ वारी जियो वारी। हौ मैं मार मिलावणिया, गुर सेवा ते हर मन वसिया। हर रस पियावणिया, रहाओ वेद पड़े हर रस नहीं आया। वाद वखाणै मोहे माया, अज्ञान मती सदा अंधियारा। गुरमुख बूझ हर गावणिया, अकथो कथिया शब्द सुहावै। गुरमति मन सचो पावै, सचो सच रवै दिन राती। इहो मन सच रंगावणिया, जो सच रते तिन सचो पावै। आपे दे न पछोतावै, गुर कै शब्द सदा सजाता। मन सच्चे सुख पावणिया, कूड़ कसात तिन्हा मैल न लागै। गुर प्रसादी अंदन जागै, निर्मल नाम वसै कट पीतर। ज्योति ज्योत मिलावणिया, त्रै गुण पड़ै हर तत ना जाणै। मूलो पूले गुर शब्द ना पछाणै, मोह व्यापे के सूजै नाही। गुर शब्दी हर पावणिया, वेद पुकारै त्रिपद माया। मनमुख ना बूझै दूजा पाया, त्रै गुण पड़ै हर एक ना जाणै। बिन बूझे दुख पावणिया, जात पावै ता आप मिलाए। गुर शब्दी सहसा दुख चुकाए, नानक नावै की सच्ची वडियाई। नामो मन सुख पावणिया। माज महला तीजा, निर्गुण सरगुण आपे सोई। तत् पछाणै सो पंडित होई। आप तरै सगले कुल तारै, हर नाम मन वसावणिया। हाँ वारी जियो वारी, हर रस चख साध पावणिया। हर चख ऐसे जन निर्मल, निर्मल नाम ते आवणिया। रहाओ सो निह कर्मी, जो शब्द बिचारे। अंतर तत् ज्ञान हौ मैं मारे। नाम पदार्थ नौनद पाए, त्रैगुण मेट समावणिया। हौ मैं करै निह कर्मी ना होवै, गुर प्रसादी हौ मैं खोवै। अंतर विवेक सदा आप विचारे, गुर शब्दी गुण गावणिया। हर सर सागर निर्मल सोई, संत चुगै नित गुरमुख होई। इसनान करै सदा दिन राती, हौ मैं मैल चुकावणिया। निर्मल हंसा प्रेम प्यार, हर सर्वसै हौ मैं मार। अहनिस प्रीत शब्द साचै, हर सर्वसा पावणिया। मनमुख सदा बग मैला, हौ मैं मल लाई। इसनान करै पर मैल ना जाई। जीवत मरै गुर शब्द विचारे, हौ मैं मैल चुकावणिया। रतन पदार्थ करते पाया, पूरा सतगुर शब्द सुनाया। गुर प्रसाद मिटिया अंधियारा, कर चानण आप पछाननिया। आप यो पाए तै आपे वेखै, सतगुर सेवै सोजन लेखै। नानक नाम वसै कट अंतर, गुर किरपा ते पावणिया। माज महला तीजा, माया मोह जगत सवाया। त्रैगुण दिसै मोहे माया, गुर प्रसादी को विरला बूझै। चौथे पद लिवलावणिया, हाँ वारी जियो वारी। माया मोह शब्द जलावणिया, माया मोह जलाए सो हर स्यों चितलाए। हर दर महली सोभा पावणिया, रहाओ। देवी देवा मूल है माया, सिमरत शास्त्र जिन उपाया। काम क्रोध पसेरा संसारे, आए जाए दुख पावणिया। तिस विच ज्ञान रतन एक पाया, गुर प्रसादी मन वसाया। जत सत संजम सच कमावै, गुर पूरै नाम ते आवणिया।
ਪੇਈ ਅੜੈ ਤਨ ਪਰਮ ਭੁਲਾਣੀ, ਦੂਜੇ ਲਾਗੀ ਫਿਰ ਪੱਛੋ ਤਾਣੀ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੋਵੇ ਗਾਵਾਏ, ਸੁਪਨੇ ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਪੇਈ ਅੜੈ ਤਨ ਕੰਤ ਸਮਾਲੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਵੇਖੈ ਨਾਲੇ, ਪਿਰਕੈ ਸਹਿਜ ਰਹਿ ਰੰਗ ਰਾਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣਾਵਣਿਆ। ਸਫਲ ਜਨਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਜਲਾਇਆ, ਏਕੋ ਰਵ ਰਹਿਆ ਘਟ ਅੰਤਰ, ਮਿਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਸੇਵੇ ਸੋ ਕਾਹੇ ਆਇਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਚੇਤਨਾ ਆਵੈ, ਬਿਨਾਵੈ ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਜਿਨ ਸਿਸ਼ਟ ਸਾਜੀ ਸੋਈ ਜਾਣੈ, ਆਪੇ ਮਿਲੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਤਿਨ ਜਿਨ ਕਉ, ਜਿਨ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਵਣਿਆ। ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਆਦ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰਿਆਪੇ, ਆਪੇ ਥਾਪੇ ਥਾਪੋ ਥਾਪੇ, ਸਭ ਮੈਂ

तुद जेवड़ दाता है वरना स्वामी लवै न कोई लावण्या। जिस तू तुठा सो तुद त्याए, साजना का मंत्र कमाए, आप तरै सगले कुल तारे, तिस दरगह ठाग ना पावण्या। तू वड्डा तू उचो उचा, तू बेअंत वत मूचो मूचा, हाँ कुर्बानी तेरे वन्या, नानक दास दसावण्या। माज महला पंजवां, कौन सो मुक्ता कौन सो जुगता, कौन सो ज्ञानी कौन सो भगता, कौन सो गिरही कौन उदासी, कौन सो कीमत पाए जियो, किन बिद बाधा किन बिद छूटा, किन बिद आवन जावन टूटा, कौन कर्म कौन निह कर्मा, कौन सो कह कहाए जियो, कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सनमुख कौन वे मुखिया, किन बिद मिली है किन बिद बिछरै, एह बिद कौन प्रगटाए जियो, कौन सो अखर जे तावत रहता, कौन उपदेश जित दुख सुख समसहता, कौन सो चाल जित पार ब्रह्म त्याए, किन बिद कीर्तन गाए जियो, गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता, गुरमुख ज्ञानी गुरमुख भगता, धन गिरही उदासी गुरमुख, गुरमुख कीमत पाए जियो, हम मैं बाधा गुरमुख छूटा, गुरमुख आवण जावण टूटा, गुरमुख कर्म गुरमुख नेह कर्मा, गुरमुख करे सो सुभाए जियो, गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरमुख मिलिया मनमुख बिछरै, गुरमुख बिद प्रगटाए जियो, गुरमुख अखर जे तावत रहता, गुरमुख उपदेश दुख सुख समसहता, गुरमुख चाल जित पार ब्रह्म त्याए, गुरमुख कीर्तन गाए जियो, सगली बणत बनाई आपे, आपे करे कराए थापे, एक स्ते होयो अनंता, नानक एक समाए समाए जियो। माज महला पंजवां, प्रभु बनासी ता क्या काड़ा, हर भगवंता ता जन खरा सुखाला, जी प्राण मान सुखदाता, तू करै सोई सुख पावण्या, हां वारी जियो वारी गुरमुख मंतन पावण्या, तू मेरा पर्वत तू मेरा ओला, तुम संग लवै ना लावण्या, रहाओ तेरा कीता जिस लागै मीठा, घट घट घट घट पार ब्रह्म तिन जन डीठा, थान थनंतर तू है एको एक वरतावण्या, सगल मनोरथ

किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मिलो राम। चार कुंटो दह दिस भ्रमे थके आए प्रभ की साम। तेन दुदै ते बाहरी किते ना आवे काम। जल बिन साह कुमलावती उपजे नाही दाम। हर नहा ना मिलिए सजने कत पाइए विश्राम। जित घर हर कंत

जिन पाया प्रभ अपना आए तिसै गणा एक खेनु तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जाना जलथल महियर पूरिया रव्या विच वणा सो प्रभ चेतना आवई कितड़ा दुख गणा जिनी रावया सो प्रभु तिन्ना पाग मना हर दर्शन कौ मन लोचदा नानक प्यास मना चेत मिलाए सो प्रभु तिसके पाए लगा वैसाख तीरन क्यों वाडिया जिन्ना प्रेम बिशो हो हर साजन पुरख विसार कै लगी माया तो हो पुत्र कलतर ना संग तना हर अवनासी ओहो पलच पलच सगली मुई झूठे तंदे मोहो एक सहर के नाम बिन अगे लइए खोहे दैव सार विगुचना प्रभिन अवर ना कोहे प्रीतम चरनी जो लगे तिनकी निर्मल सोए नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलो प्राप्त होए वैसाख सुहावा ता लगे जा संत भेटे हर सोए हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है जिस अगे सब निवन हर सज्जन दावन लग्या किसे ना देई बन माणक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन रंग सबे नारायण जेते मन पावन जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन जो प्रभ कीते अपने से ही कहिए तन अपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रोवन साधु संग प्राप्ते नानक रंग माणन हर जेठ रंगीला तिस धनी जिसके पाग मथन आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर नाहो ना जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संदियास दोया पाए विगुची है गल पई सो जम की फास जिहा बीजै सो लुणै मथे जो लिखे आस रैण विहानी पछताणी उठ चली गई निरास जिन कौ साधु भेटिया सो दरगह होए खलास कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आषाढ़ सुहंदा तिस लगै जिस मन हर चरण निवास सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ा व्या दिसन सबे शार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वन तेन प्रभ संग मौलिया समरथ पुरखिया पार हर मिलने नो मन लोचदा करम मिलावन हार जिनी सखिए प्रभ पाया हो तिनके सबर हार नानक हर जी मया कर शब्द सवारन हार सावन तिना सुहागणी।

संत सहाई प्रेम के हौतन कै लागा पाए, विण प्रभ क्यों सुख पाई है दूजी नाही जाए। जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आगाए, आप त्याग बिनती करे लेहो प्रभु लड़ लाए। जो हर कंत मिलाइया से विछड़ कत ना जाए, प्रवण दूजा को नहीं नानक हर शरण आए। असु सुखी वसंदियां।

नानक मंगे दर्श दान, कृपा करो हरे। माज महला पंजवां, दिन रहन एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सेवी सतगुर अपना हर सिमरी दिन सब रहन, आप त्याग सरनी पवा मुख बोली मिठड़े वैण, जन्म जन्म का विछड़िया हर मेलो सज्जन सैन, जो जी हर ते विछड़े से सुख न वसन पैण, हर पिर बिन चैन न पाईए खोज डिठे सब गैण, आप कमाणे विछड़ी दोस न काहू देण, कर कृपा प्रभ राख ले हो होर नाही करन करेण, हर तुद बिन खाकू रूलना कहिए किथै वैण, नानक की बेनंतिया हर सुरजन देखा नैण, जी की बिरथा सो सुने हर समर्थ पुरख अपार, मरण जीवन आराधना सबना काया धार, ससरै पई है तिसकंत की वड्डा जिस परवार, ऊंचा अगम आप गाद बोध किशंतना पारावार, सेवा सा तिस पावसी संता की हो इशार, दीना ना दयाल देव पत ते उदाहरण हार, आज जुगादी रखदा सच नाम करतार, कीमत कोई न जाने को नाही तोलन हार, मंत्र अंतर वस रहे नानक नहीं सुमार, दिन रहन जे प्रभ को सेम दे तिन कै सत बलिहार, संत आराधन सद सदा सबना का बख्शेंद, जियो पिंड जिन साजिया कर कृपा दिती निजिंद, गुरसबदी आराधिय जपिए निर्मल मंत, कीमत कहन न जाइए परमेश्वर बेअंत, जिस मन वसै नारायण सो कहिए भगवंत, जी की लोचा पूरी है मिलै स्वामी कंत, नानक जीवै जप हरि दोख सबे ही हंत, दिन रहन जिस न विसरै सो हरिया होवै जंत, सर्व कला प्रभ पूर्ण मन माणी थाओ, हरे ओट गही मन अंदरे जब जब जीवन आओ, कर कृपा प्रभ अपनी जंतूड़ी संग समाओ, जो तू राख्या त्यो रहा तेरा दिता पैना खाओ, उद्यम सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ, दूजी जाय न सुजई किथे कूकण जाओ, अज्ञान बिनासन तम हरण ऊंचे अगमया माओ, मन विछड़िया हर मेली है नानक हो सवाओ, सर्व कल्याणा तित देनो हर परसी गुर के पाओ, वार माज की तथा श्लोक महला पहला, मलक मुरीद तथा चंद्रहड़ा सुहिया की तुनी गावनी, एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद, श्लोक महला पहला। गुरदाता गुर है वैकार, गुर दीपक तेह लोए अमर पदार्थ नानका, मन माने सुख होए महला पहला।

पुकारिता, उड़िया हंस दसायरा, आया गया मोया ना, पिछे पतल सद्यो का, नानक मन मुख अंध प्यार, वाजगुरु डुबा संसार। महला पहला। दस बाल तन बी श्रवण, तीसा का सुंदर कहावे, चालीसी पर होए, पचासी पग खिसै।

तू आपे खेल करे सब करते क्या दूजा अख बखानी है। जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति बिच तू बोलै वेण ज्योति कोई किश करो दिखा सियाणी है। नानक गुरमुख नदरी आया हर इको सूट सुजानी है पौड़ी।

तात बोला जे समझाइए पढ़िए समर्थ पाठ अंधा चानन रखिए दीवे बले पचास चौने सोई ना पाइए चुन चुन खावे कास लोहा मारन पाइए टह ना होए कपास नानक मूर्ख एह गुण बोले सदा विनाश महला पहला कहा कंचन तुटे सार अग्नि गंढ पाए लोहार गोरी सेती तुटे पतार पुत्री गंढ पवे संसार राजा मंगे दिते गंढ पाए भुखिया गंढ पवे जा खाए काला गंढ नदियां मीह झोल गंढ प्रीति मिठे बोल बेदा गंढ बोले सच कोए मोया गंढ नेकी सत होए एत गंढ वरते संसार मूर्ख गंढ पवे मोह मार नानक आखे हो बिचार सिफती गंढ पवे दरबार पौड़ी आपे कुदरत साज कै आपे करे बिचार एक खोटे एक खरे आपे परखणहार खरे खजाने पाईए खोटे सटिए बार वार खोटे सच्ची दरगे सुटी है किसे आगे करे पुकार सतगुर पिछे भज पवै एहा करनी सार सतगुर खोट्यो खरे करे शब्द सवारन हार सच्ची दरगे मनियान गुर कै प्रेम प्यार गणत तिना दी को क्या करे जो आप बख्शे करतार सलोक महला पहला हम जेर जिमी दुनिया पीरा मसाए कराया मेर वद बादशाह अफजू खुदाए एक तू ही महला पहला ना देव दानवा नरा ना सिद्ध साध का तरा अस्त एक जिगर कोई एक तू ही महला पहला ना दादे देहांद आदमी ना सबत जेर जिमी अस्त एक जिगर कोई एक तू ही महला पहला ना सूर सस मंडलो ना सपत दीप नह जलो अन पौन थिर ना कोई एक तू ही महला पहला ना रिजक दस्त आकसे हमारा एक आस वसे अस्त एक जिगर कोई एक तू ही महला पहला परंदे ना ग्रह जर दरख्त आव्यास कर देहंद सुई एक तुई महला पहला नानक ललार लिखिया सोए मेटना सके कोए कला तरह हरै सुई एक तुई पौड़ी सच्चा तेरा हुक्म गुरमुख जानिया गुरमती आप गवाए सच पछाणिया सच तेरा दरबार शब्द निशानिया सच्चा शब्द विचार सच समाणिया मनमुख सदा कूड़ियार परम पुलाणिया विष्टा अंदर वास साधना जानिया विण नावें दुख पाए आवन जानिया नानक पारख आप जिन खोटा खरा पछाणिया सलोक महला पहला सिंहा बाजा चरगा कुहियां इना

गौड़ी महला पहला माता मत पिता संतोख सत भाई कर एहो विशेख कहना है किस कहन ना जाए तौ कुदरत कीमत नहीं पाए रहाओ सरम सुरत दुए ससर पहे करनी कामण कर मन लए साह संयोग वियह वियोग सच संतत।

जय कारण तट तीर्थ जाही रतन पदार्थ कट ही माही पड़ पड़ पंडित बाद वखाण पितर होंदी वस्त न जाण हो ना मुआ मेरी मुई बलाए ओह ना मुआ जो रया सुमाए कहो नानक गुर।

है, गुरमत देह भरोसा तेरा, तन मह मैल नाही मन राता, गुरबचनी सा शब्द पछाता, तेरा तान नाम की वड्याई, नानक रहना भगत सरनाई, गौड़ी महला पहला। जिन अकथ कहाया अप्यो पी आया, अनपै विसरे नाम समाया, क्या डरिए डर डरे समाना, पूरे गुर कै शब्द पछाना, रहाओ जिस नर राम हृदय हर रास, सह सुभाए मिले साबास, जाहे सवारे सांझ ब्याल, एतुत मनमुख बांधे काल, अहनिस राम हृदय से पूरे, नानक राम मिले परम दूरे, गौड़ी महला पहला। जन्म मरे त्रैगुण हितकार, चारे वेद कथा आकार, तीन अवस्था कह वखियान, तुरिया अवस्था सदगुर ते हर जान, राम भगत गुर सेवा तरना, बहुड़ जन्म ना होए है मरना, रहाओ चार पदार्थ कह सब कोई, सिमरत शास्त्र पंडित मुख सोई, बिन गुरे अर्थ विचार ना पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया, जा कै हृदय वसया हर सोई, गुरमुख भगत प्राप्त होई, हर की भगत मुक्त आनंद, गुरमत पाए परमानंद, जिन पाया गुर देख दिखाया, आसा महे निरास बुझाया, दीना नाथ सर्व सुखदाता, नानक हर चरणी मन राता, गौड़ी चेती महला पहला। अमृत काया रहे सुखाली, बाजी हो संसारो, लब लोभ मुझ कूड़ कमावे, बहुत उठावे पहारो, तू काया मैं रुल दी देखी, ज्यों तारी ऊपर इशारो, सुन सुन सिख हमारी, सुकृत कीता रहसी मेरे जियड़े, बहु नया व्यवारी, रहाओ। हाँ तुदे आखा मेरी काया, तू सुन सिख हमारी, निंदा चिंदा करै पराई, झूठी लाए तबारी, वेल पराई जो है जियड़े, करै चोरी बुरियारी, हंस चलिया तू पिछे रही है, छुट्टड़ होई है नारी, तू काया रही है सुपनंतर, तुद क्या कर्म कमाया, कर चोरी मैं जाकछ लिया, ता मन भला पाया, हालत

नानक मेरी बात ना पुछे कोई रहाओ। ताजी तुरकी सोना रूपा कपड़ केरे पारा किसी नाल न चले नानक चढ़ चढ़ पे गवारा। कूजा मेवा मैं सब किस चाखिया एक अमृत नाम तुम्हारा दें दे नीम दिवालो सारी पस मंदिर की टेरी। संचे संचना देई किस ही अंध जाने सब मेरी सोइन लंका सोइन माड़ी संपै किसे न केरी। सुन मूर्ख मान्या जाना होग तिसै का पाना रहाओ। शाओ हमारा ठाकर पारा हम तिसके वन जारे जियो पिंड सब रात तिसै की मारे आपे जी वाले। गौड़ी चेती महला पहला अवर पंच हम एक जना क्यों राखो कर बार मना मारे लूटे नीत नीत किस आगे करी पुकार जना। श्री राम नामा उचिर मना आगे जम दल बिखम कना रहाओ। उसार मडोली राखे द्वारा पीतर बैठी साधना अमृत केल करे नित कामनो अवर लुटेन सो पंच जना। टाहे मडोली लूटिया देहरा सा तन पकड़ी एक जना जम डंडा गल संगल पड़िया पा गए से पंच जना।

दाता गौड़ी चेती महला पहला मुंदरा ते कट पीतर मुंदरा काया की जय खिंता ता पंच चेले वस की जय रावल एह मन की जय डंडा ता जोग जुगते पावस्ता एक शब्द दूजा होर नास्त कंद मूल मन लावस्ता रहाओ मुंड मुडाया जे गुर पाईया हम गुर कीनी गंगा ता त्रिपवन तारण हर स्वामी एक ना चेतस अंधाता कर पटंब गली मन लावस संसा मूल न जावस्ता एक चरणी जे चित लावै लब लोभ की तावस्ता जपस निरंजन रचस मना काहे बोले जोगी कपट कना रहाओ काया कमली हंस याना मेरी मेरी करत बिहानी ता प्रणवत नानक नांगी दाजै फिर पाछा पिछतानी ता गौड़ी चेती महला पहला औखद मंत्र मूल मन एक जे कर दृढ़ चित की जय रे जन्म जन्म के पाप कर्म के काटन हारा ली जय रे मन एको साहिब पाई रे तेरे तीन गुना संसार समावे लखना लखना जाई रे रहाओ सकर खंड माया तन मीठी हम तो पंडो चाई रे रात अनेरी सूझ सुनाही लज टूक समूसा पाई रे मन मुख करे तेता दुख लागे गुरमुख मिले वडाई रे जोतन किया सोई होवा कीर्तना मेटिया जाई रे सुबर परे ना होवे ऊने जोरा ते रंग लाई रे तिन की पंख होवे जे नानक तौ मूड़ा किश पाई रे गौड़ी चेती महला पहला कत की माई बाप कत केरा किदू थामो हम आए अगन बिंब जल पीते।

आप भुला के प्रभ आप भुलाया, एहो जीव वडाणी चाकरी लाया, महा दुख हटे बिरथा जन्म गवाया, किरपा कर सतगुरु मिलाए, को नाम चेते विचों भरम चुकाए, नानक नाम जपे नाव नौ निद पाए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, जिन्ना गुरमुख ते आया तिन पूछो जाए, गुर सेवा ते मन पति आए, से तनवंत हर नाम कमाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, हर हर नाम जपो मेरे पाई, गुरमुख सेवा हर काल थाए पाई रहाओ, आप पछाणे मन निर्मल होए, जीवन मुक्त हर पावे सोए, हर गुण गावे मत उत्तम होए, सहजे सही समावे सोए, दूजे पाए ना सेव्या जाए, हमें माया महा बिख खाए, पुत कुटुंब गृह मोया माए, मन खयंदा आवै जाए, हर हर नाम देवे जन सोए, अंदन भगत गुर सबदी होए, गुरमत विरला बूझे कोए, नानक नाम समावे सोए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, गुर सेवा जुग चारे होई, पूरा जनकार कमावे कोई, अखुट नाम तन हर तोट ना होई, ऐथे सदा सुख दर सोभा होई, ए मन मेरे परम ना कीजै, गुरमुख सेवा अमृत रस पीजै रहाओ, सतगुर सेवै ऐसे महापुरख संसारे, आप उदरे कुल सगल निस्तारे, हर का नाम रखे और तारे, नाम रते भौजन उतरे पारे, सतगुर सेवै सदा मन दासा, हमै मार कमल प्रगासा, अनहद वाजै निकर वासा, नाम रते कर माहे उदासा, सतगुर सेवै तिन की सच्ची बाणी, जुग जुग भक्ति आख वखाणी, अन दिन जपै हर सारंग पाणी, नानक नाम रते नेह केवल निर्बाणी, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, सतगुर मिलै वडभाग संजोग, हृदय नाम नित हर रस भोग, गुरमुख प्राणी नाम हर त्याए, जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ, ज्ञान ध्यान

लख चौरासी भरम दे मन अठिया वह जाए, गुर का शब्द ना चीन्यो फिर जो नी पाए। गुरमुख आप पछाणिया हर नाम वसया मन आए, अंदर भगती रतिया हर नामे सुख समाए। मन शब्द मरे प्रतीत होए, हो मैं तजे विकार, जन नान करमी पाईया नु हर नामा भगत भंडार। गौड़ी बैरागण महला तीजा, पे अड़ा दिन चार है, हर हर लिख पाया सोभावंती नार है। गुरमुख गुण गाया पेवकड़ै गुण संभल, साहुरै वास पाया, गुरमुख सह समाणिया हर हर मन पाया। ससरै पेय पिर वसै, कहो किद बिद पाईऐ, आप निरंजन अलख है, आपे मिलाइय रहाओ। आपे ही प्रभ देह मत हर नाम ते आई है, वडभागी सतगुर मिलै मुखी अमृत पाई है। हो मैं दुबदा बिनस जाए, सहजे सुख समाइए, सब आपे आवरदा आपे नाए लाइए। मनमुख गर्भ ना पायो अज्ञान अयाणे, सतगुर सेवा ना करे फिर पछताने। गर्भ जोनी वास पाए दे गर्भे गर जाने, मेरे करते एवै भामदा मनमुख प्रमाणे। मेरा हर प्रभ लेख लिखाया तुरमस्तक पूरा, हर हर नाम ते आया भेटिया गुरसूरा। मेरा पिता माता हर नाम है हर बंधु बीरा, हर हर बख्श मिलाए प्रभ जन नानक कीरा। गौड़ी बैरागण महला तीजा, सतगुर ते ज्ञान पाया हर तत् बिचारा, मत मलीन प्रगट भई जपना मुरारा। सेव सकत मिटाइया चूका दियारा, तुरमस्तक जिन को लिखिया तिन हर नाम प्यारा। हर कित बिद पाईऐ संत जना, जिस देख हो जीवा, हर बिन चसा ना जीवती, गुर मिल्यो हर रस पीवा रहाओ। हाँ हर गुण गावा नित हर सुनी, हर हर गत कीनी, हर रस गुर ते पाया मेरा मन तन लीनी। तन तन गुर सत पुरख है, जिन भगत हर दीनी, जिस गुर ते हर पाया सो गुर हम कीनी। गुण दाता हर राय है,

सारी। ऐसा मेरा राम रहया भरपूर, निकट वसै नाही हर दूर रहाओ। हरे आपे शब्द सुरत धुन आपे, हरे आपे वेखै विकसै आपे, हरे आप जपाए आपे हर जापे। हरे आपे सारंग अमृत तारा, हर अमृत आप ही आवनहारा, हरे आप करे आपे निस्तारा। हरे आपे बेड़ी तुलहा तारा, हरे आपे गुरमति निस्तारा, हरे आपे नानक पावे पारा, गौड़ी बैरागण महला चौथा। साओ हमारा तू तनी, जैसी तू रास दे तैसी हमले, हर नाम जय रंग स्यों जे आप दयाल होए दे। हमन जारे राम के हर वणज करावे, दे रास रे रहाओ। ला हर भगतन खटिया, हर सच्चे सा मन पाया, हर जप हर वखर लद्या, जम जागाती नेड़ ना आया। होर वणज करै वापारिये, अनंत तरंगी दुख माया, ओए जिह वणज हर लाया, फल तेहा तिन पाया। हर हर वणज सो जन करे।

ज्यो जन्नी गर्भ पालती सुत की कर आसा, वड्डा होए तन खाड़ दे कर भोग बिलासा, त्यों हर जन प्रीत हर राखदा, दे आप हथासा मेरे राम मैं मूर्ख हर राख मेरे गोसैया। जानकी उपमा तुझै वडैया रहाओ, मंदिर घर आनंद हर, हर जस मन पावै सब रस मीठे मुख लगै, जा हर गुण गावै हर जन परिवार सधार है, एकी कुली सब जगत छुडावै, जो किश किया सो हर किया हर की वडियाई, हर जी तेरे तू मरतदा हर पूज कराई, हर भगत भंडार लहाईदा आपे वरताई, लाला हट विहाजिया क्या ते चतराई, जे राज बहाले ता हर गुलाम काशी को हर नाम कढ़ाई, जन नानक हर का दास है हर की वड्याई, गौड़ी गुआरेरी महला चौथा, किरसाणी किरसान करे लोचे जियो लाए, हल जोते उद्यम करे मेरा पुत धी खाए, त्यों हर जन हर हर जप करे हर अंत छिडाए, मैं मूर्ख की गत की जय मेरे राम, गुर सतगुर सेवा हर लाए हम काम रहाओ, लै तुरे सौदागरी सौदागर तावै, तन खट्टै आसा करै माया मोह वधावै, त्यों हर जन हर हर बोलता हर बोल सुख पावै, बिकसन चै हटवाणिया बै हट कमाए, मो झूठ पसारा झूठ का झूठे लपटाए, त्यों हर जन हर तन संचया हर खर्च लै जाए, एहो माया मोह कुटुंब है पाए दूजै फास, गुरमति

कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म है वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाले देश जरिया रहाओ। कई जन्म सैल गिर करया, कई जन्म गर्भ हिर खरया, कई जन्म सा कर उपाया, लख चौरासी जोन परमाया, साध संग भयो जन्म प्राप्त, कर सेवा भज हर हर गुरमत। त्याग मान झूठ मान, जीवत मरै दरगे प्रवान, जो किश होवा सो तुते होग, अवरना दूजा करण जोग। ता मिलिए जा लह मिलाए, कहो नानक हर हर गुण गाए। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, कर्म पूमे बो नाम, पूर्ण होए तुम्हारा काम, फल पावे मिटे जम त्रास, नित गावे हर हर गुण जास। हर हर नाम अंतर उतार, सीगर कार्ज लेहो सवार रहाओ। अपने प्रभ स्यो हो सावधान, ता तू दरगे पावे मान। उक्त सियाणप सगली त्याग, संजना की चरणी लाग, सर्ब जी है जाके हाथ, कदे न विछड़ा सबके साथ। उपाव छोड़ गहो तिसकी ओट, निमुख माहे होवे तेरी छोट, सदा निकट कर तिसनो जान, प्रभ की आज्ञा सत्कर्मान। गुर कै बचन मिटावो आप, हर हर नाम नानक जप जाप, गौड़ी गुआरे री महला पंजवा। गुर का बचन सदा अबनासी, गुर कै बचन कट्टी जम फासी, गुर का बचन जी कै संग, गुर कै बचन रचै राम कै रंग। जो गुर दिया सो मन कै काम, संत का किया सत्कर मान रहाओ। गुर का बचन अटल अशेद, गुर कै बचन कटे परम भेद, गुर का बचन कतो ना जाए, गुर कै बचन हर के गुण गाए। गुर का बचन जी कै साथ, गुर का बचन अनाथ को नाथ, गुर कै बचन नरक ना पवै, गुर कै बचन रसना अमृत रवै। गुर का बचन प्रगट संसार, गुर कै बचन ना आवै हार, जे जन होए आप कृपाल, नानक सतगुरु सदा दयाल। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, जिन कीता माटी ते रतन, गर्व मैं राख्या जिन कर जतन, जिन दीनी सोभा वड्याई, तिस प्रभ को आठ पहर ते आई, रमैया रेन सा जन पावो, गुर मिल अपना खसम ते आवो रहाओ। जिन कीता मूढ़ ते बगता, जिन कीता बिसुरत ते सुरता, जिस पर साधन मैं निध पाई, सो प्रभ मन ते बिसरत नाही। जिन दिया निथावे कौ थान, जिन दिया निमाने कौ मान, जिन कीनी सा पूर्ण आसा, सिमरो दिन रहन सास गिरासा, जिस प्रसाद माया सिलक काटी, गुर प्रसाद अमृत बिख खाटी। कहो नानक इसते किश नाही, रखन हारे कौ सालाही, गौड़ी गुआरे री महला पंजवा। तिसकी शरण नाही पौ सोग, उसते बाहर कछु ना होग, तजी सियाणप बल बुद्ध बिकार, दास अपने की रखन हार। जप मन मेरे राम राम रंग, कर बाहर तेरे सदसंग रहाओ। तिसकी टेक मने मैं राख, गुर का शब्द अमृत रस चाख, आवर जतनों कह

नाम तेरा रहे मन राता, यो कल्याण नान कर जाता। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, आन रसा जेते तै चाखे, निमखना तृष्णा तेरी लाथे। हर रस का तू चाखे साधो, चाखत होए रह बिस्मादो। अमृत रसना पियो प्यारी, एह रस राती होए तृप्तारी रहाओ। हे जेहवे तू राम गुण गाओ, निमख निमख हर हर हर त्याओ। आन न सुनिए कत हूं जाइय, साध संगत वडभागी पाइय। आठ पहर जेहवे आराद, पार ब्रह्मो ठाकर आगाद। इहा उहा सदा सुहेली, हर गुण गावत रसन अमोली। बनस्पत मौली फल फुल पेडे, एह रस राती बहोर ना छोडे। आन ना रस कस लवे ना लाई, कहो नानक गुर पै है सहाई। गौड़ी ग्वारे

संचारे खोजत खोजत नहीं कर पाया, अमोल रतन साच दिखलाया। कर कृपा जा मेले साहे, कहो नान गुर कै वे साहे। गौड़ी महला पंजवा ग्वारेरी, रैन दिनस रह करंगा। प्रभ को जाने सधी संगा, ठाकर नाम कियो उन वर्तन। तृप्ता गावन हर कै दर्शन, हर संग्राते मंतन हरे। गुर पूरे की सरनी परे रहाओ, चरण कमल आत्म आधार। एक निहार आज्ञाकार, एको बनजो एको व्यवहारी। अवर न जाने बिन रंकारी, हरख सोग दहूं ते मुक्ते। सदा अलिपत जोग हर जुगते, दिसे सब मैं सब ते रहते। पार ब्रह्म का होए ध्यान तरते, संतर की महिमा कमन बखानो। आगाध बोध किस्मत नहीं जानो, पार ब्रह्म मोहे कृपा की जय। तूर संतन की नानक दी जय। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत। तू मेरा प्रीतम तुम संगहीत, तू मेरी पात।

आप कमाओ अवरा उपदेशो राम नाम हृदय प्रवेशो जा कै माथा एहो निधान सोई पुरख जपै भगवान आठ पहर हर हर गुण गाओ कहो नानक हौ तिस बल जाओ राग गौड़ी गुआरे री महला पंजवा चौपदे दुपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद जो प्रायो सोई अपना जो ता छोड़न तिस्यो मन रचना कहो गुसाई मिलिया के है जो बिबर्जित तिस्यो ने है रहाओ झूठ बात सा सच कर जाती सत होवन मन लगे ना राती बावे मार्ग टेढ़ा चलना सीधा छोड़ा पूठा बुनना दुहा सरिया का खसम प्रभ सोई जिस मेले नानक सो मुक्ता होई गौड़ी गुआरे री महला पंजवा कल जुग में मिले आए संजोग जिचर आ गया तिचर पोगे भोग जलै ना पाई है राम स्नेही किरत संजोग सती उठ होई रहाओ देखा देखी मन हट जल जाइए प्रे संग ना पावे बहुजोन पवाइए सील संजम प्रयाया गया मन तिस नारी को दुख ना जमाने कहो नानक जिन प्रयो परमेसर कर जाने तन सती दरगह परवाने गौड़ी गुआरे री महला पंजवा हाव तन मन तो पाग सच नाए हर गुण गावे सही सुभाए रहाओ पियु दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरा मन पया निधाना अर्तन लाल जाका कछु ना मोल परे पंडारा खूटा तोल खावे खर्चे रल मिल पाई तोट ना आवे वद दो जाई कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए सो एत खजाने लिया रलाए गौड़ी महला पंजवा डर डर मरते जब जानिए दूर डर चुका देखिया भरपूर सत

पूरा सुख पूरा संतोष पूरा तप पूर्ण राजयोग हर कै मार्ग पतत पुनीत पूरी शोभा पूरा लोकीक करण हारो सदवसै हदूरा कहो नानक मेरा सदगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा संत की तूर मिट अग कोट संत प्रसाद जन मरण ते छोट संत का दर्श पूर्ण स्नान संत कृपा ते जपिए नाम रहाओ संत कै संग मिटिया हंकार दृष्टिया वै सब एक अंकार संत सो प्रसन्न आए वसपंचा अमृत नामृत लै संचा कहो नानक जाका पूरा कर्म तिस भेटे साधु के चरण। गौड़ी महला पंजवा हर गुण जपत कमल प्रगास है हर सिमत त्रा सबनास है सा मत पूरी जित हर गुण गावै वड्डे पाक साधु संग पावै रहाओ साध संग पाई नित नामा सा संग पूर्ण सब कामा हर की भगत।

सहे सुभाए बोले हर बाणी, आठ पहर प्रभ सिमरो प्राणी। दुख दर्द जम निर्णय आवै, कहो नानक जो हर गुण गावै। गौड़ी महला पंजवां, पले दिनस पले संजोग, जित पेटे पार ब्रह्म निरजोग। ओह बेला को हम बल जाओ, जित मेरा मन जपै हर नाओ रहाओ। सफल मूर्त सफल ओह करी, जित रसना उचरै हर हरी। सफल ओह माथा संत नमस्कार, सो चरण पुनीत चले हर मार्ग। कहो नानक भला।

मन माहे नाम सिमर चिंता सब जाहे बिन भगवंत नाही अनकोए मारा राखै एको सोए रहाओ गुर के चरण हृदय उरतार अग्न सागर जप उतरै पार गुर मूर्त स्यों लाए ध्यान इहां उहां पावै मान सगल त्याग गुरसरनी आया मिटया देसे नानक सुख पाया गौड़ी महला पंजवा जिस सिमरत दुख सब जाए नाम रतन वसै मन आए जप मन मेरे गोविंद की बाणी साधु जन राम रसन वखाणी रहाओ इकस बिन नाही दूजा कोए जा की दृष्ट सदा सुख होए साजन मीत सखा कर एक हर हर अखर मन मैं लेख रव रहे आ सरबत स्वामी गुण गावे नानके अंतर जामी

सुख सहज सांत आनंदा, जब जब जीवे परमानंदा। नाम रास साध संखाटी, कहो नानक प्रभ अपदा काटी। गौड़ी महला पंजवा, हर सिमरत संभट कलेस। चरण कमल मन में प्रवेश, उचरो राम नाम लख बारी। अमृत रस पीवो प्रप्यारी, रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा। जब जब जीवे परमानंदा, काम क्रोध लो मद खोए। साध कै संग किलबिक सब धोए, कर कृपा प्रभ दीन दयाला। नानक दी जय सादर वाला। गौड़ी महला पंजवा, जिसका दिया पहने खाए। तिस्यों आलस क्यों बने माए, खसम बिसार आन कम लागे। कौडी बदले रतन त्यागे, रहाओ प्रभु त्याग लागत अनलोभा। दास सलाम करत कत सोभा, अमृत रस खावे खान पान। जिन दिए तसै न जाने सुवान,

प्रभ के चरण मन माहे ध्यान, सगल तीर्थ मजन इशनान, हर दिन हर सिमरन मेरे भाई, कोट जन्म की मन ले जाई रहाओ, हर की कथा रिद माहे बसाई, मन बाहित सगले फल पाई, जीवन मरण जन्म परवान, जा कर दे वसै भगवान, कहो नानक सही जन

आए तिसनो जो है दूत धर्म राय, तिस्यों बेमुख जिन जियो पिंड दीना, कोड़ जन्म पर मैं बोजूना रहाओ। सागत की ऐसी है रीत, जो कुछ करे सगल विपरीत, जियो प्राण जिन मन तन धारिया, सोई ठाकर मनो बिसारिया। बदे बिकार लिखे बहु कागर, नान कुदर कृपा सुख सागर, पार ब्रह्म तेरी सरनाए, बंधन काटत हरनाए। रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा, अपने लोभ को कीनो मीत, सगल मनोरथ मुक्त पादीत, ऐसा मीत करो सबको, ए जाते बिरथा कोई ना होए। रहाओ अपने स्वाय हृदय लै धारिया, दुख दर्द रोग सगल बिदारिया, रसना गिद्धी बोलत राम, पूर्ण होए सगले काम, अनक बार।

कर कृपा भेटे गुर सोई, तित बल रोग ना व्यापै कोई। राम रमण तरन पै सागर, सरन सूर फारे जमकागर रहाओ। सतगुर मंत्र दियो हर नाम, एह असर पूर्ण पै काम। जप तप संजम पूरी वड्याई, गुर कृपाल हर पै सहाई। मान मोह खोए गुर भरम, पेख नानक पसरे पार ब्रह्म। गौड़ी महला पंजवा, बिखै राज ते अंदला भारी। दुख लागै राम नाम चितारी, तेरे दास को तुही वड्याई। माया मगन नरक लै जाई रहाओ। रोग ग्रस्त चितारे नाओ, बिख माते का ठौर ना ठाओ। चरण कमर स्यों लागी प्रीत, आन सुखा नहीं आवै चीत। सदा सदा सिमरो प्रभु स्वामी, मिल नानक हरे अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा, आठ पहर संगी बटवारे। कर कृपा प्रभु ले निवारे, ऐसा हरस रमो सब कोए। सर्व कला पूर्ण प्रभु सोए रहाओ। महातपत सागर संसार, प्रभु खिन मैं पारो तारण हार। अनक बंधन तोरे नहीं जाए, सिमरत नाम मुक्त फल पाए। उगत सियानप इस्ते कछ नाहे, कर कृपा नानक गुण गाहे। गौड़ी महला पंजवा, थाती पाई हर को नाम। बिचर संसार पूर्ण सब काम, वड़ भागी हर कीर्तन गाई है। पार ब्रह्म तू देता पाई है रहाओ। हर के चरण हृदय उतार, पव सागर चढ़ उतरै पार। साधु संग करो सब कोए, सदा कल्याण फिर दुख न होए। प्रेम भगत पज गुणी निधान, नानक दरगह पाई है मान। गौड़ी महला पंजवा, जल थल महियल पूर्ण हरमीत। ब्रह्म बिन से गाए गुणनीत, उठत सोवत हर संग पहरुआ। जाकै सिमरन जमने डरुआ रहाओ। चरण कमल प्रभृदय निवास, सगल दुख का होया नास। आसा मान तान तन एक, साचे साह की मन में टेक। महागरीब जन साध्या नाथ, नानक प्रभ राखे दे हाथ। गौड़ी महला पंजवा, हर हर नाम मजन कर सूचे। कोट ग्रहण पुन फल मुचे रहाओ। हर के चरण हृदय में बसे, जन्म जन्म के किलबख नसे। साध संग कीर्तन फल पाया, जमका मार्ग दृष्ट न आया। मन बच क्रम गोविंद आधार, ताते छुट्यो बिक संसार। कर कृपा प्रभ कीनो अपना, नानक जाप जपे हर जपना। गौड़ी महला पंजवा, पौ शरण आई जिन हर जाते। मन तन शीतल चरण हर राते। पै पंजन प्रभ माना बसाही, डरपत डरपत जन बहुत जाही रहाओ। जा कर दे बस्यो हर नाम, सगम मनोरथ ताके पूर्ण काम। जन्म जरा मृत जसवास, सो समरथ सिमर सास गिरास। मीत साजन सखा प्रभ एक, नाम स्वामी का नानक टेक। गौड़ी महला पंजवा, बाहर राख्यो हृदय समाल। घर आए गोविंद लै नाल, हर हर नाम संतन कै संग। मंत्र राता राम कै रंग रहाओ। गुर प्रसादी सागर तरिया, जन्म जन्म के किलबक सब हिरिया। शोभा सुरत नाम भगवंत, पूरे गुर का निर्मल मंत। चरण कमल हृदय में जाप, नानक पेख जी वै प्रताप। गौड़ी महला पंजवा, तन एहो थान गोविंद गुण गाए।

कुशल खेम प्रभ आप बसाए रहाओ। व्यप्त तहां जहां हर सिमरन नाही, कोट आनंद जय हर गुण गाही। हर बिसरे दुख रोग कलेरे, प्रभ सेवा जम लगे नानेरे। सो वड़पागी निश्चल थान, जह जपिए प्रभ केवल नाम। जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी, नानक कौ मिलया अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा, जो प्राणी गोविंद त्यावै, पढ़िया अनपढ़िया परम गत पावै। साधु संग सिमर गोपाल, बिन नामै झूठा तन माल। रहाओ रूपवंत सो चतर सियाणा, जिन जन मान्या प्रभ का पाणा। जग मैं आया सो प्रवाण, घट घट अपना स्वामी जान। कहो नानक जाके पूर्ण भाग, हर चरणी ता का मन लाग। गौड़ी महला पंजवा, हर के दास स्यों सागत नहीं संग। ओह बिखई ओस राम को रंग, रहाओ मन असवार जैसे तुरी सिंगारी। ज्यों का पुरख पचारे नारी, बैल कौ नेत्रा पाए दुहावै। गऊ चर सिंह पाछे पावै, गाडर ले काम तेन कर पूंजी। सौदे कौ तावै बिन पूंजी, नानक राम नाम जप चीत। सिमर स्वामी हर सामीत, गौड़ी महला पंजवा। सामत निर्मल कहियत धीर, राम रसायन पीवत बीर। हर के चरण हृदय कर ओट, जन्म मरण ते होवत छोट। रहाओ सो तन निर्मल जित उपजै ना पाप। राम रंग निर्मल प्रताप, साध संग मिट जात बेकार। सब ते ऊच एहो उपकार, प्रेम भगत राते गोपाल। नानक जाचै सादरवाल, गौड़ी महला पंजवा। ऐसी प्रीत गोविंद स्यों लागी, मेल लए पूर।

कवन गुण प्राण पात मिलो मेरी माई। रहाओ रूपहीन बुद्ध बलहीनी मोहे परदेसन दूर ते आई। नाहन दर्ब ना जोबन माती मोहे अनाथ की करो समाई। खोजत खोजत पई बैरागन प्रभ दर्शन कहो फिरत तसाई। दीन दयाल किरपाल प्रभ नानक साह संग मेरी जलन बुझाई। गौड़ी महला पंजवा प्रभ मिलबे कौ प्रीत मन लागी। पाए लगो मोहे करो बेनती कौ संत मिलै वड़ भागी। रहाओ मन अर्पो तन राखो आगै मन की मत मोहे सगल ते आगी। जो प्रभ की हर कथा सुनावै आन दिन फिराओ तिस पिछै वैरागी। पूर्व कर्म अंकर जब प्रगटे भेट्यो पुरख रसक बैरागी। मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी। गौड़ी महला पंजवा निकसरे पंखी सिमर हर पांख मिल साधु सरन गहो पूर्ण। राम रतन ही अरे संग्राख। रहाओ भ्रम की कुई तृष्णा रस पंकज आतीखण मोकी फास। काटन हार जगत गुरु गोविंद चरण कमल ताके करो निवास। कर कृपा गोविंद प्रप्रीतम दीना ना सुनो अरदास। कर गै लेहो नानके स्वामी जियो पिंड सब तुमरी रास। गौड़ी महला पंजवा हर पेखन कौ सिमरत मन मेरा। आस प्यासी चितवो दिन रहनी है कोई संत मिलावे नेरा। रहाओ सेवा करो दास दासन की अनक पांतिस करो निहोरा। तुला तार तोले सुख सगले बिन हर दर्श सबो ही थोरा। संत प्रसाद गाय गुण सागर जन्म जन्म को जात बहोरा। आनंद सुख पेट तहर नानक जन्म कृतार्थ सबल सवेरा। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किन विद मिलै गुसाई मेरे राम राय। कोई ऐसा संत सह सुखदाता मोहे मार्ग दे बताई। रहाओ अंतर अलख न जाई लखिया विच पड़दा हूं मैं पाई। माया मोहे सबो जग सोया एहो परम कहो क्यों जाई। एका संगत एकत ग्रह बसते मिल बात ना करते भाई। एक बस बिन पंच दुहेले ओ बसदा गोचर ठाई। जिसका गृह तिन दिया ताला कुंजी गुर सौ पाई। अन क्यो पाव करे नहीं पावै बिन सतगुर सरनाई। जिनके बंधन काटे सतगुर तिन साध संगत लिव लाई। पंच जना मिल मंगल गाया हर नानक भेद ना पाई। मेरे राम राय इन विद मिलै गुसाई सहज पया प्रभ खिन मैं नाठा। मिल ज्योति जो समाई। रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा ऐसो परचो पायो करी कृपा दयाल बीठ लै सतगुर मजै बतायो। रहाओ जात का देखो ताता तुम ही मोहे एहो विश्वास होए आयो। कै पै करो अरदास बेनती जो सुनतो है रगरायो। लयो सहसा बंधन गुर तोरे ता सदा सह सुख पायो। होना सा सोई फुन होसी सुख दुख कहां दिखायो। खंड ब्रह्मांड का एक ठाणा गुर पर्दा खोल दिखायो। नाव निध नाम निधान इकठाई तो बाहर कैठ जायो। एक कनक अनक भांत साजी बहु प्रकार रचायो। कहो नानक परम गुर खोई है इव तत्तै तत् मिलायो। गौड़ी महला पंजवा औध कटै दिन सुरै नारे मन गुरमिल का सवारे। रहाओ करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की वेला। इहां खाड़ चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला।
ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸਹਿਸੇ ਮੈਂ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸੈ ਜਗਾਏ ਪੀਆਏ ਹਰ ਰਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਵਿਆਹ ਜਾਓ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੈ ਬਸੇਰਾ ਨਿਜ ਕਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹੀ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਮੋਹ ਨਿਰ

खेद करे यार बहुत संताव आयो शरण तुहारे कर कर हारे अनक बहु पांति छोड़े कथु नाही एक बात सुनता की ओटा साध संग मिट जाही कर कृपा संत मिले मोहे तिनते तीरज पाया संती मंत दियो मोहे निरपो गुर का शब्द कमाया जीत लै ओए महा बेखादी सहज सुहेली बाणी कहो नानक मन पया परगासा पाया पद निर्वाणी गौड़ी महला पंजवा ओ अवनासी राया निरपो संग तुम्हारे बसते एहो डरन कहां ते आया रहाओ एक महल तू हुए अफारो एक महल निमानो एक महल तू आपे आपे एक महल गरीबानो एक महल तू पंडित भगता एक महल खल होता एक महल तू सब किश ग्राहज एक महल कशु ना लेता काठ की पुत्री कहां करे बपरी खिलावन हारो जाने जैसा पिख करावे बाजीगर ओ तैसो ही साजियाने अनक कोठरी बहुत पात करिया आप हुआ रखवारा जैसे महल राखे तैसे रहना क्या हो करे विचारा जिन किश किया सोई जाने जिन ए सब बिसाजी कहो नानक परंपर स्वामी कीमत अपने काजी गौड़ी महला पंजवा छोड़ छोड़ रे बिख्या के रसुआ उर्ज रहे ओरे बावर गावर जो किरखे हरे आयो पसुआ रहाओ जो जाने तू अपने का जय सो संगना चाले तेरे तसुआ नांगो आयो नांग सिदासी फेर फिर वार काल ग्रसुआ पेख पेख रे कसुंब की लीला राच माच तिनहू लव हसुआ शीजित डोर दिन सर रैनी जी को काज न कीनो कछुआ करत करत इवि बिरधानो हार्यो उगते तनखी नसुआ ज्यो मोयो उन मोनी बाला उसते कटे नाही रुचसुआ जग ऐसा मोय गुरै दिखायो तो शरण पर्यो तज गर्भसुआ मार्ग प्रभु को संत बतायो दृढ़ी नानक दास भगत हर जसुआ गौड़ी महला पंजवा तुझ

बोले वर्ण ना साकाओ तुमरे रंगा गुण निदान सुख दाते अगमै गोचर प्रभ अविनाशी पूरे गुरते जाते प्रम पौ काट किए नह केवल जब ते हमें मारी जन्म मरण कहो चूको सहसा साध संगत दरसारी चरण पखार करो गुर सेवा बार जाओ लख बरिया जे प्रसादे पौ जल तरिया जन नानक प्रिय संग मिरिया गौड़ी महला पंजवा तुझ बिन कमनरी जावे तो ही तेरो रूप सगल देख मोही रहाओ सुर्ग पयाल मृत पू मंडल सर्व समानो एक ओही शिव शिव कर तो सगल कर जोरै सर्व माया ठाकर तेरी दोही पतत पावन ठाकर नाम तुमरा सुखदाई निर्मल

ओही पाठी ओही पोचा ओही प्यारो ओही रुचा मन ओहो सुख जातो सहज केल अनद खेल रहे फेर पय मेल नानक गुरशब्द परातो राग गौड़ी मालवा महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर नाम ले हो मीता ले हो आगे बिखम पंथ पयान रहाओ सेवत सेवत सदा सेव।

क्या किश करै के करण हारा क्या इस हाथ बिचारे जित तुम लावो तित ही लागा पूरन खसम हमारे करो कृपा सर्ब के दाते एक रूप लिव लावो नानक की बेनंती हर पह अपना नाम जपावो राग गौड़ी माज महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दीन दयाल द मुद्र राया जियो कोट जना कर सेव लगाया जियो भगत वछल।

जिन नाव पाया सो तनवंता जियो, जिन प्रभ त्याया सो सोभावंता जियो, जिस साधु संगत ते सब सुकरणी जियो, जन नानक सहि सुमाई जियो। गौड़ी महला पंजवा माज, आओ हमारे राम प्यारे जियो, रहन दिन सो साथ साथ चितारे जियो। संत देव संदेसा पै चरणारे जियो, तुद बिन कित बिन तरिए जियो, संग तुम्हारे मैं करे आनंदा जियो, वन त्रिण त्रिभवन सुख परमानंदा जियो, से सुहावी ओ मन बिकसंदा जियो, पेख दर्शन ओ सुख लइए जियो, चरण पखार करी ने सेवा जियो, पूजा अर्चा बंदन देवा जियो, दासन दास नाम जप लेवा जियो, बिनो ठाकर पै कहिए जियो, इच्छ पुन्नी मेरी मंतन हरिया जियो, दर्शन पेख तो सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप तरिया जियो, एहो अजर नानक सुख सही है जियो। गौड़ी माज महला पंजवा, सुन सुन साजन मन।

जन नानक तिन बल जात, गौड़ी महला पंजवा मांझ। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, आठ पहरे आराधी है पूर्ण सतगुर ज्ञान। रहाओ जित कट वसै पार ब्रह्म, सोई सुहावा थाओ, जम कंकर नेड़ ना आवई, रसना हर गुण गाओ। सेवा सुरत ना जानिया, ना जापै आराद, ओट तेरी जग जीवना, मेरे ठाकर अगम आगाद। पय कृपाल गुसाइयां।

जीवन रूप गोपाल जासो संत जना की रास नानक उबरे नाम जापो दर सच्चे साबास गौड़ी माज महला पंजवा मीठे हर गुण गाओ जिंदू तू मीठे हर गुण गाओ सच्चे से तीरत्या मिलिया निथावें थाओ रहाओ होर साध सब फिकया तन मन फिका होए विण परमेसर जो करे फिट सो जीवन सोए अंचल गह कै साधका तरना एहो संसार पार ब्रह्म आराधी है उदरै सब परवार साजन बंद सुमित्र सो हर नाम हृदय दे अवगुण सब मिटाए कै पर उपकार करे माल खजाना थे हो कर हर के चरण निदान नानक जाचक दर

साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते अनस भागो रहाओ। सुख दुख दोनों सम कर जान, और मान अपमाना, हर सोग ते रह अतीता, तिन जग तत् पछाना। उस्त निंदा दो त्यागे, खोजे पद

एक बिन सै एक अस्थिर मन अचरज लख्यो न जाई रहाओ। काम क्रोध मोह बस प्राणी हर मूर्त बिसराई। झूठा तन साचा कर मान्यो ज्यो सुपना रहनाई। जो दिसै सो सगल बिनासै ज्यो बादर की शाई। जन नानक जग जान्यो मिथ्या रहयो राम सरनाई। गौड़ी महला नावा प्राणी को हर जस मन नहीं आवे। अहने समग्न रह माया मैं कहो कैसे गुण गावे। रहाओ पूत मीत माया ममता स्यों एह विद्या बंधावे। मृग तृष्णा ज्यो झूठो एहो जग देखता से उठतावे। भुगत मुक्त का कारण स्वामी मूड ताहे बिसरावे। जन नानक कोटन में को भजन राम को पावे। गौड़ी महला नावा साधो एहो मन गहयो ना जाई। चंचल तृष्णा संग बस्त है या ते थिर ना रहाई। रहाओ कठन क्रोध कठी के पीतर जेह सुध सब बिसराई। रतन ज्ञान सब को हिरलीना तासों कछना बसाई। जोगी जतन करत सब हारे गुनी रहे गुन गाई। जन नानक हर पय दयाला तो सब बिद बने।

पतत पुनीत दीन बंद हर शरण ताहे तुम आवो। गज को त्रास मिट्यो जे सिमरत तुम काहे बिसरावो। ताज अब महान मोह माया फोन भजन राम चित लावो। नानक कहत मुक्त।

वेद पुराण साध मग सुन करो, निमख ना हर गुण गावे रहाओ। दुर्लभ देह पाए मानस की, वृथा जन्म सिरावे, माया मोह महासंकट बानो, ता सो रुच उपजावे। अंतर बाहर सदा संग प्रभु, ता सो नेहु ना लावे, नानक मुक्ता है तुम मानो, जेकट राम समावे। गौड़ी महला नावा, साधो राम शरण बिश्रामा, वेद पुराण पढ़े को एह गुण, सिमरे हर को नामा। रहाओ लोभ मोह माया ममता फोन, औ बिखियन की सेवा, हरख सोग परसै जेह नहन, सो मूर्त है देवा। स्वर्ग नरक अमृत बिख ए सब, त्यों कंचन अर पैसा, उस्तत निंदा ए समझा कै, लोभ मोह फुन तैसा। दुख सुख ए जे नहन, तेह तुम जानो ज्ञानी, नानक मुगता है तुम मानो, ए बिद को जो प्राणी। गौड़ी महला नावा, मन रे कहां पयो तै बौरा, अहन से औद कट नहीं जाने, पयो लोभ संग हौरा। रहाओ जो तन तै अपनो कर मान्यो, अर सुंदर गृह नारी, इन मैं कछ तेरो रे नाहन, देखो सोच बिचारी। रतन जन्म अपनो तै हारियो, गोविंद गत नहीं जानी, निमख ना लीन पयो चरणन स्यो, बिरथा औद सिरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया, राम नाम गुण गावे, और सगल जग माया मोहया, निरपै पद नहीं पावे। गौड़ी महला नावा, नर अचेत पाप ते डर रे, दीन दयाल सगल पै भंजन, शरण ताहे तुम पर रे। रहाओ वेद पुराण जास गुण गावत, ताको नाम ही है मो धर रे, पावन नाम जगत में हर को, सिमर सिमर कसमल सब हर रे। मानस देह बहुर नह पावे, कशु उपाओ मुक्त का कर रे। नानक कहत गाए करना मैं, पव सागर कै पार उतर रे। राग गौड़ी अष्टपदिया महला पहला, गौड़ी गुआरेरी, एक ओवंकार सतनाम, करता पुरख गुर प्रसाद, निद सद निर्मल नाम विचार, पूर्ण पूर रहा बिखमार, त्रिकुटी छूटी बिमल बजार, गुर की मत जी आई कार। इन बेद राम रमत मन मानिया, ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया। रहाओ एक सुख मानिया, सहज मिलाया, निर्मल बाणी परम चुकाया, लाल पय सूहा रंग माया, नदर पई बिगठाक रहाया, उल्ट पई जीवत मर जा गया, शब्द रवै मन हास्यों ला गया, रस संग्रह बिख पर हर त्या गया, पाए बसे जमका पौ भाग्या, साध रहे बादम अहंकारा, चित हर स्यो राता हुक्म अपारा, जात रहे पत के आचारा, दृष्ट पई सुख आत्म धारा, तुझ बिन कोय न देखो मीत, किस सेवो किस देवो चीत, किस पूछो किस लागो पाए, किस उपदेश रहा लिवलाए। गुर सेवी गुर लागो पाए, भगत करी रचो हरनाए, सिख्या दीख्या भोजन पाओ, हुक्म संजोगी निज कर जाओ। गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना, जोत पई ज्योति महे समाना, लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना, करता करना करता जाना। नह पंडित नह चतर सियाना, नह पूलो नह परम पुलाना, कथो न कथनी हुक्म पिछाना, नानक गुरमत सहि समाना। गौड़ी ग्वारेरी महला पहला, मन कुंचर काया उद्यान, गुर अंकस सच शब्द निशान, राज द्वारे शोभ सो मान, चतराई नह

नील अनिल अग्नि इकठाई, जल निवरी गुर बुझ बुझाई, मन दे लिया रहस गुण गाई। जैसा घर बाहर सो तैसा, बैस गुफा मैं आखो कैसा, सागर डूगर निरपो वैसा। मुवे कहो कहो मारे कौन, निडरे कहो कैसा डर कवन। शब्द पछाने तिन्ने पौन, जिन कहया तिन कहन वखानिया, जिन बुझिया तिन सहज पछानिया। देख विचार मेरा मन मानिया, कीर्त सूरत मुक्त एक नाई, तही निरंजन रया समाई, निज कर व्याप रया निठाई। औसत कर है केते मुन प्रीत, तन मन सूचे साच सोचीत, नानक हर पज नीता नीत। गौड़ी गुआरे री महला पहला, ना मन मरे ना कार्ज होए, मन वस दूता दुरमत दोए, मन माने गुर ते एक होए। निर्गुण राम गुणे वस होए, आप निवार बिचारे सोए। रहाओ मन भूलो बोचते विकार, मन भूलो सिर आवे भार, मन माने हर एक अंकार। मन भूलो माया कर जाए, काम बिरुदो रह ना ठाए, हर पज प्राणी रसन रसाए। गैवर हैवर कंचन सुतनारी, बहु चिंता पड़ चल हारी, जुए खेलन काची सारी, संपो संची पए विकार। हर सोक उबे दरबार, सुख सहजे जपरदे मुरार, नदर करे ता मेल मिलाए, गुण संग्रह अवगुण शब्द जलाए, गुरमुख नाम पदार्थ पाए। बिन नाम सब दुख निवास, मनमुख मूड माया चितवास, गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लिखियास। मन चंचल तावत फुन तावे, साचे सूचे मैल न पावे, नानक हर गुण गावे। गौड़ी गुआरे री महला पहला, हौं मैं करत्यां ने सुख होए, मन मत झूठी सच्चा सोए, सगल बिगूते पावे दोए, सो कमावे तुर लिखिया होए। ऐसा जग देखिया जुआरी, सब सुख मांगे नाम बिसारी। रहाओ अदिष्ट दिसै ता कहया जाए, बिन देखे कहने बिरथा जाए, गुरमुख दिसै सह सुभाए, सेवा सुरत एक लिवलाए। सुख मांगत

हरनाक्षले नखो विदासा दैत संघारे बिन भगत अभ्यासा जरा संद काल जमन संघारे रक्त बीज काल नेम बिदारे दैत संघार संत निस्तारे आपे सतगुर शब्द विचारे दूजे पाए दै संघारे गुरमुख साच भगत निस्तारे बूढ़ा दुर्योधन पत खोई राम ना जान्या करता सोई जन को दुख पचै दुख होई जन मेजै गुर शब्द ना जानिया क्यों सुख पावै परम भुलानिया एक तिल भूले बहुर पछतानिया कंस केस चांडूर ना कोई राम ना चीनिया अपनी पत खोई बिन जगदीश ना राखै कोई बिन गुर गर्भ ना मेटिया जाए गुरमुख गुरमत धर्म तीर जहर नाए नानक नाम मिले गुण गाए गौड़ी महला पहला चोवा चंदन अंक चढ़ावो पाठ पटंबर पहर हंडावो बिन हर नाम कहां सुख पावो क्या पहरा

लाल निहाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहां सुख पाला, नैन सलोनी सुंदर नारी, खोड़ सिंगार करै अत प्यारी, बिन जगदीश भजे नित खुआरी, दर कर मैला से सुखाली, अहनस फूल बिछावै माली, बिन हर नाम सो देह दुखाली, हैवर गैवर नेजे वाजे, लश्कर नेव खवासी पाजे, बिन जगदीश झूठे दे वाजे, सिद्ध कहावाओ रिद्ध सिद्ध बुलावाओ, ताज कुलै सिर छतर बनावाओ, बिन जगदीश कहां सच पावाओ, खान मलूक कहावाओ राजा, अबे तबे कूड़े है पाजा, बिन गुर शब्द ना सबर सकाजा, हों मैं ममता गुर शब्द विसारी, गुरमत जान्या हृदय मुरारी, प्रणवत नानक शरण तुम्हारी, गौड़ी महला पहला, सेवा एक ना जान सियावरे, परपंच ब्याह त्याग कवरे, भाई मिलै सच सच ऐ सच रे, ऐसा राम पग जन होई, हर गुण गाय मिलै मल धोई रहाओ, ऊंदो कवल सगल संसार है, दुर्मत यगन जगत पर जार है, सो उबरै गुर शब्द विचार है, प्रेंग पतंग कुंचर्यार मीना, मिर्ग मरै सह अपना कीना, तृष्णा राच तत नहीं बीना, काम चितै कामण हितकारी, क्रोध विनाशै सगल विकारी, पत मत खोवै नाम विसारी, पर कर चीत मन मुख डोलाए, गल जेवरी तंदै लपटाए, गुरमुख छूट सहर गुण गाए, ज्यों तन विधवा पर कौ देई, काम दाम चित पर वसेई, बिन पिर तृप्त ना कबहू होई, पढ़ पढ़ पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा, वेद पुराण पढ़ै सुन थाटा, बिन रस राते मन बहु नाटा, ज्यों चात्रक जल प्रेम प्यासा, ज्यों मीना जल माहे उलासा, नानक हर रस पी तृप्तासा, गौड़ी महला पहला, हठ कर मरे ना लेखे पावे, वेश करे बहु पसम लगावे, नाम बिसार बहुर पछतावे, तू मन हर जियो तू मन सुख, नाम बिसार सह जम दुख रहाओ, चोवा चंदन।

वाद अहंकार नाहीं प्रमेला, मंदे पावे नाम सोहेला, दूजे पाए अज्ञान दुहेला। बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोए थो सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे काटे काट। तिसको वाहो वाहो जे वाट दिखावे, तिसको वाहो वाहो जे शब्द सुनावे, तिसको वाहो वाहो जे मेल मिलावे। वाहो वाहो तिसको जिसका एहो जियो, गुर शब्दी मथे अमृत पियो, नाम वडाई तुद पाणे दियो। नाम बिना क्यों जीवा माए, आन दिन जपत रहो तेरी सरनाए। नानक नाम रते पत पाए, दौड़ी महला पहला। हाँ मैं करत पेखी नहीं जानिया, गुरमुख भगत विरले मन मानिया। हाँ हाँ करत नहीं सच पाई है, हाँ मैं जाए पर

अंतर साच सहज घर आवै, राजन जान परम गत पावै, सच करनी गुर परम चुकावै, निरपो कै कर ताड़ी लावै। हां हों कर मरना क्या पावै, पूरा गुर भेटे सो चगर चुकावै, जेती है तेती क्यों नाही, गुरमुख ज्ञान भेट गुण गाही। हौं मैं बंधन

प्रथमे ब्रह्मा काल कर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया, आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया, जो उपजय सो काल संघारिया, हम हर राखे।

आए गुरमुख नाम वसै मन आए, गुरमुख कर्म धर्म सच सोई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुख होई। अपना मन पर बोधो बूझो सोई, लोग समझावो सुने ना कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई। मनमुख डंफ बहुत चतराई, जो किश कमावै सो थाए ना पाई, आवै जावै ठौर ना काई। मनमुख कर्म करे बहुत अभमाना, बग ज्यो लाए बह नित्याना, जम पकड़िया तब ही पछताना, बिन सतगुरु सेवे मुक्त ना होई। गुर प्रसादी मिले हर सोई, गुरदाता जुग चारे होई। गुरमुख जात पात नामे वड़ियाई, सायर की पुत्री बिदार गवाई, नानक बिन नामे झूठी चतराई, गौड़ी महला तीजा। इस जोका धर्म पढ़ो तुम पाई, पूरे गुर सब सो जी पाई, एथे अगे हर नाम सखाई। राम पढ़ो मन करो बिचार, गुर प्रसादी मैं लियो तार, रहाओ वाद विरोध ना पाया जाए, मन तन फीका दूजे पाए, गुर कै शब्द सच लिवलाए। हौ मैं मैला एहो संसारा, नित तीर्थ नावै ना जाए हंकारा, बिन गुर भेटे जम करे खुवारा, सोजन साचा जे हौ मैं मारै, गुर कै शब्द पंच संघारै, आप तरै सगले कुल तारै। माया मोहे नट बाजी पाई, मनमुख अंध रहे लपटाई, गुरमुख लिबत रहे लिवलाई, बहुते पेख करे पेख तारी, अंतर तिसना फिरे हंकारी। आप ना चीने बाजी हारी, कापड़ पहर करे चतराई, माया मोहे अत परम पुलाई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई। नाम रते सदा बैरागी, गृही अंतर साच लिवलागी, नानक सतगुर सेवै सेवड़ भागी, गौड़ी महला तीजा। ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा, तिस्ते उपजे देव मो प्यासा, त्रैगुण भर में नाही निज कर वासा, हम हर राखे सतगुरु मिलाया, आंदन भगत हर नाम दृढ़ाया। रहाओ त्रैगुण बाणी ब्रह्म जंजाला, पड़वाद वखाणे सिर मारे जमकाला, तत ना चीने बन्ने पंड पराला, मनमुख अज्ञान को मार्ग पाए, हर नाम बिसारे।

आवै सदहि निर्मल सही सुमावै हर कथा सुनै से तनवंत दिसै जुग माही तिनको सब निवै अंदर पूज कराही सहजे गुण रवै साचे मन माही पूरे सतगुर शब्द सुनाया त्रै गुण मेटे चौथे चित लाया नानक हमें मार ब्रह्म मिलाया गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा वेद पढ़े वाद बखाण अंतर तामस आप ना पछाण ता प्रभ पाए गुर शब्द बखाण गुर सेवा करो फिर काल ना खाए मन मुख खादे दूजे पाए रहाओ गुरमुख प्राणी अपराधी सीधे गुर कै शब्द अंतर सहजरी दे मेरा प्रपाया गुर कै शब्द सीधे सतगुर मेले प्रभ आप मिलाए मेरे प्रभ साचे कै मन पाए हर गुण गावे सह सुभाए बिन गुर साचे परम पलाए मन मुख अंधे सदा बिख खाए जम डंड सह सदा दुख पाए जमुआ ना जो है हर की सरनाई हमें मार सच लिवलाई सदा रह हर नाम लिवलाई सतगुर सेवै से जन निर्मल पविता मन स्यो मन मिलाए सब जग जीता इन विद कुशल तेरा मेरे मीता सतगुरु सेवे सो फल पाए हृदय नाम विचों आप गवाए अनहद बाणी शब्द बजाए सतगुर ते कवन कवन ना सीधो मेरे भाई भगती सीधे दर शोभा पाई नानक राम नाम वड्याई गौड़ी महला तीजा त्रै गुण

सहित उपजय हर लिव लाए रहाओ। त्रै गुण कालै की सिरकारा, नाम नाचे तय उपावन हारा। मर जमै फिर वारो वारा, अंधे गुरु ते भरम ना जाई। मूल छोड़ लागे दूजै भाई, बिखका माता बिख महे समाई। माया कर मूल जंतर परमाए, हर जियो विसरिया दूजै पाए। जिस नदर करे सो परम गत पाए, अंतर साच बाहर साच वरताए। साच ना छपै जे को रखै छपाए, ज्ञानी बूजै सह सुभाए। गुरमुख सांत रहया लिव लाए, हमै माया शब्द जलाए। मेरा प्रभ साचा मेल मिलाए, सतगुर दाता शब्द सुनाए। तावत राखै ठाक रहाए, पूरे गुर ते सोझी पाए। आपे करता सिरहट सिर जिन गोई, तिसबिन दूजा अवर ना कोई। नानक गुरमुख बूजै कोई, गौड़ी महला तीजा। नाम अमोलक गुरमुख पावै, नामो सेवे नाम सही सुमावै। अमृत नाम रसना नित गावै, जिसनो कृपा करे सो हर रस पावै। आनदन हृदय जपो जगदीसा, गुरमुख पावो परम पद सुखा रहाओ। हृदय सुख भया प्रगास, गुरमुख गावै सच गुण तास। दासन दास नित होवै दास, गृह कुटुंबै सदा उदास। जीवन मुक्त गुरमुख को होई, परम पदार्थ पावै सोई। त्रै गुण मेटे निर्मल होई, सहजे साच मिलै प्रभ सोई। मोह कुटुंब स्यों प्रीत ना होए, जां हृदय वसिया सच सोए। गुरमुख मन बेदया स्थिर होए, हुक्म पछाणै बूझै सच सोए।

आए मन करहला तू मीत मेरा पाखंड लोभ तजाए पाखंड लोभी मारी है जम डंड दे सजाए मन करहला मेरे प्राण तू मैल पाखंड परम गवाए हर अमृत सर गुरपूरिया मिल संगति मल लै जाए मन करहला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए एहो मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए मन करहला मेरे सजना हर खर्च लिया पत पाए हर दरगह पहनाया हर आब लया गल

के बनवासिया फिर गुरमत हृदय निहाल मन करहला गुरु गोविंद समाल रहाओ मन करहला विचारिया मनुख पाथिया महाजाल गुरमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम समाल मन करहला मेरे प्यारिया सत्संग सतगुर पाल सत्संगत लग हर त्याई है हर हर चले तेरे नाल मन करहला वडभागिया हर एक नजर निहाल आप छडाए छुट्टिया सतगुर चरण समाल मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत समाल गुरनाउन नाम विखालिया हरदात करी दयाल मन करहला तू चंचला चतराई छड विकराल हर हर नाम समाल तू हर मुक्त करे अंतकाल मन करहला वडभागिया तू ज्ञान रतन समाल गुर ज्ञान खड़ग हथ धारिया जम मारियाड़ा जमकाल अंतर निदान मन करहले ब्रह्म पवै बाहर पाल गुरपुरख पूरा भेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल रंग रतड़े मन करहले हर रंग सदा समाल हर रंग कदे न उतरै गुर सेवा शब्द समाल हम पंखी मन करहले हर तरवर पुरखिया काल वडभागी गुरमुख पाया जन नानक नाम समाल राग गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा अष्टपदियां एको अंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद जब एहो मन मैं करत गुमाना तब यो बावर फिरत बेगाना जब एहो हुआ सगल कीरीना ता तेर मैया कटकट जीना सहज सोहेला फल मस्कीनी सतगुर अपने मोहे दान दीनी रहाओ जब किस को एहो जान समंदा तब सगले इस मेले फंदा मेर तेर जब इन चुकाई ताते इस संग नहीं बैराई जब इन अपनी अपनी तारी तब इस को है मुश्किल भारी जब इन करने हर पिछाता तब इसनो नाही किस्ताता जब इन अपनो बांध्यो मोहा आवे जाए सदा जमजोहा जब इसते सब बिन से परमा पेद नाही है पार ब्रह्मा जब इन किश कर्मा ने पेदा तब ते दुख डंड अरखेदा जब इन एको एकी बुझिया तब ते इसनो सब के सूझिया जब एहो तावे माया अर्थी न तृप्तावे न तसलाथी जब इसते एहो यो जौला पीछे लाग चली उठ कौला कर कृपा जो सतगुर मिलियो मन मंदिर में दीपक जलियो जीत हार की सोजी करी तो इस कर की कीमत परी करन करावन सब किसे कै आपे बुद्ध विचार बबे कै दूर ना नेर सब कै संगा सालाहनो नानक हर रंगा गौड़ी महला पंजवा गुरसेवा ते नामे लागा तिसको मिलिया जिस मस्तक पागा तिसके हृदय रविया सोए मन तन सीतन निचल होए ऐसा कीर्तन कर मन मेरे इहां उहां जो काम तेरे रहाओ जास जपत पौ अपदा जाए तावत मनुआ आवे ठाए जास जपत फिर दुख ना लागे जा जपत हम मैं पागे जास जपत वसिया वै पंचा जास जपत हृदय अमृत संचा जास जपत एह तृष्णा बुझै जास जपत हर दरगह सजै जास जपत कोट मिटै अपराध जा जपत हर होवै साध जास जपत मन शीतल होवै जास जपत मल सगली खोवै जास जपत रतन हर मिलै बहुर न छोड़ै हर संग हिलै जास जपत कई बैकुंठ वास जा जब सो सहज निवास जास जपते अग्न पोहत जास जपते काल ना जोहत जास जपत तेरा निर्मल माथा जास जब सगला धुलाता जास जपत मुश्किल कछु ना बने जास जब सुन अनहत न जास जपते निर्मल सोए जास जपत कमल सीधा होए गुर सुख दृष्ट सब ऊपर करी जिसके हृदय मंत्र दे हरी अखंड कीर्तन तन पूजन चूरा कहो नानक जे सतगुर पूरा गौड़ी महला पंजवा।
गुर का शब्द हृदय अंतर धारै, पंच जना स्यो संग निवारै, दस इंद्री कर रखै वास, ताकै आत्मै होय परगास। ऐसी दृढ़ता ताकै होए, जा को दया मया प्रभ सोए रहाओ। साजन दुष्ट जाकै एक समान, जेता बोलन तेता ज्ञान है,

ही जपना। सहजे भोजन सहजे भाओ, सहजे मिट्यो सगल दुराओ। सहजे होवा साधु संग, सहज मिलियो पार ब्रह्म निसंग। सहजे गृह मैं सहजो दासी, सहजे दुबदा तन की नासी। जा कै सहज मन भया आनंद, तां को भेटिया परमानंद। सहजे अमृत पियो नाम, सहजे कीनो जी को दान। सहज कथा मैं आत्म रसिया, तां कै संग अबनासी बसिया। सहजे आसन आसर पाया, सहजे अनहत शब्द बजाया। सहजे रोण चुनकार सुहाया, तां कै कार पार ब्रह्म समाया। सहजे जाको परयो कर्मा, सहजे गुर पेट्यो सही धर्मा। जा कै सहज भया सो जाने, नानक दास तां कै कुर्बान। गौड़ी महला पंजवा, प्रथमे गर्भ वास्ते टरिया। पुत्र कलात्र कुटुंब संग जुरिया। भोजन अनक प्रकार बहु कपरे, सर पर गमन करेंगे बपरे। कवन स्थान जो कबो न टरे, कवन शब्द जे दुर्मत हरे रहाओ। इंद्रपुरी में सर पर मरना, ब्रह्मपुरी नीचल नहीं रहना। शिवपुरी गा होएगा काला, त्रै गुण माया बिरस बिता।

गुर कै बचन मोहे परम गत पाई, गुरमू गुर पूरै मेरी पैज रखाई। गुर कै बचन त्यायो मोहे नाओ, गुर प्रसाद मोहे मिलिया थाओ रहाओ। गुर कै बचन सुन रसन मखाणी, गुर कृपा ते अमृत मेरी बाणी। गुर कै बचन मिटिया मेरा आप, गुर की दया ते मेरा वड प्रताप। गुर कै बचन मिटिया मेरा भरम, गुर कै बचन पेख्यो सब ब्रह्म। गुर कै बचन कीनो राज जोग, गुर कै संग तरिया सब लोग। गुर कै बचन मेरे कार्य सिद्ध, गुर कै बचन पाया नाउ निद। जिन जिन कीनी मेरे गुर की आसा, तिसकी कटिया जम की फासा। गुर कै बचन जागया मेरा कर्म, नानक गुर भेटिया पार ब्रह्म। गौड़ी महला पंजवां, तिस गुर कौ सिमराओ सास सास। गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी रास रहाओ। गुर का दर्शन देख देख जीवा, गुर के चरण तोय तोय पीवा। गुर की रेण नित मज्जन करो, जन्म जन्म की हम मैं मलहराओ। तिस गुर कौ चूला वो पाखा, महायगन ते हाथ दे रखा। तिस गुर कै गृह ढोवो पानी, जिस गुर ते अकल गत जानी। तिस गुर कै गृह

आपे लायो अपना प्यार, सदा सदा तिस गुर का करी नमस्कार। कल कलेश पै भ्रम दुख लाथा, कहो नानक मेरा गुर समराथा।

नाम बिना जो पहरै खाए, जो कुकर जूठन मैं पाए। नाम बिना जेता व्यवहार, जो मृतक मिथ्या सिंगार। नाम विसार करे रस भोग, सुख सुपने नहीं तन मैं रोग। नाम त्याग करे अनकाज, बिरस जाए झूठे सब पाज। नाम संग

सिमर सिमर काटे सब रोग, चरण ध्यान सर्व सुख भोग। पूर्ण पुरख नव तन नित बाला, हर अंतर बाहर संग रखवाला। कहो नानक हर हर पद चीन, सर्वस नाम भगत कौ दीन। राग गौड़ी माज महला पंजवा, एको अंकार सतगुर प्रसाद। खोजत फिरे असंख अंत ना पारिया, सेई होए भगत जिन्ना किरपारिया। हों वारिया हर वारिया रहाओ, सुन सुन पंथ डराओ बहुत पैहारिया। मैं तकी ओढ़ संताहा लिहो उबारिया। मोहन लाल अनूप सर्व साधारिया, गुर निम्न लागौ पाए देहो दिखारिया। मैं किए मित्र अनेक इकस बलिहारिया, सब गुण किसी ही ना है हर पूर भंडारिया। चाहो दिस जपिए नाओ सुख सवारिया। मैं आही ओढ़ तुहार नानक बलिहारिया, गुर काढ़ियो पुजा पसार मोह कु पारिया। मैं जीत्यो जन्म अपार बहुर ना हारिया, मैं पायो सर्व निदान अकथ कथारिया। हर दरगह सोभावंत बहा लुडारिया, जन नानक लद्दा रतन अमोल्या पारिया। गुर सेवा पौजल तरिय कहो पुकारिया।

एकलड़ी बनमा है, क्यों तिरेगी ना बिना प्रवे प्रवाहे, तन ना बाजो रह ना सके बिखम रहन कनेरिया। नह नींद आवे प्रेम भावे सुन बेनती मेरिया, बाजो प्यारे कोई ना सारे एकलड़ी कुर लाए, नानक सातन मिले मिलाई बिन प्रीतम दुख पाए। पिर छोड़ी आड़ी जियो कमन मिलावे, रस प्रेम मिली जियो शब्द सुहावे, शब्दे सुहावे ता पत पावे दीपक देह उजारे। सुन सखी सहेली सा सुहेली साचे के गुण सार, सतगुर मेली ता प्रावी बिकसी अमृत बाणी, नानक सातन ता प्रावे जा तिसके मन पाणी। माया मोहनी नी करिया जियो कूड़ मुठी कूड़ियारे, क्यों खूले गल जे वड़ा जियो बिन गुरे अत प्यारे, हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे तिस ही का सो होवे। पुन दान्या नेक नावन क्यों अंतरमल तोवे, नाम बिना गत कोई न पावे हठ निग्रह बेबाण, नानक सच कर शब्द सियापे दुबदा महल के जाने। तेरा नाम सच्चा जियो सब सच्चा विचारो, तेरा महल सच्चा जियो नाम सच्चा वापारो, नाम का वापार मीठा भगत लाहा अन दिनो, तिस बाज वखर कोई ना सूजे नाम ले वो खिन खिनो। परख लेखा नदर साची कर्म पूरे पाया, नानक नाम महारस मीठा गुरपुरे सच पाया। रा गौड़ी पूर्वी संत महला तीजा, एक ओवंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। सात अन बिना करे जियो हर के गुण सारे, खिन पल रहना सके जियो बिन हर प्यारे, बिन हर प्यारे रहना सके गुरबिन मैल ना पाईए। जो गुर कह सोई पर की जय तिसना यगन बुझाई है, हर साचा सोई तिस बने अवर ना कोई बिन सेवे सुख ना पाए। नानक सातन मिले मिलाई जिसनो आप मिलाए, तन रहन सुहेलड़िए जियो हर स्यो चित लाए, सतगुर सेवे पाओ करे जियो विचों आप गवाए। विचों आप गवाए हर गुण गाए अंदन लागा पाओ, सुन सखी सहेली जी की मेली गुर कै शब्द समाओ। हर गुण सारी ता कंत प्यारी नामे तरी प्यारो, नानक कामन ना प्यारी राम नाम गलहारो। तन एकलड़ी जियो बिन नहा प्यारे, दूजे पाए मुठी जियो बिन गुर शब्द करारे। बिन शब्द प्यारे कौन दुत्तर तारे, माया मोहे खुआई कूड़ विगुती ता प्रमुती सातन मैल ना पाई। गुरशब्दे राती सहजे माती अंदर रहे समाए, नानक कामन सदा रंगराती हर जियो आ मिलाए। ता मिलिया हर मेले जियो हर बिन कवन मिलाए, बिन गुर प्रीतम अपने जियो कौन परम चुकाए, गुर परम चुकाए इउ मिलिए माए ता सातन सुख पाए। गुर सेवा बिन कोरे अंधार बिन गुर मग ना पाए,

पिर बिन खरी निमाणी जियो, बिन पिर क्यों जीवा मेरी माई, पिर बिन नींद ना आवै जियो, कापड़ तन ना सुहाई, कापर तन सुहावै जा पिर भावै गुरमती चित लाइयै, सदा सुहागण जा सतगुर सेवे गुर कै अंक समाई है, गुर शब्दे मेला ता पिर रावी लाहा नाम संसारे, नानक कामण नहा प्यारी जा हर के गुण सारे, सा तन रंग माणे जियो अपने नाल प्यारे, अहनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे, गुर शब्द विचारे हम मैं मारे इन बद मिलो प्यारे, सा तन सोहागण सदा रंग राती साचै नाम प्यारे, अपने गुरमिल रही है अमृत गही है दुबदा मारन वारे, नानक कामण हर वर पाया सगले दुख विसारे,

राम नाम वा पाराग म्या पारा गुरमति तन पाई है, सेवा सुरत भगते साची विचो आप गवाई है। हम मतहीन मूर्ख मुग्ध अंधे सतगुर मार्ग पाए, नानक गुरमुख शब्द सुहावे अंधन हर गुण गाए। आप कराए करे आप जियो आपे शब्द सवारे, आपे सतगुर आप शब्द जियो जो जुग भगत प्यारे, जो जुग भगत प्यारे हरे आप सवारे। आपे भक्ति लाए आपे दाना आपे बिना आपे सेव कराए, आपे गुणदाता गुण काटे हृदय नाम वसाए। नानक सतबलिहारी सच्चे विटों आपे करे कराए। गौड़ी महला तीजा गुर की सेवा कर पिराजियो, हर नाम ते आए मन्यो दूर ना जाहे पिराजियो। घर बैठिया हर पाए, घर बैठिया हर पाए सदा चित लाए, सहजे सत सुभाए गुर की सेवा खरी सुखाली जिसनो आप कराए। नामो बीजे नामो जमै नामो मन वसाए, नानक सच नाम वड्याई पूर्व लिखिया पाए। हर का नाम मीठा पिराजियो जा चाख है चित लाए, रसना हरस चाख मुइये जियो आन रस साध गवाए। सदा हर रस पाए जा हर पाए रसना शब्द सुहाए, नाम ते आए सदा सुख पाए नाम रहे लिवलाए। नामे उपजे नामे बिरसै नामे सच समाए, नानक नाम गुरमती पाईऐ आपे लै लवाए। एह वडाणी चाकरी पिराजियो तन छोड़ परदेस सिधाए, दूजे किनै सुख ना पायो पिराजियो बिख्या लोभ लुभाए, बिख्या लोभ लुभाए।

संत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधो त्याय मना मुरार मुकंदे कटिए काल दुख फादो दुख हरण दीन सरण श्री तार चरण कमल आरा दी है जम पंथ विखड़ा अगन सागर निमख सिमरत साधी है कल मलै देता शुद्ध करता दिन सरहण आरा दो बिनवंत नानक करो कृपा गोपाल गोविंद माधो सिमर मना दा मोदर दुख हर पै पंजन हर राया श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वछल बिरदाया भगत वछल पुरख पूर्ण मन चिंदिया पाईऐ तम अंध कूप ते उधार है नाम मन वसाईऐ सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुण अनक भगती गाया बिनवंत नानक करो कृपा पार ब्रह्म हर राया चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर सर्व कला जिन धारी करना मैं समरथ स्वामी घटघट प्राण आधारी प्राण मन तन जी दाता बेअंत अगम पारो सरण जोग समरथ मोहन सर्व दुख बिदारो रोग सोग सब दुख बिनसै जपत नाम मुरारी बिनवंत नानक करो कृपा समरथ सब कल तुहारी गुण गाओ मना अचत अविनाशी सब ते उच दयाला विश्वंपर देवन को एक सर्व करै प्रतपाला प्रतपाल महा दयाल दाना दया तारे सब किस काल कंटक लो मोह नासै जी जा कै प्रभसै सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पई पूर्ण काला बिनवंत नानक इच पुन्नी जब दीन दयाला गौड़ी महला पंजवा सुन सखिए मल उदम करेहा मनाए लै हर कंत मान त्याग कर भगत ठगौरी मोह साधु मंत सखी वस आया पर छोट ना जाई एह रीत भली भगवंत नानक जरा मरण पै नरक निवार पुनीत करै तिस जंत सुन सखिए एह पली बिनंती एहो मतांत पकाई है सहज सुभाए उपाद रहत होए गीत गोविंद गाई है काल कलेस मिटै भ्रमनास है मन चिन्हया फल पाई है पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर नानक नाम ते आई है सखी इच्छ करी नित सुख मनाई प्रभ मेरी आस पुजाए चरण प्यासी दर्श बैरागन पेखो थान सवाए खोज लहो हर संत जना संग समरथ पुरख में लाए नानक तिन मिलिया सुरजन सुखदाता सेवड़ पागी माए सखी नाल वसा अपने नहा प्यारे मेरा मन तन हर संग हिलिया सुन सखिए मेरी नींद भली मैं अपनड़ा पिर मिलिया प्रम खोयो सांत सह स्वामी प्रगास भया कौल खिलिया वर पाया प्रभ अंतर जामी नानक सोहाग ना टलिया।

परमेश्वरा गुरदेव सखा ज्ञान भंजन गुरदेव बंदप सहोदरा गुरदेव दाता हर नाम उपदेश गुरदेव मंत निरोधरा गुरदेव सांत सतबुद गुरदेव सांत सतबुद्ध मूर्त गुरदेव पारस परस्परा गुरदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरदेव करता सब पाप हरता गुरदेव पतत पवित करा गुरदेव आद जुगा जो जुग गुरदेव मंत हर जप उदरा गुरदेव संगत प्रमेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा गुरदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरदेव नानक हर नमस्कारा। सलोक आपै किया कराया आपै करने जोग नानक एको रव रया दूसर होवा ना होग। पौड़ी ओवं साध सतगुर नमस्कारं आदमद अंत निरंकारं आपै सुनो आपै सुख आसनो आपै सुन तो आप ही जासनो आपने आप आपै उपायो आपै बाप आप ही मायो आपै सूखमो आपै अस्थूला लखी ना जाई नानक लीला।

आप निर्गुण सरगुण एक एक एक बखाननो नानक एक अनेक पौड़ी ओवं गुरमुखियो अकारा एक सुत परो बनहारा भिन्न भिन्न त्रैगुण विस्थारं निर्गुण ते सरगुण दृष्टारं सगल पांत कर करै उपायो जन्म मरण मन मोह बढ़ायो दूहू पांते आप निरारा नानक अंत ना पारा वारा सलोक सेई साह भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सुच पाई है ते संतन कै पास पवड़ी ससा सत सत सत सो सतपुरख ते पिन ना को सो सरन परै जिह पायं सिमर सिमर गुण गाए सुनायं संसय परम नहीं कछ व्यापत प्रगट प्रताप ताहूं को जापत सो साधु।

तंदे कहां ब्यापै ताहू जो एक छाड़ियन कतै न जाहू जा कह ही है दियो प्रभ नाम नानक साध पूर्ण भगवान। सलोक अनक पेख यार ज्ञान ध्यान मन अठ मिलो ना कोए कहो नानक कृपा पही भक्त ज्ञानी सोए। पौड़ी नंगा ज्ञान नहीं मुख बात अनक जुगत शास्त्र कर पात ज्ञानी सोए जा कह दृढ़ सो कहत सुनत कह जोग ना हो। ज्ञानी रहे तो आज्ञा दृढ़ जा कह उसन सीत समसर सब ता कह ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा धारी। सलोक आवन आए सृष्ट मैं बिन बूझे फस टोर नानक गुरमुख सो बुझै जाके पाग मथोर। पौड़ी या जुग मैं एक कह आया जन्मत मोयो मोनी माया गर्भ कुंट में उर तप करते सास सास स्मृत प्रभ रहते उर्ज परे जो छोड़ छडाना देवन हार मन बिसराना तारो कृपा जसै गुसाई ए त्युत नानक तिस बिसरो नाही। सलोक आवत हुक्म बिनास हुक्म आज्ञा पिन ना कोए आमन जाना तेह मिटै नानक जेहे मन सोए। पौड़ी एउ जी बहुत गर्ववासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रैगुण बसकीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कश कहो उपाया जाते तरो बिखम ए माया कर कृपा सत्संग मिलाए नानक ताकै निकट ना माए। सलोक किरत कमावन सोभ्या सोभ कीने तिन प्रभ आप पासे अपन हाँ हाँ करै नानक बिन हर कहां।

सो पायो जो आप दिवायो, ओवा का अंतरा जाने को, जो जो करे सूफन हो। एक ते सगला विस्तारा, नानके आप सवार नहारा। सलोक राज रहे बनता बिनोद, कुसम रंग बिखसोर। नानक तेह सरनी पर, बिनस जाए मैं मोर। पौड़ी रे मन बिन हर जय रचा, तह तह बंधन पाए। जेह बिद कतू न छूटी है, सकते उकमाहे। हां हां करते कर्म रत, ताको पारिया फार। प्रीत नहीं जो नाम स्यो, तउ एउ कर्म बेकार। बादे जम की जेवरी, मीठी माया रंग। भ्रम के मोहे न बुझे, सो प्रभ सधु संग। लेखे गणत।

होवनहार हो सदयाया, वकंत न काहू पाया। कीट हस्त में पुरुष माने, परगट पुरख सब डाऊ सब ठाऊ जाने। जा कौ दीनो हर रस अपना, नान गुरमुख हर हरते जपना। श्लोक आत्म रस जे जानिया, हर रंग सहजे मान। नानक तन तन तन जानो, आए ते प्रवान। पौड़ी आया सफल ताहू को गनिए, जास रसनो हर हर जस भनिए। आए बसै साधु कै संगे, अंदन नाम ते आवै रंगे। आवत सो जन ना मैं राता, जां को दया मैं बेदाता। एक आवन फिर जो ना आया, नानक हर कै दर सुमाया। सलोक यास जपत मन होए आनंद, बिनसै दूजा भाओ। दुख दर्द तृष्णा बुझै, नानक नाम समाओ। पौड़ी यैया जारो धर्म दो, तिसै त्याग सुख सहजे सोउ। यैया जाए परो संत सरना, जे आसरिया पव जल तरना। यैया जन्मना आवै सोउ, एक नाम ले मने प्रोउ। यैया जन्म नहारी है, गुरपूरे की टेक। नानक ते सुख पाया, जा कह ही अर एक। श्लोक अंतर मंतन बस रहे, ईत ऊत के मीत। गुरपूर उपदेसया, नानक जपिए नीत। पौड़ी अंदन सिमरव तास कहो, जो अंत सहाई होए। एह बिख्या दिन चार छे, छाड़ चलो सब कोए। कां को मात पिता सोतिया, गृह बंता का संग न लिया। ऐसी संच जो बिनसत नाही, पसेती अपने कर जाही। साध संकर कीर्तन गाया, नानक ते बहुर न आया। श्लोक अत सुंदर कुलीन चतर, मुख ज्ञानी धनवंत। मृतक कही है नानका, जे प्रीत नहीं भगवंत। पौड़ी गंगा खड़शास्त्र हो ज्ञाता, पूरक कुंभक रेच करमाता। ज्ञान ध्यान तीर्थ इशनानी, सोम पाक अपरस उद्यानी। राम नाम संग मन नहीं हेता, जो कश कीनो सो अनेता। उवा ते उत्तम गनो चंडाला, नानक जे मन बसै गोपाला। श्लोक कुंट चार दै दिस प्रमे, कर्म किरत की रेख। सुख दुख मुक्त जोन, नानक लिख्यो लेख। पवड़ी कक्का

गंगा ग्रासै काल तेहे जो सगत प्रभ कीन अनक जोन जन्मै मरै आत्म राम न चीन। ज्ञान ध्यान ताहू को आए कर कृपा जे आप देवाए गणती गणी नहीं को छूटै काची गागर सर पर फूटै। सो जीवत जह जीवत जपया प्रगट पै नानक ने छपया सलोक। चित चित बो चरणार बिंद ऊंद कवल बिग सांत प्रगट पै आपै गोबिंद नानक संत मतात। पौड़ी चचा चरण कमल गुर लागा तन तन ओवा दिन संजोग सुभागा। चार कुंट दै दिस भ्रम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो। चार विचार बिन सो शब्द हुआ सा संगमन निर्मल हुआ। चिंत बिसारी एक दृष्टिता नानक ज्ञान अंजन जे नेत्रा सलोक। छाती शीतल मन सुखी संत गोबिंद गुण गाए। ऐसी कृपा करो प्रभ नानक दास दसाए। पौड़ी शशा शोहरे दास तुम्हारे दा दासन के पानी हारे। शशा शार हो तेरे संता अपनी कृपा करो भगवंता। शाड़ स्यान बहु चितराई संतन की मन टिक टिकाई। शार की पुत्री परम गत पाई नानक जाको संत सहाई। सलोक जोर जुलम फूले कनो काची दे बेकार अह बुद्ध बंधन परे नानक नाम छुटार। पौड़ी जज्जा जाने हो कछ हुआ बांध्यो जो नल नी परमसुआ। जो जाने हो भगत ज्ञानी आगे ठाकर तिल नहीं मानी। जो जाने मैं कथनी करता व्यापारी बसदा जो फिरता। सा संग जे हो मैं मारी नानक ता को मिले मुरारी। सलोक चालांगे उठ नाम जप निसबा सिर आराध कारा तुझे ना व्यापई नानक मिटै उपाद। पौड़ी चज्जा चूरन मिटै तुम्हारो राम नाम स्यों कर व्यवहारो। चूरत चूरत सख्त मुआ जा कर दै होत पाओ बिया। चरै कसमल पाप तेरे मनुआ अमृत कथा संत संग सुनुआ। चरै काम क्रोध दृष्टाई नानक जा को कृपा गुसाई। सलोक यत्न करो तुम अनक बिद रह ना पावो मीत। जीवत रहो हर हर भजो नानक नाम प्रीत। पवड़ी नया ज्ञानो दृढ़ सही बिनस जाय ए हेत। गणती गणो ना गण सको उड़सदारे केत। न्यो पेखो सो बिनसतो कास्यो करिय संग। ज्ञानो या बिद सही चित झूठो माया रंग। ज्ञानत सोई संत सोए भ्रमते की चित भिन्न। अंध कूबते देख डो जे होवो सो प्रसन्न। न्या कह सम्राते कारण करने योग नानक ते उसत करो न्याहू कियो संजोग। सलोक टूटे बंधन जन मरण साध सेव सुख पाए नानक मनो न बिसरै गुणित गोविंद राय। पौड़ी

जाकौ साध कृपाल साधु संगतौ बसै जो अपन होहे दयाल। टोहे टाहे बहु पवनो बिन्ना मैं सुख नाहे टले जाम के दूत तेहे जो साधु संग समाहे बार बार जाओ संत सदके नानक पाप बिना से कदके। सलोक ठाक ना होती तिन उदार जे होवो सो प्रसन्न जो जन प्रभ अपने करे नानक ते धन धन। पौड़ी ठठा मनुआ ठाहै नाही जो सगल त्यागे कै लिपटाही ठहक ठहक माया संग मुवे उवा कै कुशल न कथू हुए। ठांड परी संतै संग बसिया अमृत नाम तहां जी रसिया ठाकर अपने जो जन पाया नानक वाका मन शीतलाया। श्लोक डंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। पौड़ी डड्डा डेरायो नहीं जय डेरा तै जान ओवा डेरा का संजम गुर कै सबद पिछान। ओवा डेरा या डेरा कौ सरम कर कालै जाका तसु नहीं संचालै ओवा डेरा की सोमत जानै जाको दृष्ट पूर्ण भगवान। डेरा निचर सच साध संग पाया नारक तेजन नह डोलाया। श्लोक ताहन लागे धर्म राए कने न काल्यो बंद नानक उबरे जप हरी साध संग संबंध। पौड़ी टड्डा टूंडत कै फिराओ टूंडन या मन माहे संग तुहारे प्रभ बसै बन बन का फिराए। तेरी टाहो साध संग अहंग बुद्ध बिकराल सुख पावो सजे बसो दर्शन देखने हाल। तेरी जामै जा मरै गर्भ जोन दुख पाए मोह मगन लपटत रहे हाहो आवै जाए। टहत टहत अब टह परे साजना सरनाए दुखे फाहे काटिया नानक लिए समाए। श्लोक जह साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत ना होना तूने छुटै निकट न जाइयो दूत। पौड़ी अनाना रण तेसी जिया आत्म जीतै कोए होमे अनस्यो लर मरै सो सो बादू होए। मणि मिटाई जीवत मरै गुरपूरे उपदेश मनुआ जीतै हर मिलै तेसु रतन वेस। अना को जाणै अपनो एकै टेक आधार रहण दिन सो सिमरत रहै सो प्रभुरख अपार। रेण सगल या मन करै एऊ कर्म कमाए हुक्मै बूझै सदा सुख नानक लिखिया पाए। श्लोक तन मन तन अर्पौ तिसै प्रभु मिलावै मोहे नानक परम पौ काटियै चूकै जमकी जो हो। पौड़ी तत्ता तास्यो प्रीत कर गुणित गोविंद राय फल पावै मन बांझते तब तुहारी जाए। त्रास मिटै जम पंथ की जास बसै मन नाओ गत पावै मत होए प्रगास मैली पावै ठाओ। ताहू संग न तह चलै ग्रेजो बनै राज संत संग सिमरत रहो एह तुहारै काज। ताता कछु न होइऐ जो ताप निवारै आप प्रतपालै नानक हमै आपै माई बाप। श्लोक थाके बोबिद कालते तृप्त ना तृष्णा लाथ संच संच सागत मुवे नानक माया ना साथ। पौड़ी

दिन दे तोट न आवई अगनत परे पंडार, दैन हार सद जीवन हारा मन मूर क्यों ताहे बिसारा, दोष नहीं काहू कौ मीता माया मोह बंद प्रभ गीता, दर्द निवारे जाके आपे नानक ते दे गुरमुख त्रापे, सलोक धर जिया रे इक टेक तू लाहे बिडानी आस, नानक नाम ते आई है कारज आवै रास पौड़ी, धद्दा तावत तौ मिटै संत संग होए बास, तुरते कृपा करो आप तौ होए मनै प्रगास, तन साचा तेऊ सच सहा हर हर पूंजी नाम बिसाहा, तीरज जस सोभा तेह बनया हर हर नाम श्रवण जे सुनया, गुरमुख जेह कट रहे समाई नानक ते जन मिली वडाई, सलोक नानक नाम नाम जप जपया अंतर बाहर रंग, गुरपुरै उपदेसिया नरक नाहे साध संग पौड़ी, नन्ना नरक भरै ते नाही जा कै मंतन नाम बसाही, नाम निदान गुरमुख जो जपते बिख माया मैं ना होए खपते, नन्ना कारना होता ता कहो नाम मंत्र गुर दीनो जा कहो, निद निदान हर अमृत पूरे तै बाजे नानक अनहतूरे, सलोक पत राखी गुर पार ब्रह्म तज प्रपंच मोह बेकार, नानक सो आराधी है अंतना पारावार पौड़ी, पप्पा परमित पार ना पाया पतत पावन अगम हर राया, होत पुनीत कोट अपराधु अमृत नाम जपै मिल साधु, पर पज त्रोह मोह मिटनाई जा कहो राखो आप गुसाई, पात साहो छत्र सिर सो नानक दूसरे अवर ना को, सलोक फाहे काटे मिटे गवन फतेह पई मन जीत, नानक गुरते थित पाई फिरन मिटे नित नीत पौड़ी, फफा फिरत फिर तू आया दुर्लभ देहे कल युग मैं पाया, फिर या ओसर चरै न हाथा नाम जपो तो कटिए फासा, फिर फिर आमन जान ना होई एक एक जपो जप सोई, करो किरपा प्रभ करने हारे मिल रहो नानक बेचारे, सलोक बिनो सुनो तुम पार ब्रह्म दीन दयाल गोपाल, सुख संपै बहु भोग रस।

जाय उबरन तारे सब को वाहे जपे बिन उबर ना हो याहू तरन तरन समराथा राख ले हो निर्गुण नरनाथा मान बच करामो जे आप जनाई।

होए निमाना जग रहो नानक नदरी पार पौड़ी अरारा रेन हो सब जा की ताजा मान छुटे तेरी बाकी रण दरगह तो सी जय पाई जो गुरमुख राम नाम लेवलाई रहत रहत रह जाए बेकारा गुरपुर के शब्द अपारा राते रंग नाम रस माते नानक हर गुर की नींदा ते सलोक लालच झूठ बिखे ब्याद या देही मैं बास हर हर अमृत गुरमुख पिया नानक सुख निवास पौड़ी लल्ला लावो औखद जाहू दुख दर्द ते मिटै खनाहू नाम औखद जिरदै हतावै ताहे रोग सुपने नहीं आवै हारे औखद सब कट है भाई गुरपुरे बिन बिदना बनाई गुरपुरै संयम कर दिया नानक तो फिर दुख ना थिया सलोक वासदेव सर्वत्र मैं ऊनक तू ठाए अंतर बाहर संग है नानक काए दुराए पौड़ी ववा वैर न करिए काहू घटकट अंतर ब्रह्म समाहू वासदेव जल थल मैं रविया गुरप्रसाद विरले ही गव्या वैर विरोध मिटे ते मन ते हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते वर्ण चिहन सगले ते रहता नानक हर हर गुरमुख जो कहता सलोक हां हां करत बिहानिया साकत मुकदया जान रड़क मोए ज्यो त्रिखावंत नानक किरत कमान पौड़ी राड़ा राड़ मिटा संग साधु कर्म धर्म ते कर्म धर्म तत ना माराधु रूडो जे बस्यो रिद माही ओवा की लाड़ मिटत बिन साही अड़ाड़ करत सगत गावारा जे ही है अंबुद बिकारा अड़ाड़ा गुरमुख अड़ाड़ मिटाई निमुख माहे नानक समझाई सलोक साधु की मन ओट कहो उक्त सियान पत्याग गुर दीख्या जे मन बसै नानक मस्तक भाग पौड़ी ससा सरन परे अवहारे शास्त्र सिमरत बेद पुकारे सोधत सोधत सोध बिचारा बिन हर भजन नहीं छुटकारा सा सा संपूल नहारे तुम समराथ्या गंता पारे सरण परे की राख दयाला नानक तुमरे बाल गोपाला सलोक खुदी मिटी तब सुख पए मंतन पए अरोग नानक दृष्टि आया उस्त करने जोग पौड़ी खखा खरास राहो ताहू जो खिनमै उन्ने सुपर पराहू खरा निमाना होत परानी अंदन जापै प्रभ निर्बानी भावै खसम ता उवा सुख देता पार ब्रह्म ऐसोवा गणता असंख खते खिन बख्शन हारा नानक साहिब सदा दयारा सलोक सत कहो सुन मन मेरे सरन परो हर राय उकत स्यान पसगल त्याग नानक ले सुमाए पौड़ी ससा स्यान पछाड़ एना हिकमत हुक्म ना प्रपतियाना सहस पात करे चतराई संगत तुहारै एक न जाई सौ सौ जप दिन राती रे जी चले तुहारै साथी साध सेवा लावै जे आपै नानक तां को दुख ना व्यापै सरो सलोक हर हर मुख ते बोलना मन बूठे सुख होए नानक सब मैं रव रया थान थनंतर सोए पौड़ी हेरो कटकट सगल कै पुर रहे भगवान होवते आए सद सदीव दुख भंजन गुर ज्ञान हाँ छुटकै होय आनंद तेह हाँ नाही तह आप हते दुख जन्मै मरण संत संग प्रताप हित कर नाम दृढ़ दयाला संतै संग होत कृपाला ओरै कछु न किन्हु किया नानक सब किछ प्राप्ते हुआ सलोक लेखै कतै ना छूटिया खिन खिन पूलन हार बख्शन हार बख्शल नानक पार उतार पौड़ी लून हरामी गुने गर बेगाना अल्प मत जियो पिंड जन सुख दिए ताहे न जानत तत लाहा माया कारण दे दे टुंडन जाए देवन हार दा तार प्रभ निमखना मने बसाए लालच झूठ बेकार मोह या संपै मन माहे लंपड़ चोर निंदक महा तिन्हू संग बिहाए
ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਖੋਟੇ ਸੰਗ ਖਰੇ ਨਾਨਕ ਭਾਵੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਹਣ ਨੀਰ ਤਰੇ ਸਲੋਕ ਖਾਤ ਪੀਤ ਖੇਲਤ ਹਸਤ ਭਰਮੇ ਜਨਮ ਅਨੇਕ ਭਵਜਲ ਤੇ ਕਾਢੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਪੌੜੀ ਖੇਲਤ ਖੇਲਤੇ ਆਇਓ ਅਨਕ ਜੋਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਖੇਦ ਮਿਟੇ ਸਾਧੂ ਮਿਲਤ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਸਮਾਏ ਖਿਮਾ ਗਹੀ ਸਤ ਸੰਚਿਓ ਖਾਇਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਖਰੀ ਕਿਰਪਾ ਠਾਕਰ ਭਈ ਅਨੰਦ ਸੁਖ ਬਿਸਰਾਮ ਖੇਪ ਨਿਭਾਹੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਘਰ ਆਏ ਪਤਵੰਤ ਖਰਾ ਦਿਲਾਸਾ ਗੁਰਦੀਆ ਆਏ ਮਿਲੇ ਭਗਵੰਤ ਆਪਣ ਕੀਆ ਕਰੈ ਆਪ ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਆਪ ਨਾਨਕ ਸੋਉ ਸਰਾਹੀਐ ਜੇ ਘਟ ਘਟ ਰਹਿਆ ਬਿਆਪ ਸਲੋਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਪੌੜੀ ਅੱਖਰ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੇ ਅੱਖਰ ਕਰ ਕਰ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਖਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਪੁਰਾਨਾ ਅੱਖਰ ਨਾਦ ਕਥਨ ਵਖਿਆਨਾ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਪੈ ਭਰਮਾ ਅੱਖਰ ਕਰਮ ਕਿਰਤ ਸੁਚ ਧਰਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜੇਤਾ ਨਾਨਕ ਪਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਲੇਪਾ ਸਲੋਕ ਹੱਥ ਕਲਮ ਅਗੰਮ ਮਸਤਕ ਲੇਖਾਵਤੀ ਉਰਜ ਰਹਿਓ ਸਭ ਸੰਗ ਅਨੂਪ ਰੂਪਾਵਤੀ ਉਸਤਤ ਕਹਿਣ ਨਾ

जहां त्रिखा मन तुझे आकर्ष है, तै नानक हर हर अमृत बरख है। भक्त जना की बरतन नाम, संत जना कै मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उदरे जन कोट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साधक मात। हर जन कै हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन कीनो दान। मन तन रंग

हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कौ परै न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे बेयोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन कै मालख जीना, हर तन जन कौ आ प्रभ दीना। हर हर जन कै ओठ सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग के ते तरे। पार जाते ओ हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत हृदवसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है। नाम तोल कश अवर ना होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए। सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टंडोल। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खड़ शास्त्र सिमृत वखियान। जोग अभ्यास कर्म धर्म किरिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया। अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना। शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती। नहीं तोल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै, महा उदास्त पीसर थीवै। अग्न माहे होमत पुराण, कनक अश्व हैवर भूम दान। न्यौली कर्म करै बोवासन, जैन मार्ग संजम अत साधन। निमख निमख कर शरीर कटावै, तौपी होमे मैल न जावै। हर के नाम समसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीर्थ देह छुटै, गर्भ गुमान न मन ते हुटै। सोच करै दिन सियर रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही को बहु साधना करे, मन ते कबहू ना बिखिया टरे। जल धोवे बहु दे अनीत, शुद्ध कहां होए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पत बहु मूच। बहुत सियाणप जम का पौ व्यापै, अनक जतन कर तृष्णा त्रापै। भेख अनेक अगर नहीं बुझै, कोटो पाव दरगै नहीं सजै। छूट सनाही

हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहे सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगे, साजना की सेवा लागे। जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सदगावे। जे को अपनी शोभा लोरे, साध संग ए मैं शोरे। जे को जन्म मरण ते डरे, साजना की सरनी परे। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताके बल बल जासा। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभिमान। आपस कौ जो जाने नीचा, सो गनिया सब ते ऊंचा। जाका मन होए सगल की रीना, हर हर नाम तन कट कट चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखे सगल सिठ साजना। सुख दुख जन सम दृष्टेता, नानक पाप पुन नहीं लेपा।

मिथ्या रथ हस्ती असो वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या त्रोह मोह अभमान मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान अस्त्र भगत साध की शरण नानक जब जब जीवे हर के चरण मिथ्या सर्वण पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर दर्भ कौहर मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रे रूपाद मिथ्या रसना पूजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार कौ तावै मिथ्या मन पर लोभ लुभावै मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत बेकारा बिन बूझे मिथ्या सब पै सफल देह नानक हर हर नाम लय बिरथी सागत की आरजा साच बिना कह होवत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुख आवत ता कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रहन बिरथा बिहाय मेघ बिना ज्यो खेती जाए गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम ज्यो किरपन के निरार्थ दाम तन तन तेजन जह कट बस्यो हर नाओ नानक ता कै बल बल जाओ रहत अवर कश अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखो गंडलावत जानन हार प्रभु परवीन बाहर पेख न काहू पीन अवर उपदेश आप ना कर आवत जावत जन्म मर जिसके अंतर बसे निरंकार तिसकी सीख तरह संसार जो तुम पाने तिर प्रभ जाता नानक उन जन चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आपे माने आपे आप करतन बेरा किसे दूर जनावत किसे बजावत नेरा उपाव सियानप सगलते रहत सब कह जाने आत्म की रहत जिस पावे तिस लय लड़ लाए थान थनंतर रहया समाए सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख

बिनस जाए हमेव, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। अष्टपदी, जेह प्रसाद शक्ति अमृत खाहे, तिस ठाकर कौ रख मन माहे। जेह प्रसाद सुगंधत तन लावे, तिस कौ सिमरत परम गत पावे। जे प्रसाद बसै सुख मंदर, तिसै त्याय सदा मन अंदर। जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ पहर सिमरौ तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याई त्यावन जोग। जे प्रसाद पाट पटंबर हंडावै, तिसै त्याग कत अवर लोबावै। जेह प्रसाद सुख से सुई जै, मन आठ पहर ताका जस गावी जै। जेह प्रसाद तुझ सब को मन, मुखता को जस रसन बखाना। जेह प्रसाद तेरो रहता धर्म, मन सदा त्याए केवल पाल ब्रह्म। प्रभ जी जबत दरगह मान पावै, नानक पास सेती कर जावै। जेह प्रसाद आरो कंचन देही, लिव लावो तिस राम स्नेही। जेह प्रसाद तेरा उल्ला रहत, मन सुख पावे हर हर जस कहत। जेह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके, मन सरनी पर ठाकर प्रभ ताक। जेह प्रसाद तुझको ना पहुचे, मन सास सास सिमरो प्रभ उच्चे। जेह प्रसाद पाई दुर्लभ देहे, नानक ताकी भगत करे हे। जेह प्रसाद या पूखन पहरी जै, मन ते सिमरत क्यों वालस की जै। जेह प्रसाद असव हस्त असवारी, मन तिस प्रभ कहो कबहू ना बिसारी। जेह प्रसाद बाग मिलख तना, राख परोए प्रभ अपने मना। जिन तेरी

रखै। जेह प्रसाद करै पुन बहु दान, मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। जेह प्रसाद तू चार बिहारी, तिस प्रभ को साह साह चितारी। जेह प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरौ सदा अनूप। जेह प्रसाद तेरी निकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जेह प्रसाद तेरी पत्र है, गुर प्रसाद नानक जस कह। जे प्रसाद सुने करन नाद, जे प्रसाद पेख है बिस्माद। जेह प्रसाद बोले अमृत रसना, जेह प्रसाद सुख सहजे बसना। जेह प्रसाद हस्त कर चले, जेह प्रसाद संपूर्ण फले। जे प्रसाद परमगत पावे, जे प्रसाद सुख सहज समावे। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागौ, गुर प्रसाद नानक मन जागौ। जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभ को मूल न मनो बिसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूड तू ता कहो जाप। जेह प्रसाद तेरे कार्य पूरे, तिसे जान मन सदा हजूरे। जेह प्रसाद तू पावै साच, रे मन मेरे तू ता स्यो राच। जेह प्रसाद सब की गत होए, नानक जब जपै जब सोए। आप जपाए जपै सो नाओ, आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभ कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभ सो प्रसन्न बसे मन सोए, प्रभ दया ते मति उत्तम होए। सर्व निधान प्रभ तेरी माया, आपो कछु ना किन्हु लया। जित जित लावो तित लगे हर नाथ, नानक इनके कछु ना हाथ। सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा। अष्टपदी साध कै संग मुखी उज्जल होत, साध संग मर सगली खोत। साध कै संग मिटै अवमान, साध कै संग प्रगटै सुगयान। साध कै संग बुझै प्रभ नेरा, साध संग सब होतन बेरा। साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बरनै कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ महे समानी। साध कै संग गोचर मिलै, साध कै संग सदा प्रफुलै। साध कै संग आवै बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन। साध कै संग न कतहु तावै, साध संग अस्थित मन पावै। साध कै संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत। साध संग के सो नहीं बैर, साध कै संग न बींगा पैर। साध कै संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध कै संग नाही हवताप, साध कै संग जै सव्याप। आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बन आई। साध कै संग न कबहू तावै, साध कै संग सदा सुख पावै। साध संग बसता गोचर लहै, साधु कै संग अजर सहै। साध कै संग बसै थानी उचै, साधु कै संग मैल पहुचै। साध कै संग दृढ़ सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म। साध कै संग पाए नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान। साध कै संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटम निस्तारै। साधु कै संग सो तन पावै, जिस तन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध कै संग सर्वथान गम, नानक साध कै संग सफल जनम। साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन भेटत होत निहाल। साध कै संग कलुख तहरै, साध कै संग नरक पर हरै।
साध कै संग इहा उहा सुहेला, सा संग बिशरत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावे, साध कै संग ना बिरथा जावे। पार ब्रह्म साध रिद बसे, नानक उधरै साध सुन रस है। साध कै संग सुनो हर नाओ, सा संग हर के गुण गाओ। साध कै संग ना मनते बिसरै, सा संग सर पर निस्तर है। साध कै संग लगे पर मीठा, साधु कै संग कड़कड़ डीठा। सा संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी। साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग। साध की महिमा

साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूझते मूची। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभेद न पाई। श्लोक। मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखे एक बिन कोए। नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमला लेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व कौ सोख। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंग कौ लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कै तीर्ज एक, जो बसदा को खोदे को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाओ, नानक ज्यो पाव का सही स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपने है सब दे नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पए, नानक जिन प्रवे आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ही उपरयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी परोपकारो महा। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कै होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै एक कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहबुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संघेता। ब्रह्म ज्ञानी कै होया चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे।

ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सजीव है नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी।

नानक हो बैसनो परम गत पावै। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागै दुष्ट का संग। मन ते बिनसै सगला परम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म। साध संग पापा मल खोवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै। भगवंत की टहल करै नित नीत, मन तन अर्पै बिसन प्रीत। हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत कौ पावै। सो पंडित जो मन प्रबोधै, राम नाम आत्म मैं सोधै। राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित के उपदेश जग जीवै। हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जोन न आवै। वेद पुराण सिमरत बूझै मूल, सुख में जानै अस्थूल। चहु वरना कौ दे उपदेश, नानक उस पंडित कौ सदा आदेश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चहु वरना मैं जपै को नाम। जो जो जपै तिसकी गत होए, सत्संग पावै जन कोए। कर कृपा अंतर उतारै, पस प्रेत मुग्ध पाथर को उतारै। सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम। काहू जूत कत ना पाइय धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म। जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास। आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया। सदा निगट निगट हर जान, सो दास दर गए परवान। अपने दास को आप कृपा करै, तिस दास को सब सोजी परै। सगल संग आत्मे उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास। प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सोउ कहावै। तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तै नहीं वियोग। तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान। जो वरताए साई जुगत, नानको पुरख कहिए जीवन मुगत। पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित कर राखै तैसा तिन नाओ। आपे करन करावन जोग, प्रभ पावै सोई फुन होग। पसर्यो आप होए अंत तरंग, लखे ना जाहे पार ब्रह्म के रंग। जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश। सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पहे निहाल। सलोक उस्तत करे।

पर अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बन प्रमय उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान तार है, कई कोट कब का विचार है, कई कोट नवतन नाम ते आवे, नानक करते का अंत ना पावे, कई कोट पय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अपेद आत्म निकोर, कई कोट पर दर्ब कौ हिरै, कई कोट पर दुख ना करै, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट पर देश पर माहे, जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरख निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नखियतर, कई कोट देव दानव इंद्र सिर शतर, सगल समग्री अपने सूत तार, नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तार, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरतर शास्त्र, कई कोट कीर्तन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिरजीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जख किन्नर प्रसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच, सब ते नेर सब हूं ते दूर, नानक आप अलिप्त रहया परपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्मै जीवै मरै, कई कोट बौजोनी फिरै, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट घालै थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मै चिंत, जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किछ प्रभ कै हाथे, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संगतिन लवलागी, कई कोट प्रभ को खोजनते, आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिनको मिल्यो प्रभ बनास, कई कोट मांग ऐसा संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होए आप सो प्रसन्न, नानक तेजन सदा तन तन, कई कोट खानी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड।

कोट नाम गुण गावै, आत्म रस सुख सहि समावै, अपने जन कौ साथ साथ सुमारे, नानक होए परमेश्वर के प्यारे। सलोक करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोए, नानक तिस बलिहारण जल थल महियल सोए। अष्टपदी करण करावन करना जोग, ज्योत पावै सोई होग, खिन मैं थापो थप नहारा, अंत नहीं किश पारा वारा, हुक्मे तार अतर रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनक रंग प्रकार, कर कर देखै अपनी वडियाई, नानक सब मैं रह समाई। प्रभ पावै मानुख गत पावै, प्रभ पावै ता पाथर त्रावै, प्रभ पावै बिन सास ते राखै, प्रभ पावै ता हर गुण पाखै, प्रभ पावै ता पत तो धारै, आप करै आपन विचारै, दुहां सिरिया का आप स्वामी, खेलै बिकसै अंतर जामी, जो पावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर न आवै। कहो मानख ते क्या होए आवै, ज्योतिष पावै सोई करावै, इसके हाथ होए ता सब किछ ले, ज्योतिष पावै सोई करे, अनजानत बिखिया मैं रचै, जे जानते अपने आप बचै, परमे पूला दे दस्तावै, निमख माहे चार कुंट फिर आवै, कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक ते जन नाम मिले, खिन मैं नीच कीट कौ राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज, जाका दृष्ट कशु न आवै, तिस तत्काल देह दिस प्रगटावै, जाको अपनी करै बख्शीस, ताका लेखा ना गनै जगदीस, जियो पिंड सब तिसकी रास, घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बणत आप बनाई, नानक जीवै देख बढ़ाई, इसका बल नाही इस हाथ, करन करावन सर्ब को नाथ, आज्ञाकारी बपरा जियो, ज्योतिष पावै सोई फुंथियो, कबहू ऊंच नीच मैं बसै, कबहू सोग हर खरख, कबहू सोग हर खरंग हसै, कबहू निंद चंद व्यवहार, कबहू ऊब आकाश पयाल, कबहू बेता ब्रह्म विचार, नानक आप मिलावनहार, कबहू निरत करै बहुपात, कबहू सोए रह दिन रात, कबहू महाक्रोध विकराल, कबहू सर्ब की होत रवाल, कबहू होए बह बड़ राजा, कबहू पेखारी नीच का साजा, कबहू अपकीरत मह आवै, कबहू पला पला कहावै, ज्यों प्रभ राखै तिवही रहै, गुर प्रसाद नानक सच कहै, कबहू होए पंडित करे बखियान, कबहू मोन तारी लावै ध्यान, कबहू तट तीर्थ स्नान, कबहू से साधु मो ज्ञान, कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन परमै परमिया, नाना रूप जो स्वांगी दिखावै, ज्यों प्रभ पावै तिवै नचावै, ज्योतिष पावै सोई होए, नानक दूजा अवर ना कोए, कबहू साध संग ते हो पावै, उस स्थान ते बहुर न आवै, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मान तन नाम रते करंग, सदा बसै पार ब्रह्म कै संग, ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गमन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुर्बान। सलोक सुखी बसै मस्कीनिया, आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्ब गले। अष्टपदी जिसके अंतर राजा मान, सो नरक पाती होवत समान, जो जाने मैं जो बनवंत, सो होवत बिष्टा का जंत, आपस कौ कर्मवंत कहावै, जन्म मरै बह जोन परमावै, तन भूम का जो करै गुमान, सो मूर्ख अंधा।

कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावै, नानक यहां मुक्त आगे सुख पावै, धनवंता होए कर गरबावै, तरण समान का संग न जावै, बहु लश्कर मानख ऊपर करे आस, पल भीतर ताका होए विनाश, सब ते आप जाने बलवंत, खिन में होए जाए पसमंत, किसे ना बदै आप अहंकारी, धर्म राय तुस करे खुवारी, गुर प्रसाद जाका मिटे अभमान, सो जन नानक दरगे प्रवान, कोट कर्म करे हो तारे, श्रम पावे सगले बिरथारे, अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुरक फिर फिरे अवतार, अनक जतन करे आत्म नहीं द्रवै, हर दरगे कहो कैसे गवै, आपस कहो जो पला कहावै, तसै पलाई निकट न आवै, सर्व की रेण जा का मन होए, कहो नानक ताकी निर्मल सोए, जब लग जाने मुझते कश होए, तब इसको सुख नाही कोए, जब है जाने मैं किश करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता, जब तारे को बैरी मीत, तब लग निश्चल नाही चीत, जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय दे सजाए, प्रभ कृपा ते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक हो छूटे, सहस खटे लख को उठतावे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे, अनक भोग बिखिया के करे, नह तृप्तावे खप खप मरे, बिना संतोख नहीं को राज, सुपन मनोरथ बिरथे सब काज, नाम रंग सर्व सुख होए, वडभागी किसे प्राप्त होए, करण करावने आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप, करण करावन करने हार, इसके हाथ कहां विचार, जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप आप प्रभ सोए, जो किश कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सबू के संग, बुझे देखे करे बबेक, आपे एक आपे अनेक, मरे ना बिनसे आवे ना जाए, नानक सदी रहा सुमाए, आप उपदेश है समझे आप, आपे रचिया सब के साथ, आप कीनो अपन विस्थार, सब कश उसका ओह करने हार, उसते पिन कहो किश होए, थान थन अंतरे कैसोए, अपने चल तो

संत के दोखी को उद्यान परमाई है, संत का दोखी उजड़ पाई है, संत का दोखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृत की लोथा। संत के दोखी की जड़ किश ना है, अपन बीजा पे ही खाहे, संत के दोखी को अवर ना रखन हार, नानक संत पावे ता ले उबार। संत का दोखी ओ बिल लाए, जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दोखी भूखा नहीं राजे, जो पाप की ईंधन नहीं त्रापे, संत का दोखी छुटे अकेला, ज्यो बुआड़ तिल खे

सुनत कहे तो रहत गत पावो, सार भूत सत हर को नाओ, सह सुबाए नानक गुण गाओ। गुण गावत तेरी उत्तर समैल, बिन सजाए हो मैं बिख फैल, होहे अचिंत बस है सुख नाल, सास ग्रह सार नाम समाल। छाड़ सियानप सगली मना, सा संग पावे सजतना, हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहां सुख दर गै जयकार। सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाके मस्तक लेख। एको जाप एको साला है, एक समर एको मन आहे। एक सके गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत। एको एक एक हरि आप, पूर्ण पूर्ण रहो प्रव्याप। अनक विस्तार एक ते पे, एक आराध प्राष्ट गए। मन तन अंतर एक प्रभराता, गुर प्रसाद नानक एक जाता। श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया, परया तौ शरनाए। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगती लाए। अष्टपदी जाचक जंजा चै प्रभदान, कर कृपा देवो हर नाम। साजना की मंग तूर, पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर। सदा सदा प्रभ के गुण गावो, सास सास प्रभ तुम्हें ते आवो। चरण कमल से लागे प्रीत, भगत करो प्रभ की नितनीत। एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रभ सार। प्रभ की दृष्ट महा सुख होए, हर रस पावे बिरला कोए। जिन चाखे आसे जंत्र बताने, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने। सुबर परे प्रेम रस रंग, उपजे चाओ साध कै संग। परे सरन आन सब त्याग, अंतर प्रगास अनद निलविलाग। वड भागी जपया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए। सेव की मनसा पूरी पई, सतगुर ते निर्मल मत लई। जन कौ प्रभ होयो दयाल, सेव की नो सदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन पाया, जन्म मरण दुख भ्रम गया। इच्छ पुन्नी सरदा सा पूरी, रव रहया सा संग हजूरी। जिसका साथ न लिया मिलाए, नानक भक्ति नाम समाए। सो क्यों बिसरे जे काल ना पाने, सो क्यों बिसरे जे किया जाने। सो क्यों बिसरे जिन सब किश दिया, सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरे जे अग्न में राख, गुर प्रसाद को बिरला लाख। सो क्यों बिसरे जे बिखते काढ़, जन्म जन्म का टूटा गांड। गुरपुरे तत है बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो एहो काम, आन त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अवरह नाम जपावो। भगत पाए तरिया संसार, बिन भक्ति तन होसी शार। सर्व कल्याण सुख निद नाम, बूढ़ जात पाए विश्राम। सगल दुख का होवत नास, नानक नाम।

भक्त जना के मंतन रंग बिरला को पावे संग एक बस दीजे करमया गुरप्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही ना जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभ बख्शन दीन दयाल भगत वछर सदा कृपाल अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आदि पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो होए पुनीत भगत पाए लावे मनहीत हम निर्गुणी आर नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए अनक राज भोग वडियाई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत पली सुकरनी शोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास सलोक सर गुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप अष्टपदी जब आकार हो कछ ना दृटेता पापुन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध के संक मात जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत तब हरक शोक सह व्यापत जब अपने आप आपार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम आपन खेल आप वर्ती जा नान करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मोत कौ किस कौ गनी जब एक हर अगम अपार तब नरक सुर कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहे सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत तर तब कवन निडर कवन कत डर आपन चलत आप करने हार नानक ठाकर अगम अपार अविनाशी सुख अपने आसन तै जन्म मरण कौ कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब आप गत्या गोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचरिया गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बादे अपने आप ही चर जा नानक अपने रूप आप ही उपर जा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभमान जय स्वरूप केवल जगदीश तै शरशिदर लगत कौ कीस जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग सुमाव तै किसे भूख कवन त्रिपतावै करण करावण करण हार नानक करते का नाह सुमार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई जय सर्व कला आपे परवीन तै वेद कतेब कहां कूचीन जब अपने आप उरतार है तो सगन अब सगन कहां विचार है जह अपन ऊच अपने आप नेरा तै कौन ठाकर कौन कहिए चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी का जानो आप जय अशाला शेदा भेद सम

जह आप रचियो पर पंच आकार त्यों गुण मैं कीनो विस्तार पाप उनते पई कहावत को नरक को सुर्ग बंछावत आल जाल माया जंजाल हम मैं मोह परम पै पार दुख सुख माने अपमान अनक प्रकार की ओ बखियान आपन खेल आप कर देख खेल संकोच तो नानक एक जह

पूर्ण पूर रहे दयालो, सब ऊपर होवत कृपालो। अपने कर्तव्य जानै आप, अंतर जामी रहो व्याप। प्रतपालै जियन बहु पांत, जो जो रचियो सोत सहत आत। जिस भावै तिस लय मिलाए, भगत करै हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मानिया, करण हार नानक एक जानिया। जन लागा हर एक नाए, तिसकी आसना बिरथी जाए। सेवक को सेवा बनयाई, हुकम बूझ परम पद पाई।

आप साच धारी सब साच ओत पोत अपन संगराच ता की गत मित कही ना जाए दूसर होए ता सोजी पाए तिसका किया सब प्रवान गुर प्रसाद नानक्यो जान जो जाने ते सदा सुख होए आप मिलाए लय प्रभ सोए ओह धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत तन तन तन जन आया जिस प्रसाद सब जग तराया जन आवन का एह सुआओ जन कै संग चित आवै नाओ आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन

नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख साथ साथ सिमर गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आसा नित त्यागो तरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर तरो हर तन के पर लिहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख पंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत हो तो उधार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्दा नाहद वाजै सुन सुन अंध करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरै तिन कै साथे सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पए सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेव आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ धारी नानक निभि खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निदान सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बौर न होवे अमन जान हर तन खाड़ चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम सात रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता एह फल तिस जन कै मुख भने गुर नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान

सिमरत शास्त्र वेद बखानी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक करम प्रभु पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवारै दुलभ देह तत्काल उदारै निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी एक नाम मन महे समानी दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मल ताके कर्म सब ते ऊच ताकी शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी। थित्ती गौड़ी महला पंजवां सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद जल

दाता भुगता देनहार, तिस बिन रहन ना जाए। दाता भुगता देनहार, तिस बिन अवर ना जाए। जो चाहे सोई मिले, नानक हर गुण गाए। गोविंद जस गाइए हर नीत, मिल भजिए साध।

को खाट शास्त्री उच्चो कह अंत ना पारा वार भगत सोहे गुण गावते नानक प्रभ कह द्वार पौड़ी खष्टम खट शास्त्र कह स्मृत कथ अनेक उत्तम उच्च पार ब्रह्म गुणयंत न जाने सेख नारद मुनजन सुख ब्यास जस गावत गोबिंद रसगी दे हर स्यों भी दे भगत रचे भगवंत मोह मान परम बिनसे पाई शरण दयाल चरण कमल मंतन बस।

मन में चितवै पूर्ण भगवंत, हस्त चरण संत टहल कमाई है, नानक हो संजम प्रभ कृपा पाई है। सलोक एको एक बखानी है, बिरला जाने स्वाद, गुण गोबिंद न जानिए, नानक सब विस्माद। पौड़ी एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम, मन संतोख सर्ब जी दया, इन विद वर्त संपूर्ण भया, तावत मन राखै कठाए, मन तन सुध जपत हर नाए, सब मैं पूर रहे पार ब्रह्म, नानक हर कीर्तन कर अटल एहो धर्म। सलोक दुर्मत हरी सेवा करी, पेटे साध कृपाल, नानक प्रभ सो मिल रहे बिनसे सगल जंजाल। पौड़ी द्वादशी दान नाम इशनान, हर की भगत करो तजमान, हरे अमृत पान करो साध संग, मंत्र पतासै कीर्तन प्रभ रंग, कोमल बाणी सबको संतोख है, पंच पू आत्मा हर नाम रस भुख है, गुर पूरे ते एह निहचौ पाई है, नानक राम रमत फिर जो न आई है। सलोक तीन गुणा मैं व्यापिया, पूर्ण होत ना काम, पतो धारण मन बसै, नानक छूटै नाम। पौड़ी त्रौदसी तीन ताप संसार, आवत जात नरके अवतार, हर हर भजन ना मन मैं आयो, सुख सागर प्रभ निमख ना गायो, हर सोका दे कर बाध्यो, दीर्घ रोग माया आसा देओ, दिने बेकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बरड़ायो, हर बिसरत होवत एह हाल, शरण नानक प्रभ पुरख दयाल। सलोक चार कुंट चौदह पवन, सगल व्याप्त राम, नानक ऊना देखिए पूर्णता के काम। पौड़ी चौदह चार कुंट प्रव्याप, सगल भवन पूर्ण प्रताप, दसे दिशा रव्या प्रभ एक, तरण आकाश सब मैं प्रपेख, जल थल बन पर्वत पाताल, परमेश्वर तैं बसै दयाल, सूखम अस्थूल सगल भगवान, नानक गुरमुख ब्रह्म पिशान। सलोक आत्म जीता गुरमति, गुण गाए गोबिंद, संत प्रसादी भै मिटे, नानक बिरसी चिंद। पौड़ी अमावस आत्म सुखी पहे, संतोख दिया गुरदेव, मन तन शीतल सांत सहज, लागा प्रभ की सेव, टूटे बंधन बहु बेकार, सफल पूर्णता के काम, दुर्मत मिटी हम मैं छुटी, सिमरत हर को नाम, शरण गही पार ब्रह्म की, मिटिया आवा गवन, आप तरिया कोटा बस्यों, गुण गोबिंद प्रभ रवन, हर की टहल कमावनी, जपिए प्रभ का नाम, गुरपूरे ते पाया नानक सुख विश्राम। सलोक पूरन कबो ना डोलता, पूरा किया प्रव्याप, दिन दिन चढ़े सवाया, नानक होत ना घाट। पौड़ी पूर्ण मां पूर्ण प्रभ एक, करण कारण समरथ, जी जंत दयाल पुरख, सब ऊपर जा का हथ, गुण निदान गोबिंद गुर, किया जा का होए, अंतर जामी प्रभ सुजान, अलख निरंजन सोए, पार ब्रह्म परमेश्वरो, सब जन नहार, संत सहाई सरन योग, आठ पहर नमस्कार, अकथ कथा न बुझिए, सिमरो हर के चरण, पतो धारण नाथ नाथ, नानक प्रभ की शरण। सलोक दुख बिन से सहसा गयो, शरण गही हर राय, मन चिंदे फल पाया, नानक हर गुण गाए। पौड़ी कोई गावे को सुने, कोई करे विचार, को उपदेसै को दृढ़ै, तिसका होए उधार,
किलबे काटै हुए निर्मला, जन्म जन्म मल जाए। हलत पलत मुखी उजला, नै पो है तिसमाए। सो सुरता सो बैसनो, सो ज्ञानी तनवंत, सो सूरा कुलवंत सोए, जिन भजया भगवंत। खत्री ब्राह्मण सूद वैस, उदरै सिमर चंडाल, जिन जान्यो प्रभ अपना, नानक तसैरवाल। गौड़ी की वार महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला चौथा, सतगुर पुरख दयाल है, जिसनों समत सब कोए। एक दृष्ट कर देखदा, मन भावनी ते सिद्ध होए। सतगुर विच अमृत है, हर उत्तम हर पद सोए। नानक कृपा ते हर त्याई है, गुरमुख पावै कोए। महला चौथा, हम है माया सब बिख है, नित जग तोटा संसार। लहा हर तन खटिया, गुरमुख शब्द विचार। हम मैं मैल बिख उतर, हर अमृत हर ओर धार। सब कार तिन के सिद्ध है, जिन गुरमुख कृपा तार। नानक जो तुर मिले से मिल रहे, हर मेले सृजनहार। पौड़ी तू सच्चा साहिब सच है, सच सच्चा गोसाई। तुदनो सब ते आईंदी, सब लगे तेरी पाई। तेरी सिफत सवाल्यो स्वरूप है, जिन कीती तिस पार लंघाई। गुरमुखां नूं फल पाईंदा, सच नाम समाई। वड्डे मेरे साहिबा, वड्डी तेरी वड्याई। सलोक महला चौथा, विण नावै होर सलाहना, सब बोलन फिका साध। मनमुख अहंकार सलाह दे, हौं मैं ममतावाद। जिन सलाहन से मरै, खप जावै सब अपवाद। जन नानक गुरमुख उबरे, जप हर हर परमानाद। महला चौथा, सतगुर हर प्रभ दस, नाम ते आई मन हरी। नानक नाम पवित, हर मुख बोली सब दुख पर हरी। पौड़ी तू आपे आप निरंकार है, निरंजन हर राया। जिनी तू एक मन सच ते आया, तिनका सब दुख गवाया। तेरा श्री को नाही, जिसनो लवै लाए सुनाया। तू जेवड़ दाता तू है निरंजना, तू है सच मेरा मन पाया। सच्चे मेरे साहेबा, सच्चे सच नाया। सलोक महला चौथा, मन अंतर हम मैं रोग है, प्रम पूले मन मुख दुर्जना। नानक रोग गवाए, मेरे सतगुर साधु सजना। महला चौथा, मन तन रत्ता रंग स्यों, गुरमुख हर गुण तास। जन नानक हर शरणागति, हर मेले गुर साबास। पौड़ी तू करता पुरख या गम है, किस नाल तू वड़ी है। तुद जेवड़ होए सो आखी है, तो जेहा तू है पड़ी है। तू घट घट एक वर्तदा, गुरमुख पर गड़िया। तू सच्चा सब सदा खसम है, सबदू तू चढ़िया। तू करै सो सच्चे होए सी, तां कायत कड़िया। सलोक महला चौथा, मैं मन तन प्रेम प्रम का, अठे पहर लगान। जन नानक कृपा धार प्रभ, सतगुर सुख वसन। महला चौथा, जिन अंदर प्रीत ब्रह्म की, ज्यो बोलन तवै सुहन। नानक हरे आपे जानदा, जिन लाई प्रीत पेरन। पौड़ी तू करता आपा पुल है, पुलन विच नाही। तू करै सो सच्चे भला है, गुरशब्द बुझाही। तू करण कारण समर्थ है, दूजा को नाही। तू साहिब अगम दयाल है, सब तुद ते आही। सब जी तेरे तू सब सदा, तू सब छडाही। सलोक महला चौथा, सुन साजन प्रेम संदेश राय, अखी तार लगन। गुर तुठै सज्जन मिलया, जन नानक सुख सवन। महला चौथा, सत

देखो भाई एहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का, जिने अपने जोर सब आण निवाए, अपने भगतां की रख करे हर स्वामी, निंदका दुष्टां के मोह काले कराए, सतगुर की वड़ियाई निचड़ै सवाई, हर कीर्त भगत नित आप कराए, अंध नाम जपो गुरसिखो, हर करता सतगुर करी वसाए, सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुरसिखो, हर करता आप मोह कढ़ाए, गुरसिखा के मोह जले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार शब्द कराए, जन नानक हर का दास है, हर दासन की हर पैज रखाए, पौड़ी तू सच्चा साहब आप है ससा हमारे, सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रभु वणजारे थारे, सच सेवा सच वणंजल है गुण कथे निरारे, सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे, तू सच्चा साहब अलख है गुर शब्द लखारे, श्लोक महला चौथा, जिस अंदर तात पराई होवै तिसदा कदे ना होवी भला, उस दे आखे है कोई ना लगै नित उजाड़ी पुकारे खला, जिस अंदर चुगली चुगलो वज्जै कीता करत्या उसदा सब गया, नित चुगली करे अनहोंदी पराई मुकट ना सकै उसदा काला भया, कर्म धरती शरीर कलयुग विच जिहा को बीजे तिहा को खाए, गल्लां उपर तपावस ना होई विस खादी तत्काल मर जाए, भाई वेखो न्याओ सच करते का जिहा कोई करे तिहा कोई पाए, जन नानक ओ सब सो जी पाई हर दर किया बातां आख सुनाए, महला चौथा, हुंदे प्रतख गुरु जो विछड़े तनको दर ढोई नाही, कोई जाए मिले तिन निंदका मोह फिके थुक थुक मोह पाई, जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके नित पंबल पूसे खाही, जिन गुर गोप्या अपना से लेंदे टहा फिराही, तिन की भुख कदे ना उतरै नित भुखा भुख कूकाही, ओना दा आख्या को ना सुनै नित हौले हौल मराही, सतगुर की वड्याई वेख ना सकनी ओना अगे पिछे था ओ नाही, जो सतगुर मारे तिन जाए मिलै रहंदी खोंदी सब पत गवाही, ओए अगे कुश्ती गुर के फिटके जे ओस मिलै तिस कुश्ट उठाही, हर तिनका दर्शन ना करो जो दूजे पाए चित लाही, तुर करता आप लिख पाया तिस नाल क्यों चारा नाही, जन नानक ना मारा तू तिस अपड़ को ना सकाही, नावै की वड्याई वड्डी है नित सवाई चढ़े चढ़ाही, महला चौथा, जे होंदे गुरु बैठकिया ते जन की वड्याई वड्डी होई, तिसको जगत निव्या सब पैरी पया, जस वर्तिया लोई तिसको खंड ब्रह्मांड नमस्कार करे, जिसके मस्तक हथ धरिया गुर पूरे सो पूरा होई, गुर की वड्याई नित चढ़ै सवाई अपड़ को ना सकोई, जन नानक हर करता आप बैठकिया आपे पैज रखे प्रभ सोई, पौड़ी काया कोटिया भार है अंदर हट नाले, गुरमुख सौदा जो करे हर वस माले, नाम निदान हर बणजी है हीरे परवाले, विण काया जे होर थै धन खोज दे से मूड़ बिताले, से उजड़ परम पवाई है ज्यो चाड़ मिर्ग पाले, श्लोक महला चौथा, जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग मैं होया, नरक कोर दुखू है ओथे पकड़ ओह टोया, कूक पुकार को ना सुने ओह औखा होए होए रोया, ओन हलत पलत सब गवाया लहा मूल सब खोया, ओह तेली संदा बल्द कर नित भलके उठ प्रभ जोया, हर वेखै सुनै नित सब किश तिदू किश गुजा ना होया, जैसा जैसा बीजै सो लुणै
जेहा पुरब किने बोया जिस कृपा करे प्रभ अपनी ते सतगुर के चरण धोया गुर सतगुर पिछे तर गया जो लोहा काट संगोया जन नानक नाम ते आए तू जप हर हर नाम सुख होया। महला चौथा वड भागिया सोहागणी जिन्ना गुरमुख मिलिया हर राय अंतर जोत परगासिया नानक नाम समाए। पौड़ी एहो शरीर सब धर्म है जिस अंदर सच्चे की विच जोत गोहज रतन विच लुक रहे कोई गुरमुख सेवक कड्डै खोत सब आत्म राम पछाणिया ता एक रविया एको ओत पोत एक देखिया एक मन्या एको सुनिया श्रवण सरोत जन नानक नाम सलाहे तू सच सच्चे सेवा तेरी होत। श्लोक महला चौथा सब रस दिन के हृदय है जिन हर वसिया मन माहे हर दरगह ते मुख उजले तिन कौ सब देखन जाए जिन निरपौ नाम ते आया तिन कौ पौ कोई नाहे हर उत्तम किनी सरेविया जिन कौ तुर लिखिया आहे ते हर दरगह पहनाई है जिन हर वुठा मन माहे ओए आप तरे सब कुटुंब सियों दिन तिन पिछे सब जगत छड़ाहे जन नानक कौ हर मेल जन तिन वेख वेख हम जीवाहे। महला चौथा सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए से जंत पई हरियावले जिन्नी मेरा सतगुर देखिया जाए। तन तन पिता तन तन कुल तन तन सो जननी जिन गुरु जनिया माए तन तन गुरु जिन ना मारा दिया आप तरिया जिनी डिठा तिना ले छाए हर सतगुर मिलो दया कर जन नानक तो वह पाए। पौड़ी सच सच्चा सतगुर अगम है जिस अंदर हरि ओर धारिया सच सच्चा सतगुर पुरख है जिन काम क्रोध बिख मारिया जा डिठा पूरा सतगुरु ता अंदरों मन साधारिया बलिहारी गुरे अपने सदा सदा घुम वारिया गुरमुख जिता मन मुख हारिया। श्लोक महला चौथा कर कृपा सतगुर मेले ओन मुख गुरमुख नाम ते आए सी सो करे जे सतगुर भाव सी गुर पूरा करी वसाए सी जिन अंदर नाम निधान है तिनका पौ सब गवाए सी जिन रखण कौ हर आप होए होर केती चख चख जाए सी जन नानक नाम ते आए तू हर हालत पलत छोड़ाए सी। महला चौथा गुरसिखा कै मन भाव दी गुर सतगुर की वडियाई हर रख पै सतगुरु की नित चढ़ै सवाई गुर सतगुर कै मन पार ब्रह्म है पार ब्रह्म छड़ाई गुर सतगुर तान दी बाण हार तिन सब आण निवाई जिन्नी डिठा मेरा सतगुर पाओ कर तिनके सब पाप गवाई हर दरगह ते मुख उजले बहु शोभा पाई जन नानक मंगै धूड़ तिन जो गुर के सिख मेरे पाई। पौड़ी हौ आख सलाही सिफत सच सच सच्चे की वडियाई सा लाही सच सलाह सच सच कीमत किने ना पाई सच सच्चा रस जिन्नी चखिया से

मंत्र बताय हर रस खाए पौड़ी सच सच्चा कुदरत जानिए दिन राती जिन बनाइया सो सच सलाही सदा सदा सच सच्चे किया वड्याईया सलाही सच सलाह सच सच कीमत कने ना पाईया जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजर नदरी आईया सच गुरमुख जिनी सलाहया तिन्ना भुखा सब गवाईया श्लोक महला चौथा मैं मन तन खोज खोज इंदिया सो प्रभ लद्दा लोड़ विष्ट गुरु मैं पाया।

गुरमुख जापै शब्द लिवलाए, हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए, जो तिस पावै सो करे कराया, नानक वज

फिर सतगुर लगे पाए, सतगुर की गणत कुसी है दुखे दुख विहाए। सतगुर पुरख निर्वैर है आपे ले जिस लाए, नानक दर्शन जिन्ना विखाले ओन तिन्ना दरगे ले छाए। महला तीजा मनमुख अज्ञान दुर्मत अहंकारी, अंतर क्रोध जुवे मतहारी, कूड़क सत ओह।

बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए, नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी। जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास, ओथे सच वर्तदा कूड़े आरा चित उदास, ओए वाल छल।

नाही तन बहुतै डिठै तपै तरम हारिया पाई एहो तपा ना होवी बगला है बैसाध जना विचारिया सतपुरख की तपा निंदा करै संसार की उस्तति विच होवै एत दोखै तपा दईए मारिया महापुरखा की निंदा का वेख जे तपे नो फल लगा सब गया तपे का कालिया बाहर बह पंचा विच तपा सदाए अंदर बह तपा पाप कमाए हर अंदर ला

अमृत नाम निदान है मिल पीवो पाई, जिस सिमरत सुख पाई ऐ सब तिखा बुझाई, कर सेवा पार ब्रह्म गुर भुख रहे ना काई, सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई, तुद जेवड़ तू है पार ब्रह्म नानक शरण आई। श्लोक महला पंजवा, डिठड़ो हबठाए ऊना काई जाए, नानक लद्दा दिन सुवाओ जिन्ना सतगुर भेटिया। महला पंजवा, दामनी चमत्कार त्यों वरतारा जग खे, वत सुहावी साए नानक नाउ जपंदो तिस्तनी पौड़ी, सिमरत शास्त्र सोध सब किने कीम ना जानी, जो जन पेटै साध संग सो हर रंग माणी, सच नाम करता पुरख एह रतना खाणी, मस्तक होवै लिखिया हर सिमर प्राणी, तोसा दिचै सच नाम नानक मेहमानी। श्लोक महला पंजवा, अंतर चिंता नैनी सुखी मूल ना उतरै भुख, नानक सच्चे नाम बिन किसे ना लथो दुख। महला पंजवा, मुठड़े से ही साथ जिन्नी सच ना लद्या, नानक से साबास जिन्नी गुरमल एक पछाणिया पौड़ी, जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा, ओए सेवन समर्थ अपना बिनसै सब मंदा, पत ते उदाहरण पार ब्रह्म संत वेद कहंदा, भगत वच्छल तेरा बिरद है जो जुग वर्तंदा, नानक जाचै एक नाम मन तन पावंदा। श्लोक महला पंजवा, चिड़ी चोहकी पहु फुटी वगन बहुत तरंग, अचरज रूप संतन रचे नानक नामै रंग। महला पंजवा, घर मंदर खुशियां तही जह तू आवे चित, दुनिया किया वड़ियाईया नानक सब को मित पौड़ी, हर तन सच्ची रास है किने विरले जाता, तिसै प्राप्त पाए रहो जिस दे विधाता, मन तन पीतर मौलिया हर रंग जन राता, साध संग गुण गाया सब दुख है खाता, नानक सोई जीविया जिन एक पछाता। श्लोक महला पंजवा, खखड़ियां सोहावियां लगड़ियां अककंठ, ब्रह विछोड़ा तनी सियो नानक सह सह गंठ। महला पंजवा, विसारें दे मर गए मर पे ना सके मूल, वे मुख होए राम ते जो तस्कर उपर सूल पौड़ी, सुखे दान प्रभ एक है अवनासी सुनिया, जलथल मैयल पूरिया घट घट हर भणिया, ऊच नीच सब एक समान कीट हस्ती बनिया, मीत सखा सुत बंद पो सब तिस दे जनिया, तुस नानक देवै जिस नाम तिन हर रंग मणिया। श्लोक महला पंजवा, जिन्ना सास ग्रास ना विसरै, हर नामा मन मंत धन से ही नानका पूर्ण सोई संत। महला पंजवा, अठे पहर पौंदा फिरै खावण संदड़ै सूल, दोजक पौंदा क्यों रहै जा चित ना होए रसूल पौड़ी, तिसै सिरे वो प्राणी हो जिसदै नाउ पल्लै, ऐथै रहो सुहेलिया अगै नाल चलै, घर बंदो सच धर्म का गढ़ थम अहलै, ओट लहो नारायण दीन दुनिया चलै, नानक पकड़े चरण हर तिस दर गै मल्लै। श्लोक महला पंजवा, जाचक मंगै दान देह प्यारिया, देवन हार दातार मैं नित चितारिया, निखुट ना जाई मूल अतुल भंडारिया, नानक शब्द अपार तिन सबके सारिया। महला पंजवा, सिखो शब्द प्यारो जन्म मरण की टेक, मुख उजल सदा सुखी नानक सिमरत एक पौड़ी, ओथ अमृत वंडी है सुखिया हर करने, जम कै पंथ ना पाई है फिर ना ही मरने,
जिसनो आया प्रेम रस तिसै ही जरने, बाणी उचरै साध जन अम्यो चलै चरने, पेख दर्शन नानक जीविया मन अंदर धरने। श्लोक महला पंजवां। सतगुर पूरै सेवै दुखा का होए नास, नानक नाम आराध्य कारज आवै रास। महला पंजवां। जिस सिमरत संकट छुटै आनंद मंगल बिसराम, नानक जपियै सदा हर निमख ना बिसरो नाम। पौड़ी। तिनकी शोभा क्या गणी, जिनी हर हर लद्दा, सादा सरनी जो पवै सो छुटै बद्दा। गुण गावै अबनासीय जोन गर्भ ना दद्दा, गुर भेटिया पार ब्रह्म हर पढ़ बुझ समद्दा। नानक पाया सो धनी हर अगम अगद्दा। श्लोक महला पंजवां। कामना करही अपना फिर अवता लोए, नानक नाए विसारे सुख नेहा होए। महला पंजवां। बिखै कौड़ अतन सगल माहे, जगत रही लपटाए, नानक जन विचारिया मीठा हर का नाउ। पौड़ी। एह निशानी सा

कहो कबीर एक ऐ काहे, साध संगत बैकुंठ आहे। गौड़ी कबीर जी उपजै निपजै निपज समाई, नैना देखत एहो जग जाई। लाज ना मरो कहो कर मेरा, अंत की बार नहीं कष्टेरा रहाओ। अनक जतन कर काया पाली, मरती बार अगन संग जाली। चोवा चंदन मर्दन अंगा, सोतन जलै काठ कै संगा। कहो कबीर सुनो रे गुनिया, बिनसै गो रूप देखै सब दुनिया। गौड़ी कबीर जी अवर मुए क्या सो करी जै, तौ की जै जो अपन जी जै। मैं ना मरो मरबो संसारा, अब मोहे मिलियो है जिया वनहारा रहाओ। आ देही परमल मैं कंदा, ता सुख बिसरे परमानंदा। कुवटा एक पंच पनिहारी, टूटी लाज पर है मतहारी। कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओह कुवटा ना पनिहारी। गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनक जन्म

कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, क्या बस जाओ बिख दे महतारी। गौड़ी कबीर जी बिन सत सती होए कैसे नार, पंडित देखो हृदय विचार। प्रीत बिना कैसे बदा स्नेहो, जब लग रस तब लग नहीं ने हो रहाओ। साहन सत करे जी अपने, सोर मैये को मिले न सुपने। तन मन धन गृहो सौंप शरीर, सोई सुहागन कहे कबीर। गौड़ी कबीर जी बिखिया व्यापिया सगल संसार, बिखिया लै डूबी परिवार। रे नर नाम चौड़ कत बोड़ी, हर स्यो तोड़ बिखिया संग जोड़ी रहाओ। सुर नर दा दे लागी आग, निकट नीर पस पी वसना झाग। चेतत चेतत निकस्यो नीर, सो जल निर्मल कथत कबीर। गौड़ी कबीर जी जेह कुल पूतना ज्ञान बिचारी, विधवा कसना पई महतारी। जह नर राम भगत ने सादी, जन्मत कसना मोह अपराधी रहाओ। मुच मुच गर्भ गए कीन बचिया, बुढ़ पुज रूप जीवे जग मजिया। कहो कबीर जैसे सुंदर स्वरूप, नाम बिना कैसे कुबज करूप। गौड़ी कबीर जी जो जन लेहे खसम का नाओ, तिन कै सद बलिहारे जाओ। सो निर्मल निर्मल हर गुण गावै, सो पाई मेरे मन पावै रहाओ। जेह कट राम रया परपूर, तिनकी पग पंकज हम तूर। जात जुलाहा मत का तीर, सहज सहज गुण रवै कबीर। गौड़ी कबीर जी गगन रसाल चुवै मेरी पाठी, संच महारस तन भया काठी। ओवा को कहिए सहज मतवारा, पीवत राम रस ज्ञान बिचारा रहाओ। सहज कलालन जव मिले आई, आनंद माते अंदर जाई। चीनत चीत निरंजन लाया, कहो कबीर तो अनपव पाया। गौड़ी कबीर जी मन का स्वभाव मने व्यापी, मने मार कवन से थापी। कवन सो मोन जो मन मारे, मन को मार कहो किस तारे रहाओ। मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भगत ना होई। कहो कबीर जो जाने पे ओ, मन मद सूदन त्रिपवन दे ओ। गौड़ी कबीर जी।

सूर्य चंद करै जियारा, समय पसरिया ब्रह्म पसारा, कहो कबीर जानेगा सोए, हृदय राम मुखरा मैं होए। गौड़ी कबीर जी वेद की पुत्री सिमरत पाई, सांकत

हम देखत जिन सब जग लूटिया, कहो कबीर मैं राम कै छूटिया, गौड़ी कबीर जी दे मुहा।

चल रे बैकुंठ तुझे ले तारों, हिचै ता प्रेम कै चाबक माराओं। कहत कबीर भले असवारा, बेदक देवते रह निरारा। गौड़ी कबीर जी जेह मुख पांचो अमृत खाए, तेह मुख देखत लूक टलाए। एक दुख राम राय।

गौड़ी कबीर जी आपे पावके आपे पवना, जारे खसम तारा खै कवना, राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चितरया समाए रहाओ। काको जरे कहे हुए हान, नटवट खेले सारंग पान, कहो कबीर अखर दोए पाख, होएगा खसम ता लेगा राख। गौड़ी कबीर जी दो पदे, ना मैं जोगते

तह तेरा जन भीना, कह कबीर मन पया प्रगासा, उदय पान जब चीना। गौड़ी चेती एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर जस सुने ना हर गुण गावै, बत नहीं असमान गिरावै। ऐसे लोगन स्यो क्या कहिए, जो प्रभ किए भगते बाहजो, तिनते सदा डराने रही है रहाओ। आप ना देहे चुरू पर पानी, तह निंदे जे गंगा यानी। बैठत उठत कुटलता चाल, आप गए और नहूं कहल। छाड़ को चर्चा यान न जाने, ब्रह्मा हूं को कयो न माने। आप गए और नहूं खोवे, आग लगाए मंदिर में सोवे। अवर्ण हस्त आप है काने, तिनको देख कबीर ले जाने। राग गौड़ी बैरागण कबीर जी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जीवत पितर ना माने को, मुए सराद कराही। पितर भी बपरे कहो क्यों पावे, कौआ कूकर खाही। मोको कुशल बतावो कोई, कुशल कुशल करते जग बिनसै, कुशल पी कैसे होई रहाओ। माटी के कर देवी देवा, तिसे आगे जियो देही। ऐसे पितर तुम्हारे कहिए, अपन कया ना लेही। सर जियो काटे निर्जियो पूजे, अंतकाल कौ भारी। राम नाम की गत नहीं जानी, पै डूबे संसारी। देवी देवा पूजे डोले, पार ब्रह्म नहीं जाना। कहत कबीरा कुल नहीं चेतिया, बिखिया सो लपटाना। गौड़ी जीवत मरे मरे फुन जीवे, ऐसे सुन समाया। अंजन माह निरंजन।

लाज बहारी, लाज घड़ी स्यो टूट पड़ी उठ चली पनिहारी। साहेब होए दयाल कृपा करे अपना कार्य सवारे, पांसो हागण जानिए गुरशब्द विचारे। किरत की बांधी सब फिर है देखो बिचारी, एसनो क्यों आखी है क्या करे विचारी। पई निराशी उठ चली चितबंद ना धीरा, हर की चरणी लाग रहो पाए सरन कबीरा। गौड़ी जोगी कह जोग पल मीठा, अवरना दूजा पाई, रुंडत मुंडत एक है सबदी एक है सिद पाई। हर बिन परम पुलाने अंधा, जा पै जाओ आप छुटकावनो ते बांधे बहु फंदा। रहाओ जहते उपजी तही समानी, एह बिद बिसरी तब ही, पंडित गुणी सूर हम दाते एक है बढ़म ही। जिसे बुझाए सोई बूझे, बिन बूझे क्यों रही है, सतगुर मिले अंधेरा चूकै। इन बिद माणक लही है, तज बावे दाहने बेकारा, हर पद दृढ़ कर रही है। कहो कबीर गूंगे गुड़खाया, पूछे ते क्या कही है। हरा गौड़ी पूर्वी कबीर जी एक ओंकार, सतगुर प्रसाद जह कछ आहा तहा किश नाही, पाई तत्त नाही, इड़ा पिंगला सुखमन बंदे ए अवगन कत जाही।

मोको को ना कह समझाई रहाओ। जह बरपंड पिंड तै नाही रचनहार तै नाही, जोड़ नहारो सदा अतीता एक ही है किस्माही। जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटै जब लग हुए बिनासी। काको ठाकर काको सेवक को काहू कह जासी। कहो कबीर लिव लाग रही है जहां बसे दिन राती। ओआ का मरम ओही पर जाने ओ तो सदा अबनासी। गौड़ी सुरत सिमरत दोए कन्नी मुंदा परमित बाहर खिंथा। सुन गुफा मैं आसन बैसन कल्प बिबरजित पंथा। मेरे राजन मैं बैरागी जोगी मर्तना सोग बियोगी रहाओ। खंड ब्रह्मांड मैं सिंगी मेरा बटुआ सब जग पसमा धारी। ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है छूटे हुए पसारी। मन पवन दोए तुम्बा करी है जुग जुग सारद साजी। थिर पई तंती टूट सनाही अनहद किंगरी बाजी। सुन मन मगन पए है पूरे माया डोलन लागी। कहो कबीर ता को पुनरप जन्म नहीं खेल गयो बैरागी। गौड़ी गज नाम गज दस गज इक्कीस पुरिया एक तनाई। साठ सूत नव खंड बहत्तर पाठ लगो अधकाई। गई बनावन माहो कर छोड़िया जाए जुलाहो रहाओ। गज

सावल सुंदर रा मैया मेरा मन लागा तो है राओ। साध मिलै सिद्ध पाई है के ओ जोग के भोग दो मिल कारज उपजै राम नाम संजोग। लोग जानै एहो गीत है एहो तो ब्रह्म विचार ज्यो कासी उपदेश होए मान समर्ति बार। कोई गावै को सुनै हर नामा चित लाए कहो कबीर संसार नहीं अंत परम गत पाए। गौड़ी जेते जतन करत ते डूबे भव सागर नहीं तारे ओरे कर्म तर्म करते बहु संजम अहम बुद्ध मन जारे ओरे। सास ग्रास को दातो ठाकर सो क्यों मनो बिसारे ओरे हीरा लाल अमोल जन्म है कौडी बदले हारे ओरे। रहाओ तृष्णा त्रिखा पूख प्रम लागी हृदय नहीं बिचारे ओरे उन्मत मान हिरयो मन माही गुर का शब्द ना तारे ओरे। स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो मद रस लैत बेकारे ओरे कर्म भाग संतन संगा ने काष्ट लो उधारे ओरे। तावत जोन जन्म भ्रम थाके अब दुख कर हम हारे ओरे कह कबीर गुर मिलत महारस प्रेम भक्त निस्तारे ओरे। गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बौरा रे चलत रचियो जगदीश काम सुआए गज बस परे मन बवा रे अंक सहयो शीस बिखे बाच हर राच समझ मन बौरा रे निरपय होए ना हर भये मन बौरा रे गहयो ना राम जहाज। रहाओ मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे लीनी हाथ पसार छूटन को सहसा परया मन बौरा रे। नाचियो कर कर बार जो नली सुवटा गहयो मन बौरा रे माया यो व्यवहार जैसा रंक सुंभ का मन बौरा रे। त्यो पसरियो पासार नावन कौ तीर्थ कने मन बौरा रे पूजन कौ बहुदेव कहो कबीर छूटन नहीं मन बौरा रे छूटन हर की सेव। गौड़ी अग्न न दह पवन नहीं मगन तस्कर नेर न आवे राम नाम तन कर संचौनी सो तन कत ही ना जावे। हमरा तन माधव गोबिंद तरणी तार एह सार तन कही है जो सुख प्रभ गोविंद की सेवा सो सुख राज न लही है। रहाओ इस तन कारण शिव सनकादक खोजत पए उदासी मन मकांजे बा नारायण परै न जमकी फासी। निज तन ज्ञान भगत गुरदीनी तास सुमत मन लागा जलत अंब थंब मन तावत परम बंधन पौ भागा। कह कबीर मदन के माते हृदय देख बिचारी तुम कर लाख कोट अश्वहस्ती हम कर एक मुरारी। गौड़ी ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की लुप्त ना त्याग दयो जो जो कर्म किए लालच स्यों ते फिर ग्रह परयो भगत बिन बिरथे जन्म गयो। साध संगत भगवान भजन बिन कही ना सच रहयो। रहाओ ज्यो उद्यान कुसुम पर फुलत कने ना कराओ लयो तैसे प्रमता नेक जोन मैं फिर काल हयो। या तन जोबने अरसत दारा पेखन कहो जो दयो तिन्ही माहे अटक जो उर्जे इंद्री प्रेर लयो। औद अनल तन तिनको मंदर चौदे ठाट ठयो कह कबीर पै सागर तरन कहो मैं सदगुर ओट लयो। गौड़ी पानी मैला माटी गोरी इस माटी की पुत्री जोरी मैं नाही कश आहे ना मोरा तन तन सब रस गोबिंद तोरा। रहाओ इस माटी मैं पवन समाया झूठा परपंच जोर चलाया किन्हू लाख पांच की जोरी अंत की बार गगरिया फोरी। कह कबीर एक नीम उसारी खिर मैं बिनस

गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे दीन दयाल परोसे तेरे सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाओ जात सपावै ता हुक्म नावै इस बेड़े को पार लंगावै गुरप्रसाद ऐसी बुद्ध समानी चूक गई फिर आमन जानी कहो कबीर पज सारंग पानी उरवार पार सब एको दानी गौड़ी नामी जोन छाड़ जो जग में आयो लागत पवन खसम बिसरायो जियरा हर के गुना गाओ रहाओ गर्भ जोन में उर्द तप करता तव जठर अग्न में रहता लख चौरासी जोन भ्रम आयो अब के छुटके ठौर न ठायो कहो कबीर पज सारंग पानी आपत दिसै जात ना जानी गौड़ी पूर्वी सुर्ग बासना बांछिया डरिए ना नरक निवास होना है सो होई है मने ना की जय आस रमैया गुण गाइये जाते पाइये परम निधान रहाओ क्या जाप क्या तप संजमो क्या व्रत क्या इशनान जब लग जुगत ना जानिए पाओ भगत भगवान संपै देखना हरखिए बिपत देखना रोए जो संपै त्यों बिपत है बिद ने रचिया सो होए कह कबीर अब जानिया संतन हृदय मझार सेवक सो सेवा भले जेकट बसै मुरार गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं खिंच ले जिन पार बिरख बसेरो पंख को तैसो यो संसार राम रस पिया रे जेह रस बिसर गए रस और रहाओ और मुए क्या रोई है जो आपा थिर ना रहाए जो उपजै सो बिनस है दुख कर रोवै बलाए जह की उपजी तह रची पीवत मर्दन लाग कह कबीर चित चेतिया राम सिमर बैराग राग गौड़ी पंथ निहारे कमनी लोचन परी ले सासा उरना पीजै पगना खिसै हर दर्शन की आसा उडो ना कागा कारे बेग मिली जाए अपने राम प्यारे रहाओ कह कबीर जीवन पद कारणो हर की पद करी जय एक आधार नाम नारायण रसना राम रवि जय राग गौड़ी ग्यारहवीं आस पास कंत तुरसी का बिरवा माज बनारस गाऊ रे ओआ का स्वरूप देख मोही गुआरनो मोको छोट ना आओ ना जाऊ रे तोहे चरण मन लागो सारंग तार सो मिले जो बड़ भागो रहाओ बिंद्रा बान मन हरन मनोहर कृष्ण चरावत गाऊ रे जाका ठाकर तुही सारंग तार मोहे कबीरा नाऊ रे गौड़ी बारहवीं गौड़ी पूर्वी बारहवीं बिपल बस्तर केते है पहरे क्या बन मद्दे बासा कहां पया नर दे

ज्ञानी त्यानी बहुपदेशी एहो जग सगलो तंदा कहे कबीर एक राम नाम बिनु या जग माया अंधा। गौड़ी बारवी मन रे छड़ो परम प्रगट होए नाचो या माया के डांडे सूर के सनमुख रंते डरप सती के साचे पांडे। डगमग छाड़ रे मन बौरा अब तो जरे मरे सद पाई ऐली नोहा संधौरा रहाओ काम क्रोध माया के लीने या बिद जगत बिगूता कह कबीर राजा राम ना छोड़ो सगल ऊते ऊंचा। गौड़ी तेवी फरमान तेरा सिराई ऊपर।

साहेब रोस तरह के प्यार रहाओ, नाम तेरा आधार मेरा ज्यो फूल जई है नार। कह कबीर गुलाम कर का जी आए पावे मार। गौड़ी लख चौरासी जी जोन मैं परमत नंद बौथा कोरे, भगत हेत अवतार लियो है भाग बड़ो बपरा कोरे। तुम जो कहत हो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे। तरन आकाश दसो दिस नाही, तब एहो नंद कहां थोरे रहाओ। संकट नहीं परे जोन नहीं आवे, नाम निरंजन जा कोरे। कबीर को स्वामी ऐसो ठाकर, जाके माई ना बापोरे।

निंदक सो जो निंदा हो रै, हमरा जीवन निंदक लो रै। निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करै उधार। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। राजा राम तू ऐसा निरपो, तरन तारन राम राया रहाओ। जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक पहे है कै, देखत मन पति आही। जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल ना खटाई। कहे कबीर बुद्ध हर ले मेरी, बुद्ध बदली सिद पाई। गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बंदी, बस्त अनूप बीच पाई। कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे, करते बार ना लाई। अब मन जागत रहो रे भाई, गाफल होए कै जन्म गवायो। चोर मुसे कर जाई रहाओ। पंच पहरुआ दर में रहते, तिनका नहीं पतियारा। चेत सुचेत चित होए रहो, तौले प्रगास हो जारा। नौ कर देख जो कामन भूली, बस्ता नूप ना पाई। कहत कबीर नवे कर मूसे, दसवें तत समाई। गौड़ी माई मोहे अवर ना जान्यो अनाना, शिव सनकाद जास गुन गावे, तास बसे मोरे प्राणा ना रहाओ। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मत, गगन मंडल मैं ध्याना ना। बिखै रोग पै बंधन भागे, मन ही कर सुख जाना ना। एक सुमात्रत जान मान प्रभ, दूसर मने ना आना ना। चंदन बास भय मन बासन, त्या कट्यो अभमाना ना। जो जन गाए त्या जस ठाकर, तास प्रभु है थाना ना। तेह बड़ भाग बस्यो मन जाके, कर्म प्रधान मथाना ना। काट सकत शिव सहज प्रगासो, एक है एक समाना ना। कह कबीर गुर भेट महासुख, भ्रमत रहे मन माना ना। राग गौड़ी पूर्वी बाम नखरी, कबीर जियो की एक ओंकार। सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद।

जहां बोल तय अक्षर आवा, जह बोल तय मन न रहावा, बोले बोल मद है सोई, जस ओ है तसलख है ना कोई, अल्लाह लहो तव क्या कहो, कहो ता को पुकार, भटक बीज में रव रहे हो, जाको तीन लोक विस्तार, अल्लाह लहंता भेद शय, कश कश पायो भेद, उल्ट भेद मन भेदे हो, पायो अपंग छेद, तुरक तरीकत जानिए, हिंदू वेद पुराण, मन समझावन कारने, कशवक पढ़िए ज्ञान, ओवंकार याद मैं जाना, लेखियार मेटे ताहे ना माना, ओवंकार लखे जो कोई, सोई लख मेटना ना होई, कक्का किरण कमल मैं पावा, सस बिघास संपट नहीं आवा, अर्जे तहां कुसम रस पावा, अकह कहा कह का समझावा, खखा है खोड़ मन आवा, खोड़े छाड़ न दे जस्तावा, खसम जान खिमा कर रह, ता होए न खियाओ अखै पदल है, गग्गा गुर के बचन पछाना, दूजी बात न तरी काना, रह बेहंगम कते ना जाई, अगे गह गै गगन रहाई, कग्गा काट काट निमसै सोई, काट फूटे काट कवे ना होई, ताँ काट माहे काट जो पावा, सो कट शाड अव कट कत्तावा, गंगा निग्रह स्नेहो कर निर्वारो संदेह, नाही देखना भाजी है परम सियानप एह, चचा रचित चित्र है भारी, ता चित्र है चेतो चितकारी, चित्र बचित्र एह अवचेरा, ता चित्र चित्राक्ष तेरा, छच्छा एह छत्रपत पासा, छक के ना रहो शाड़ के ना आसा, रे मानव मैं तो छिन छिन समझावा, ताहे शाड़ कत्या बधावा, जज्जा जाओ तन जीवत जरावै, जोबन जार जुगत सो पावै, आस जार पार जार जर जब रह, तब जाए जोत उजारो लहै, चज्जा उर्ज सुरज नहीं जाना, रहो चजक नाही परवाना, कत चक चख और न समझावा, चगर किए चगरो ही पावा, नन्या निकट जो घट रहे हो, दूर कहां तज जाए, जा कारण जग ढूंढे आओ, नेराओ पायो ताहे, टटा बिकट काट कट माही, खोल कपाट महल के ना जाही, देख या टल टल कत ना जावा, रह लपट कट पर चौपावा, ठट्ठा एह दूर ठग नीरा, नीठ नीठ मन किया तीरा, जिन ठग ठगया सगल जग खावा, सो ठग ठगया ठौर मन आवा, डड्डा डर उपजे डर जाई, ता डर मह डर या समाई, जाओ डर डर ता फिर डर लागे, निडर हुआ डर और होए भागे, टड्डा टेग टूंडे कत्याना, टूंडत ही टह गए पराना, चढ़ सुमेर टूंड जब आवा, जे गड़ गड़े हो सो गड़ में पावा।

बंदक होए बंद सुध लह, पब्बा पेद पेद मिलावा, आपो पान परोसो आवा, जो बाहर सो पीतर जानिया, पया पेद पुबत पहचानिया, मम्मा मूल गया मन मान, मरमी होए सो मन को जानै, मत कोई मन मिलता बिलमावै, मगन पया ते सो सच पावै, मम्मा मन स्यो काज है, मन सादे सिद्ध होए, मन ही मन स्यो कहे कबीरा, मनसा मिलिया ना कोए, एहो मन शक्ति एहो मन सीओ, एहो मन पंच तत् को जियो, एहो मन ले जाओ उन मन रहे, तो तीन लोक की बात कहे, यैया जाओ जाने तो दुर्मत हानो, कर बस काया गाओ, रण रूतो पाजे नहीं, सूरो थारो नाओ, रारा रस निरस कर जानिया, होए निरस सो रस पहचानिया, एहरा छाडे ओ रस आवा, ओ रस पिया ए रस नहीं पावा, लल्ला ऐसे ले मल्लावे, अंत ना जाए परम सच पावे, आर जाओ तहां प्रेम लेवलावे, तो अलह लह लह चरण समावे, ववा बार बार बिसन सुमार ना आवे हार, बल बल जे बिसन तना जस गावे, विसन मिले सब ही सच।

ससा सोनी का कर सो दो, कट परचा की बात न रो दो, कट परचा जो उपजय पाओ, पूर रया तैंतर भवन राओ, खखा खोज पर जो कोई, जो खोजे सो बहुर ना होई, खोज बूझ जो करे बिचारा, तो पवजल तरत न लावे बारा, ससा सो सहसे सवार सोई सही संदे निवार अल्प सुख छाड़ परम सुख पावा तब एह त्री

है मन माना है तो सही लख जो कोई तब ओही ओहो एहो ना होई। ल्यो ल्यो करत फिर सब लोग ता कारण व्यापै बो सोग। लक्ष्मी बरस्यों जो ल्यो लावै सोग मिटै सब ही सुख पावै। खखा खिरत खपत गए केते खिरत खपत अजू न चेते। अब जग जान जो मना रह जह का बिचरा तह थिर लह। बावन अखर जोरे आन सकिया ना अखर एक पछान। सत का शब्द कबीरा कह पंडित हुए सो अनपै रह। पंडित लोगे कौ व्यवहार ज्ञानवंत कौ तत् विचार। जां कह जी जैसी बुद होई कह कबीर जाने गा सोई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी थिति कबीर जी की। सलोक पंद्रह थिति सात वार कह कबीर उरवार ना पार। साधक सिद्ध लख जो पेओ आपे करता आपे देओ। थिति अमावस में आस निवारो अंतर जामी राम सुमारो। जीवत पावो मोख द्वार अनपो शब्द तत् निजसार। चरण कमल गोबिंद रंग लागा संत प्रसाद भय मन निर्मलो। हर कीर्तन में अंदन जागा रहाओ। परवा प्रीतम करो विचार घट में खेल अकट अपार। काल कल्पना कदे ना खाए आदि पुरख में रह समाए। द्वितीया दोहकर जाने अंग माया ब्रह्म रमै सब संग। ना उबड़े न करता जाए अकुल निरंजन एक पाए। तृतीया तीने सम कर लिया वै आनंद मूल परम पद पावै। साध संगत उपजै विश्वास बाहर पीतर सदा प्रगास।

पंचै पंच तत् विस्तार कनक कामनी जोग व्यवहार प्रेम सुधा रस पीवै कोए जरा मरण दुख फेर ना होए छट खट चक्र शहू दिसताए बिन पर चै नहीं थिरा रहाए दुबदा मेटख मांगै रहो कर्म धर्म की सूल ना सहो सात समकर बाचा जान सात सतकर बाचा जान आत्म राम लिहो प्रवान छूटे संसा मिट जाहे दुख सुन सरोवर पावो सुख अष्टमी अष्ट तात की काया ता मैं कुल महा निदराया गुरगम ज्ञान बतावै भेद उल्टा रह अपंग अछेद नौमी नवै द्वार कौ साध बहती मनसा राखो बांध लो मो सब बिसर जाहो जुग जुग जीवो अमर फल खाहो दसवीं दैदस होए आनंद छूटे परम मिलै गोबिंद ज्योत स्वरूपी तात्यानूप अमल ना मलन शाह नहीं धूप एकादशी एक दिस्तावै तो जोनी संकट बहुर न आवै शीतल निर्मल पया शरीरा दूर बतावो पाया नीरा बारस बारह उगवै सूर अहनिस बाजे अनहद तूर देख्या तिहू लोक का पियो अचरज पया जीव ते सीओ तेरस तेरा अगंब खान अर्ध उर्द बिच सम पहचान नीच ऊच नहीं मान अमान व्यापक राम सगल समान चौदस चौदह लोक मझार रोम रोम में बसै मुरार सासन तो कातरो ध्यान कथनी कथिया ब्रह्म ज्ञान पुन्यो पूरा चंद आकाश पसरे कला सहज प्रगास आदि अंत मद होए रहे आथीर सुख सागर में रमै कबीर एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी वार कबीर जियो के सत बार बार हर के गुण गावो गुरगम पे सो हर का पावो रहाओ आदित करै भगत आरंभ काया मंदर मनसा थंब अहनस अखंड सो रही जाए तो अनहद बेण सहज मह वाए सोमवार सस्य अमृत चरै चाखत बेख सगल बिखहरै बाणी रोकिया रह द्वार तो मनमत वारो पीवनहार मंगलवारे ले माहीत पंच जोर की जाने रीत कर छोड़े बाहर जिन जाए ना तर खरा रिसै है राए बुधवार बुध करै प्रगास हृदय कमल में हर का बास गुरमिल दो एक समतरै उर्द पंक लै सुदा करै बृहस्पत बिखिया दे बिहाए तीन देव एक संग लाए तीन नदी तै त्रिवटी माहे एनस कसमल तो वै नाहे सुकृत सहारै सो एह व्रत चढ़ै अनदिन आप स्यों लड़ै सुरखी पांचो राखै सबै तो दूजी दृष्ट न पैसै कबै थावर थिर कर राखै सोए जोत दी वट्टी कट मैं जोए बाहर पीतर पया प्रगास तब हुआ सगल कर्म का नास जब लग कट मैं दूजी आन तौ तो लो महल न लाभै जान रमत राम स्यों लागो रंग कह कबीर तब निर्मल अंग

राम कहत जन का स्नान तरे रहाओ। तारी ले गन का बिन रूप कुबजा, ब्याद अजा मल तारी ले। चरण बद्धक जन तेउ मुक्त भय, हाँ बल बल जिन राम कहे। दासी सोत जन बिदर सुदामा।

मेरी हरो विपत जन करो सुभाई, चरण ना छाड़ो शरीर कल जाई। कहो रविदास परो तेरी साबा, बेग मिलो जन कर ना बिलंबा। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुखा दो नहीं ते ठाओ। ना तस्वीस खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल।

राग आसा महला पहला कर पहला सोदर तेरा केहा सो कर केहा जित मैं सर्व समाले वाजे तेरे नादा ने का संखा केते तेरे वावन हारे केते तेरे राग परिशो कही है केते तेरे गावन हारे गावन तुदनो पौन पानी बैसंतर गावे राजा धर्म दुआरे गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानो लिख लिख धर्म विचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवतियां दर नाले गावन तुदनो से समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़े रखी सर जुग जुग बेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन स्वर्ग मश पयाले गावन तुदनो रतने उपाय तेरे जेते अठसठ तीर्थ नाले गावन तुदनो जोत महाबल सूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे।

सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहब साचै नाए रहाओ। साचे नाम की तिल वड़ियाई, आग थके कीमत नहीं पाई। जैसा मिलकै आखण पाहे, वड्डा ना होवै काट ना जाए।

क्या देखा सूझ बूझ ना पावे, बिन नावे मंत्र बित ना आवे। जो जन्मे से रोग व्यापे, हमे माया दुख संतापे, से जन बांचे जो प्रभ राखे, सतगुर सेव अमृत रस चाखे। चलतो मन राखे अमृत चाखे, सतगुर सेव अमृत शब्द पाखे। साचे शब्द मुक्त गत पाए, नानक विचों आप गवाए, आसा महला पहला। जो तिन किया सो सच थिया, अमृत नाम सतगुर दिया। हृदय नाम नाही मन भंग, अंध नाल प्यारे संग। हर जियो राखो अपनी सरनाई, गुर प्रसादी हर रस पाया। नाम पदार्थ नवनिध पाई रहाओ, कर्म धर्म

हर वार जिन पाया धन नारी हर सिउ राती शब्द विचारी आप तरै संगत कुल तारै सतगुर सेव तत् विचारै हमरी जात पत सच नाओ कर्म धर्म संजम सत भाओ नानक बख्शे।

एक हर राते रह समाई, एक धरन गगन में ठावर ना पावे, ऐसे कर्महीन हर नाम ना त्यावे। गुर पूरे ते गत मित पाई, एहो संसार बिखवत अत भौजल, गुर शब्दी हर पार लंघाई रहाओ। जिन कौ आप लय प्रमेल, तिन कौ काल न साके पेल, गुरमुख निर्मल रह प्यारे, ज्यो जल अंब ऊपर कमल निरारे। बुरा पला कहो किसनो कहिए, दिसे ब्रह्म गुरमुख सच लहिए, अकथ कथो गुरमत विचार, मिल गुर संगत पावो पार। शास्त्र वेद सिमरत बहु भेद, अठ सठ मजन हर रस रेद, गुरमुख निर्मल मैल ना लागे, नानक हिरदय नाम वड्डे तुर भागे। आसा महला पहला, निम्न उपाय।

मन का अंधला माया का बंद, खीन खराब होवे नित कंद, खान जीवन की बहुती आस, लेख तेरा एहसास गिरास, अहनिस अंधले दीपक दे, पाओ जल डूबत चिंत करे, कह सुने जो माने नाओ, हां बलिहारे ता कह जाओ, नानके करे अरदास, जियो पिंड सब तेरे पास, जा तू देह जपी तेरा नाओ, दरगे बैसन होवे थाओ, जा तुद भावे ता दुम जाए, ज्ञान तन मन वसे आए, नदर करे ता सतगुर मिले, प्रणवत नानक पव जल तरै, आसा महला पहला पंच पदे, दुध बिन तेन पंख बिन पंखी, जल बिन उत्पुज काम नाही, क्या सुल्तान सलाम विहूणा, अंधी कोठी तेरा नाम नाही, की विसरै दुख बहुता लागै, दुख लागै तू विसर नाही, रहाओ अखी अंध जीव रस नाही, कन्नी पवन ना वाजै, चरनी चलै पजूता आगै, विण सेवा फल लागै, अखर बिरख बाग पोए चोखी, संचित पाओ करेही, सबना फल लागै नाम एको, बिन कर्मा कैसे लेही, जेते जीते ते सब तेरे, विण सेवा फल किसे नाही, दुख सुख पाना तेरा होवै, विण नावै जियो रह नाही, मत विच मरण जीवन

काया ब्रह्मा अमन है तोती, ज्ञान जनेऊ त्यान कुस्पाती, हर नामा जजा चो नाओ, गुरप्रसादी ब्रह्म सुमाओ। पांडे ऐसा ब्रह्म विचार, नामे सोच नामे पढ़ाओ, नामे चजाचार रहाओ। बाहर जनेऊ जिचर जोत है नाल, तोती टिक्का नाम संभाल, एथे उथे निभि नाल, विणना में होर कर्म ना पाल। पूजा प्रेम माया प्रजाल, एको वेखो अवरना पाल, चिन्ह तत् गगन दस द्वार, हर मुख पाठ पढ़े विचार। भोजन पाओ परम पाओ भागै, पाहरू राशब चोर ना लागै, तिलक ललाट जाने प्रवेक, बुझे ब्रह्म।

मन्ने हुक्म सो प्रगट जाए, सच निशाने ठाक ना पाए। पंडित पढ़े वखाने वेद, अंतर वस्त न जाने भेद। गुरबन सोजी बूझना होए, साचा रव रह या प्रभ सोए। क्या हो आखा आख वखाणी, तू आपे जाने सर्व विडाणी। नानक एको दर्दी बाण, गुरमुख साच तहां गुदराण। आसा महला पहला, काची गागर दे दोहेली। उपजे बिनसै दुख पाई, एहो जग सागर दुत्तर क्यों तरी है। बिन हर गुर पार ना पाई, तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे। तुझ बिन अवर ना कोई हरे, सरबी रंगी रूपी तू है। तिस बख्शे जिस नदर करे रहाओ, सास बुरी घर वास ना देवे। फिर स्यो मिलना दे बुरी, सखी साजनी के हों चरण सरेवा। हर गुर कृपा ते नदर धरी, आप विचार मार मन देखिया। तुम सामीत ना यवर कोई, ज्यो तू राखै तिवही रहना। दुख सुख देवै करै सोई, आसा मनसा दो बिनास्त। त्रिगुण आस निरास पई, तुरिया अवस्था गुरमुख पाई है। संसवा की ओट लही, ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप। जिस हर हिरदय अलाख्या भेवा, नानक राम नाम मन राता। गुरमत पाए सहज सेवा, आसा महला पहला। पंच पदे मोह कुटुंब मोह सबकार, मोह तुम तजो सगल वेकार। मोह अर भरम तजो तुम वीर, साच नाम हृदय रवै शरीर रहाओ। सच नाम जा नव निध पाई, रोवै पूत न कल्पै माई। एत मोहे डूबा संसार, गुरमुख कोई उतरै पार। एत मोहे फिर जूनी पाहे, मोहे लागा जंपर जाहे। गुर दीखिया ले जब तब कमाहे, ना मोह टूटै ना थाए पाहे। नदर करे ता एहो मोह जाए, नानक हर सिउ रहै समाए। आसा महला पहला, आप करे सच अलाख्या।

एक ना परिया गुण कर पोवा, मेरा सब जग हो निष्परसोवा, इओ क्यों कंत प्यारी होवा, सब जग हो निष्परसोवा। रहाओ आस प्यासी से जयावा, आगे से पावा के ना पावा, क्या जाना क्या होए गारी माई। हार दर्शन बिन रहन ना जाई रहाओ, प्रेम ना चाखिया मेरी तिसना बुझानी, गया सो जो बन तन पछतानी। अजय सो जागो आस प्यासी, पई ले उदासी रहो निरासी रहाओ। हम मैं खोए करे सिंगार, तव कामन से जरवै पतार, तव नानक कंते मन पावे, छोड़ वडाई अपने खसम समावे।

कहत नानक ऐसी मत आवै ताको सच्चे सच समावै आसा महला पहला दो पदे तित सरवरड़ पहिले निवासा पानी पाव कितने किया पंकज मोह पग नहीं चाल हम देखा तह डूबिया ले मन एक ना चेत समूड मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा हो ना हो जति सती नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म पाया प्रणवत नानक तिनकी सरना जिंतु नाही विसरिया आसा महला पहला छे घर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेस अनेक जय कर करते कीर्त होए सो कर राख वडाई तो हे रहाओ विसोए चसिया घड़िया पहरा थिती वारी माहो भया सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेस एको वंकार सतगुर प्रसाद आसा कर तीजा महला पहला लख लस्कर लख वाजे नेजे लख उठ करे सलाम लखा उपर फरमाइश तेरी लख उठ राखे मान जा पत लेखे ना पवे ता सब निरा फलकाम हर के नाम बिना जग तंदा जे बहुता समझाइए भोला पीसो अंदो वंदा रहाओ लख खटिए लख संजिए खाजै लख आवे लख जाहे जा पत लेखे ना पवे ता जी किथे फिर पाहे लख शास्त समझावनी लख पंडित पढ़े पुराण जा पत लेखे ना पवे ता सबे को प्रमाण सच नाम पच उपजै कर्म नाम करतार अहनस हृदय जे वसै नानक नदरी पार आसा महला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओह सोखिया चूका जम स्यों मेल लोका मत को फकड़ पाए लख मड़िया कर एक ठे एक रतीले पाहे रहाओ पिंड पतल मेरी केसो किरिया सच नाम करतार एथे उथे आगे पाचे एहो मेरा आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावे आत्मराओ सच्चा नामन तांथी है जा एनस लागे पाओ एक लोकी होर शमशरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीस का कबू ने खूट सना है आसा कर चौथा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवतियां दर्शन कहताई दुख भूख तीर्थ किए जोगी जति जुगत मैं रहते कर कर पगवे भेख पए तौ कारण साहेबा रंग रते तेरे नामा नेका रूपानंता कहन ना जाही तेरे गुण के ते रहाओ दर कर मैला हस्ती घोड़े छोड़वे लायत देश गए पीर पे कांबर सालक साधक छोड़ी दुनिया थाए पए सात सहज सुख रस कस तजिया ले कापड़ छोड़े चमण लिए दुखिए दर्द वंद दर तेरा नाम रते दरवेश पे

प्रणवै नानक जात कैसी, आसा घर पंजवा महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पीतर पंच गुप्त मन वासे, थिर न रहै जैसे पवै उदासे, मन मेरा दयाल से ती थिर न रहै

एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर छेवां महला पहला। मन मोती जे गहना होवै पौन होवै सूत तारी। खिमा सिंगार कामण तन पहरै रावै लाल प्यारी। लाल बहुगुण कामण मोही तेरे गुण होहे ना अवरी रहाओ। हर हर हर कंठ ले पहरै दामोदर दंत ले। कर कर करता कंगन पहरै इन बिद चित तरेई। मद सूदन कर मुंदरी पहरै परमेसर पट ले। तीरज तड़ी बंधावै कामण श्री रंग सुरमा दे। मन मंदर जे

कराए। ज्ञान रतन सब सोजी होए, गुर प्रसाद ज्ञान बिनासै, अंधन जागै वेखै सच सोए रहाओ। मोह गुमान गुर शब्द जलाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, अंतर महल गुर शब्द पछाणै, आवन जान रहै थिर नाम समाणै। जमण मरना है संसार, मन मुखा चेत।

तू कर कर वेख्या जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा कर दूजा महला चौथा। किस ही तड़ा किया मित्र सुत नाल पाई, किस ही तड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई। किस ही तड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सवाई। हमारा तड़ा हर रया समाई, हम हर स्यों तड़ा किया मेरी हर टेक। मैं हर बिन पख तड़ा अवर ना कोई, हों हर गुण गावा असंख अनेक। रहाओ जिन स्यों तड़े करे से जाहे, झूठ तड़े कर पछोताहे। थिर ना रहे मन खोट कमाहे, हम हर स्यों तड़ा किया जिसका कोई समर्थ ना है। एह सब तड़े माया मोह पसारी, माया कौलू जय गावारी। जन्म मरे जुए बाजी हारी, हमरे हर तड़ा जे हलत पलत सब सवारी। कल युग में तड़े पंच चोर चगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभमान वधाए। जिसनो कृपा करे तिस सत्संग मिलाए, हमरा हर तड़ा जिन एह तड़े सब गवाए। मिथ्या दूजा पाओ तड़े बह पावै, प्राया शिद्र अटकलै अपना अहंकार वधावै। जैसा बीजै तैसा खावै, जन नानका हर तड़ा धर्म सब सृष्टि जिणियावै। आसा महला चौथा, हिरदय सुन सुन मन अमृत पाया। गुरबाणी हर लख लखाया, गुरमुख नाम सुनो मेरी पहना। एको रव रहया कट अंतर, मुख बोलो गुरे अमृत बैना। रहाओ मैं मंतन प्रेम महा बैराग, सतगुर पुरख पाया वड भाग। दूजे पाए पवै बिख माया, भाग ही नहीं सतगुर पाया। अमृत हर रस हर आप पियाया, गुरपूरे नानक हर पाया। आसा महला चौथा, मेरा मन तन प्रेम नाम आधार। नाम जपी नामो सुखसार, नाम जपो मेरे साजन सह।

खेत मनुआ अस्थर बैल मन जो वो हर सिंचव गुरमत जेत जोगी जंगम सृष्ट सब तुमरी जो देहो मती तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जामी हर लावो मनुआ पेल आसा महला चौथा कब को पाले कुंगरू ताला कब को बजावै रबाब आवत जात बार खिन लागे हौ तब लग सुमारो नाम मेरा मन ऐसी भगत बने आई हौ हर बिन खिन पल रह न सको जैसे जल बिन मीन मर जाई रहाओ कब को मेले पंच सत गायन कब को राग तुने उठावै मेलत चुनत खिन पल चसा लागे तब लग मेरा मन राम गुन गावे कब को नाचे पाप पसारे कब को हाथ फसारे हाथ पाप पसारत बिलम तिल लागे तब लग मेरा मन राम सुमारे कब को लोगन को पति आवे लोक पतीने ना पत होए जन नानक हर हृदय सत्य आवो ता जय जय करे सब कोए आसा महला चौथा सतसंगत मिली है हर साधु मिल संगत हर गुण गाए ज्ञान रतन बलिया कड़ चानन अज्ञाना दे राजाए हर जन नाचो हर हर त्याए ऐसे संत मिले मेरे भाई हम जन के तो वह पाए रहाओ हर हर नाम जपो मन मेरे अनदिन हर लिव लाए जो इच्छाओ सोई फल पावो फिर भूख न लग आए आपे हरे परंपर करता हरे आपे बोल बुलाए सही संत भले तुद पावे जिनकी पत पावे थाए नानक आखना राजे हर गुण ज्यो आखे त्यों सुख पाए भगत भंडार दिए हरे अपने गुण गाहक वणज लै जाए एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा कर अठवां राग आसा कर अठवें के काफी महला चौथा आया मरण तो राहो हम मैं रोई है गुरमुख नाम ते आए अस्थिर होई है गुरपुरे साबा।

मैं प्रेम रस पाया, दुर्जन मारे वैरी संघारे, सतगुर मोको हर नाम देवाया रहाओ। प्रथमे त्यागी हम मैं प्रीत, द्वितीया त्यागी लोगा रीत, त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने, तुरिया गुण मिल साध पिछाने, सहज गुफा में

जन नानक बोले ब्रह्म विचार, जो सुने कमावै सो उतरै पार। जन्म ना मरै ना आवै ना जाए, हर सेती ओरै समाए। आसा महला पंजवां, निज भगती सीलवंती नार। रूप अनूप पूरी आचार, जित ग्रह वसै सो ग्रह सोभावंता। गुरमुख पाई किने विरलै जनता, सुकरणी कामन गुरमिल हम पाई। जज काज पर थाए सुहाई रहाओ, जिचर वसी पिता कै साथ। तिचर कंतबो फिरै उदास, कर सेवा सतपुरख मनाया। गुरयाणी घर मैं ता सर्ब सुख पाया। बत्ती सुलखणी सच संतत पूत, आज्ञाकारी सुगण स्वरूप। इच्छ पूरे मन कंत स्वामी, सगल संतोखी देर जेठानी। सब परवार है माहे श्रेष्ठ, मत्ती देवी देवर ज्येष्ठ। धन सो ग्रह हो जित प्रगटी आए, जन नानक सुखे सुख विहाए। आसा महला पंजवां, मता करो सो पकन ना देई। सील संयम कै निकट खलोई, वेस करे बहुरूप दिखावै। गृह बसन ना देई वख वख परमावै। घर की नायक कर वास ना देवै, जतन करो और जाए परे वै रहाओ। तुर की पेजी आई अमर, नौ खंड जीते सब थान थनंतर। तड़ तीर्थ ना छोड़ै जोग सन्यास, पढ़ था के सिमरत वेद अभ्यास। जह बैसा तह नाले बैसै, सगल भवन में सबल परवेसै। होछी शरण पया रहन ना पाई, कहो मीता हों कै पह जाई। सुन उपदेश सतगुर पै आया, गुर हर हर नाम मोहे मंत्र दृढ़ाया। निज कर वसिया गुण गाए अनंता, प्रभ मिलियो नानक पए अचिंता। कर मेरा एह नायक हमारी, एह अमर हम गुर की ए दरबारी। रहाओ दूजा आसा महला पंजवा, प्रथमे मता जे पत्री चलावो। द्वितीये मता दोए मानख पहुंचावो। तृतीये मता किश करो उपाया, मैं सब की छोड़ प्रभ तुही ते आया। महा आनंद अचिंत सहजाया, दुश्मन दूत मोहे सुख पाया। रहाओ सतगुर मौका दियो आ उपदेश, जियो पिंड सब हर का देश। जो किश करी सो तेरा तान, तू मेरी ओर तू है दीवान। तुदनो छोड़ जाइए प्रभ कै तार, आन ना बिया तेरी समसर। तेरे सेवक हो किसकी कान, सगत पूला फरै बेबान। तेरी वड़ियाई कही ना जाए, जह कह राख लह गल लाए। नानक दास तेरी सरनाई, प्रभ राखी पैज वजी वाधाई। आसा महला पंजवा, परदेश चाग सब देखो आया। वस्त अनूप सुनी लाभाया, गुण रास बन पल्लै यानी। देख रतनियो मन लपटानी, सावा पारी द्वारे आए। वखर काडाओ सौदा कराए रहाओ। साहे पठाया साहे पास, अमोल रतनिया मोला रास। विष्ट सो भाई पाया मीत, सौदा मिलिया निश्चल चीत। पौ नहीं तस्कर पौ ना पानी, सहज विहाजी सहज लै जानी। सत कै खटिया दुख नहीं पाया, सही सलामत कर लै आया। मिलिया लाहा पै आनंद, तन सा पूरे बख्शिंद। एहो सौदा गुरमुख किने विर लै पाया, सहली खेप नानक लै आया। आसा महला पंजवा, गुण अवगन मेरो कछ ना बिचारो। नै देखियो रूप रंग सिंगारो, चज आचार किश बिद नहीं जानी। बहा पकर परे से जयानी, सुन बो सखी कंत हमारो। की अलो खसमाना, कर मस्तक धार राख्यो कर अपना। क्या जाने हो लोका जाना। रहाओ
सुहाग हमारो अब हुण सोहयो, कंत मिलियो मेरो सब दुख जोहयो। आंगन मेरा सोभा चंद, निस्बासर प्रे संग आनंद, वस्त्र हमारे रंग चलूल, सगलिया भरण सोभा कंठ फूल, प्रे पेखी दृष्ट पाए सगल निदान, दुष्ट दूकी चूकी कान, सद खुशियां सदा रंग माने, नौ निद नाम ग्रह महे त्रिपताने। कहो नानक जो परै सिंगारी, थिर सुहागन संग पतारी, आसा महला पंजवा। दान दे कर पूजा करना, लैत देत उन मुकर परना, जित दर तुम है ब्राह्मण जाना, तित दर तू ही है पछताना। ऐसे ब्राह्मण डूबे पाई, निरापराध चितवै बुरियाई रहाओ, अंतर लोभ फिरै हलकाए, निंदा करै सिर पार उठाए। माया मूठा चेतै नाही, भरमे पूला बहुती राही, बाहर बेख करै कनेरे, अंतर बिखिया उतरी घेरे, अवर उपदेसै आप ना बूझै, ऐसा ब्राह्मण कही ना सीजै। मूर्ख ब्राह्मण

दुख रोग भय गत तंते, मन निर्मल हर हर गुण गाए, भय आनंद मिल साधु संग, अब मेरा मन कत ही ना जाए। तपत बुझी गुरसब दी माए, बिनस गयो ताप सब सहसा, गुरसीतर मिलियो सह सुभाए रहाओ। तावत रहे एक एक बुझिया, आए बसे अब नहीं चल थाए, जगतो दारण संत तुम्हारे, दर्शन पेखत रहे अगाए, जन्म दोख परे मेरे पछ है।

बिगड़ रूप मन में अभमान, सोहनी स्वरूप सुजान विचखन, अत गर्भ मोहे फाकी तू रहाओ, अत सूची तेरी पाकसाल, कर इशनान पूजा तिलक लाल, गली गर्भ मुख गोवै ज्ञान, सब बिद खोई लोभ सुवान, कापर पहरै पुगै भोग, आचार करै शोभा मै लोग, चोवा चंदन सुगंध विस्तार, संगी खोटा क्रोध चंडाल, अवर जोन

तीन सेर का दिहाड़ी मेहमान, अवर वस्त तुझ पाहे अमान। बिष्टा अस्त रक्त परे टेचाम, इस ऊपरले राख्यो गुमान। एक वस्त बुझे ता होवे पाक, बिन बुझे तू सदा ना पाक। कहो नानक गुर कौ कुरबान, जिसते पाइय हर पुरख सुजान। आसा महला पंजवा, एक तुके चौपदे। एक कड़ी दिनस मोको बहुत दिहारे, माना रह कैसे मिलो प्यारे। एक पल दिनस मोको कवो ना बिहावे, दर्शन की मन आस कनेरी। कोई ऐसा संत मोको परे मिलावे रहाओ। चार पहर चौ जुगे समाने, रहन पई तब अंत ना जाने। पंच दूत मिल परो विछोड़ी, भ्रम भ्रम रोवे हाथ पिछोड़ी। जन नानक हर दर्श दिखाया, आत्म चीन परम सुख पाया। आसा महला पंजवा, हर सेवा मैं परम निधान। हर सेवा मुख अमृत नाम, हर मेरा साथी संग सखाई। दुख सुख सिमरी तह मौजूद, जम बपरा मोको कहां डराई रहाओ। हर मेरी ओट में हर का तान, हर मेरा सखा मन माहे दीबान। हर मेरी पूंजी मेरा हर वेसा हो, गुरमुख तन खट्टी हर मेरा सा हो। गुर कृपा ते एह मत आवे, जन नानक हर कै अंक समावे। आसा महला पंजवा, प्रभ होए कृपालता एहो मन लाई। सतगुर सेव सवै फल पाई, मन क्यों बैराग करेंगा। सतगुर मेरा पूरा, मनसा का दाता सब सुख निधान। अमृत सर

जागे। कहो नानक गुण गाइए नीत, मुख उजल होए निर्मल चीत। आसा महला पंजवां, नौ नित तेरा।

जो तू करे सोई प्रवान, साचे साहिब तेरा सच फुरमान। जा तुद भावे ता हर गुण गाओ, तेरे कर सदा सदा है न्याओ। साचे साहिबा लाखा भेव, नानक लाया लागा सेव। आसा महला पंजवा, निकट जी कै सदही संगा। कुदरत वरत रूप रंगा, करे ना चुरे ना मन रोम नहारा। अवनासी अवगात्या गोचर, सदा सलामत खसम हमारा रहाओ। तेरे दास

बिन हर नाम अवर सब थोरा, तृप्तिया गावै हर दर्शन मन मोरा रहाओ। भगत भंडार गुरबाणी लाल, गावत सुनत कमावत निहाल, चरण कमल स्यो लागो मान, सतगुर तूठे कीनो दान। नानक कौ गुर दीख्या दीन, प्रभ अबनासी घट घट चीन। आसा महला पंजवा, आनंद बिनोद भरे पुर धारिया, अपना कार्ज आप सवारिया। पूर समगरी पूरे ठाकर की, भरपुर धार रही सोभ जा की रहाओ। नाम निधान जा

साथ पूरा गुरपूरी बणत बनाई नानक भगत मिली वड्याई आसा महला पंजवा गुर कै शब्द बनावो इहो मन गुर का दर्शन संचो हर तन ऊतम मत मेरे हृदय तू आओ त्यावो गावो गुण गोविंदा अत प्रीत मोह लागे नाओ रहाओ त्रिपत गावन साचे नाए अठसठ मज्जन संत तू राए सब मैं जानो करता एक साध संगत मिल बुद्ध बबेक दास सगल का छोड़ अभिमान नानक कहो गुर दीनो दान आसा महला पंजवा बुद्ध परगास पई मत पूरी ताते बिरसी दुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई अले बूढ़त घोर अंत।

राम नाम गुण गाए, डाकी कोचित कछूना लागे, चरण कमल शरण आए, संत प्रसाद भय कृपाला, होए आप सहाय, गुण निदानित गावे नानक, सहसा दुख मिटाए। आसा महला पंजवा, औख दिखायो हर को नाओ, सुख पाए दुख बिनसिया थाओ, ताप गया बचन गुरपूरे, अंध पया समटे विसूरे रहाओ, जी जंत सगल सुख पाया, पार ब्रह्म नानक मन ध्याया। आसा महला पंजवा, बांशत नाही सो बेला आई, बिन हुक्मे क्यों बुझै बुझाई, ठंडी ताती मिट्टी खाई, ओहना बाला बूढ़ा पाई, रहाओ नानक दास सा सरनाई, गुरप्रसाद पौ पार पराई। आसा महला पंजवा, सदा सदा आया तुम परगास, सा संगत हर चरण निवास, राम नाम नित जप मन मेरे, शीतल सांस सदा सुख पावै, किल विख जाहे सबे मन तेरे, रहाओ कहो नानक जाके पूर्ण कर्म, सतगुर पेटे पूर्ण पार ब्रह्म, दूजे करके चौतीस। आसा महला पंजवा, जाका हर स्वामी प्रबेली, पीड़ गई फिर नहीं दुहेली, रहाओ कर कृपा चरण संग मेली, सुख सहज आनंद सुहेली, साध संग गुण गाया तोली, हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा महला पंजवा, काम क्रोध माया मत मद सर, ए खेलत सब जुए हारे, सत संतोख दया धर्म सच, ए अपने गृह भीतर वारे, जन्म मरण चुके सब पारे, मिलत संग पयो मन निर्मल, गुरपुर लेखन मैं तारे, रहाओ सब की रेन होए रहे मनुआ, सगले दिसे मीत प्यारे, सब मध्य रव्या मेरा ठाकर, दान दे सब जी सुमारे, एको एक आप एक एक, एक है सगला पा सारे, जप जप होए सगल सा जानो, एक नाम ते आए बहुत उधारे, गहर गंभीर बेअंत गुसाई, अंत नहीं किश पारा वारे, तुमरी कृपा ते गुण गावे नानक, त्याए त्याए प्रभ को नमस्कारे। आसा महला पंजवा, तू बेअंत अवगत या गोचर, एहो सब तेरा आकार, क्या हम जंत करै चतराई, जा सबके तुझै मजार, मेरे सतगुर अपने बालक राखो लीला तार, देह सुमत सदा गुण गावा, मेरे ठाकर अगम अपार, रहाओ जैसे जनन जठर मैं प्राणी, ओरेता नाम आधार, आनंद करे साह सा सुमार, ना पोहै अगनार, पर तन पर दारा पर निंदा, इनसो प्रीत निवार, चरण कमल सेवी रिद अंतर, गुरपूरे कै आधार, गृह मंदिर महला जो दिसै ना कोई संगार, जब

हर आज मिलक जोबन ग्रह शोभा, रूपवंत जोवानी बहुत दर्ब हस्ती अर घोड़े लाल लाख बयानी। आगे दरगह काम न आवे छोड़ चले अभिमानी, काहे एक बिना चित लाई है उठत बैठत सोवत जागत, सदा सदा हर त्याई है रहाओ। महाबचित्र सुंदर।

छोड़ चलिया एक दिहाड़े, कर्म धर्म जुगत बहु करता, करने हार ना जाने, उपदेश करे आप ना कमावे, तत् शब्द ना पछाने। नांगा आयो नांगो जासी, जो हस्ती खा किशाने, संत सज्जन सुनो सामीता, झूठा हो पासारा। मेरी मेरी का कर डूबे, खप खप मोए गवारा, गुरमिल नानक नाम ते आया, साच नाम निस्तारा। राग आसा कर पंजवा महला पंजवा, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। ब्रह्म सोई सगल जगत तंद अंध, को जागे हर जन, महामोहनी मगन प्रे प्रीत प्राण, को त्यागे विरला। चरण कमलिया नूप हर संत मंत, को लागे साधु, नानक साधु संग, जागे ज्ञान रंग, वडभागे कृपा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग आसा कर छेवा महला पंजवा, जो तुद पावे सो परवाना, सुख सहज मन सोई, करण कारण समरथ अपारा, अवर नाही रे कोई। तेरे जन रसक रसक गुण गावै, मसलत मता सियाणप जन की, जो तू करै करावै रहाओ। अमृत नाम तुम्हारा प्यारे, साध संग रस पाया, तृप्त अगाए सही जन पूरे, सुख निदान हर गाया। जा कौ टेक तुम्हारी स्वामी, ता कौ नाही चिंता, जा कौ दया तुम्हारी होई, से सह पले भगवंता। परम मोह त्रोह सब निकसे, जब का दर्शन पाया, वर्तन नाम नानक सच कीना, हर नामे रंग समाया। आसा महला पंजवा, जन्म जन्म की मल तोवे पराई, अपना कीता पावे, इहां सुख नहीं दरगै ढोई, जमपुर जाए पचावे। निंदक अहला जन्म गवाया, पहुंचना साके काहू बाते, आगे ठौर ना पाया रहाओ। किरत पया निंदक बपरे का, क्या ओ करे बिचारा, तहां बिकूता जै कोई ना रखे, ओ किस पे करे पुकारा। निंदक की गत कत हू नाही, खसमै एवे भाणा, जो जो निंद करे संतन की, त्यों संतन सुख माना। संतां टेक तुम्हारी स्वामी, तू संतन का सहाई, कहो नानक संत हर राखे, निंदक दिए रोड़ाई। आसा महला पंजवा, बाहर तोए अंतर मन मैला, दोए ठौरे अपने खोए, इहां काम क्रोध मोहे व्यापिया, आगे मुसमुस रोए। गोविंद भजन की मत है होरा, वर्मी मारी साप न मरे, नाम न सुनई डोरा रहाओ। माया की किरत छोड़ गवाई, भक्ति सार न जाने, वेद शास्त्रन को तरकन लागा, तत् योग न पिछाने। उगर गया जैसा खोटा टबुआ, नदर सराफा आया, अंतर जामी सब किस जाने, उसते कहां छिपाया। कूड़ कपट बंच ने मुनियादा, बिनस गया तत्काले, सत सत सत नानक कहया, अपने हृदय देख समाले। आसा महला पंजवा, उद्यम करत हो वै मन निर्मल, नाचे आप निवारे, पंच जनाले वसगत रखे, मन में एक अंकारे। तेरा जन निरत करे गुण गावे, रबाब पखावज ताल घुंगरू, अनहद शब्द बजावै रहाओ। प्रथमे मन प्रबोधै अपना, पाछै अवर रिझावै, राम नाम जप हृदय जापै, मुखते सगल सुनावै। कर संग साधु चरण पुखारै, संत तूर तन लावै, मन तन अर्प तरे गुरु आगै, सत पदार्थ पावै। जो जो सुने पेखे लाए सरदा, ताका जन्म मरण दुख भागे, ऐसी निरत नरक निवारे, नानक गुरमुख जागे।
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਆਦਮ ਚੰਡਾਲੀ ਪਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ, ਸੂਦੀ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਈ ਰੇ, ਪਾਤਾ ਲਿਆ ਕਾਸੀ ਸਖਨੀ, ਲਹਿਬਰ ਬੂਜੀ ਖਾਈ ਰੇ, ਘਰ ਕੀ ਬਿਲਾਈ ਅਵਰ ਸਿਖਾਈ, ਮੂਸਾ ਦੇਖ ਡਰਾਈ ਰੇ, ਅੱਜ ਕਹਿ ਵਸ ਗੁਰ ਕੀ ਨੋ ਕੇਹਰ, ਕੂਕਰਤ ਨੈ ਲਗਾਈ ਰੇ ਰਹਾਓ। ਬਾਜ ਥੂਨਿਆ ਛਪਰਾ

गोरी। रहाओ काम क्रोध अहंकार गाखरो, संयम कौन छुट्योरी। सुर नर देव असुर त्रै गुनिया, सगलो पवन लुट्योरी। दावा यगन बहुत तृण जाले, कोई हरिया बूट रहे ओरी। ऐसो समरथ वर्ण ना साका, ताकि उपमा जात ना कहे ओरी। काजर कोठ में पई नकारी, निर्मल वर्ण बने ओरी। महामंत्र गुरु हृदय बसेओ, अचरज नाम सुनेओरी। कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन, अपने चरण लगाई। प्रेम भक्त नानक सुख पाया, साधु संग समाई। एको ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा कर सतवा महला पंजवा। लाल चोलना तैं तन सोहया, सुरजन पानी ता मन मोहया। कमन बनीरी तेरी लाली, कमन रंग तू पई गुलाली। रहाओ तुम ही सुंदर तुम्हें सुहाग, तुम कर लालन तुम कर भाग। तू सतवंती तू प्रधान, तू प्रीतम पानी तू ही सुर ज्ञान। प्रीतम पानी ता रंग गुलाल, कहो नानक शुभ दृष्ट निहाल। सुन री सखी ए हमरी काल, प्रभ आप सिंगार सुवर्ण हार। रहाओ दूजा आसा महला पंजवा, दुख कनो जब होते दूर। अब मसलत मोय मिली हदूर, चुका निहोरा सखी सहेरी। भरम गया गुर पिर संग मेरी। रहाओ निकट आन प्रे से तरी, कान कड़न ते छूट परी। मंदिर मेरा सब दो जारा, आनंद बिनोदी खसम हमारा। मस्तक भाग मैं पिर घर आया, थिर सुहाग नानक जन पाया। आसा महला पंजवा, साच नाम मेरा मन लागा। लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा, बाहर सूत सगल स्यो मौला। अलिप्त रहो जैसे जल मैं कौला। रहाओ मुख की बात सगल स्यो करता, जी संग प्रभ अपना तरता। दीस आवत है बहुत पीहाला, सगल चरण की हो मन राला। नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया। आसा महला पंजवा, पावत रलिया जोबन बलिया। नाम बिना माटी संगरलिया, कान कुंडलिया वस्त्र उडलिया। से सुखलिया मन गर्बलिया। रहाओ तले कुंचरिया सिर कनक छतरिया, हर भगत बिनाले तरन गडलिया। रूप सुंदरिया अनक स्त्रिया, हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया। माया शलिया बिकार बिखलिया, शरण नानक परपुरख दयालिया। आसा महला पंजवा, एक बगीचा पेड़ घन करिया। अमृत नाम तहा मैं फलिया, ऐसा करो विचार ज्ञानी। जाते पाईऐ पद निर्बानी, आस पास बिखुआ के कुंटा। बीच अमृत है पाई रे। रहाओ सिंचन हारे एक माली, खबर करत है पात पत डाली। सगल बनस्पत यान जड़ाई, सगली फूली निफल ना काई। अमृत फल नाम जिन गुर ते पाया, नानक दास धरी तिन माया।

सो स्थान बतावो मिता, जाके हर हर कीर्तन नीता रहाओ। शास्त्र वेद पापुन विचार, नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार। ग्रस्त में चिंत उदास अहंकार, कर्म करत जी को जंजार। प्रभ कृपा ते मन वस आया, नानक गुरमुख तरी तिन माया। साध संग हर कीर्तन गाइए, एहो अस्थान गुरु ते पाइए। रहाओ दूजा आसा महला पंजवा, घर में सुख बहर फन सुखा। हर सिमरत सगल बिनासे दुखा, सगल सुख जा तू चित आवै। सो नाम जपै जो जन तुद पावै। रहाओ तन मन शीतल जप नाम तेरा, हर हर जपत तह दुख डेरा। हुक्म बूझै सोई परवान, सास सब जा का निशान। गुर पूरै हर नाम दृढ़ाया, पणत नानक मेरा मन सुख पाया। आसा महला पंजवा, जहां पठावो तै तै जाई। जो तुम देहो सोई सुख पाई, सदा चेरे गोविंद गुसाई। तुमरी कृपा ते तृप्त्या गाई। रहाओ तुमरा दिया पैनो खाई, तो प्रसाद प्रभ सुखी बलाई। मन तन अंतर तुझे ते आई।

हर माला और अंतर धार है, जन्म मरण का दुख निवार है, हृदय संभाले मुख हर हर बोले, सो जन एतुत कत न डोले, कहो नानक जो राचे नाए, हर माला ता कै संग जाए, आसा महला पंजवां, जिसका सब किश तिसका होए, तिस जन लेपना व्यापै कोए, हर का सेवक सद ही मुक्ता, जोगिश करे सोई पल जन कै, अत निर्मल दास की जुगता रहाओ, सगल त्याग हर सरणी आया, तिस जन कहां व्यापै माया, नाम निदान जाके मन माहे, तिसको चिंता सुपने नाहें,

प्रभ की प्रीत पय सकल निदान, प्रभ की प्रीत हृदय निर्मल नाम, प्रभ की प्रीत सदशोभावंत, प्रभ की प्रीत समिटी है चिंत, प्रभ की प्रीत एह पव जल तरै, प्रभ की प्रीत जमते नहीं डरै, प्रभ की प्रीत सगलोधार है, प्रभ की प्रीत चले संगार है, आपो कोई मिले ना भूले, जिस कृपाल तिस साध संग कूले, कहो नानक तेरे कुर्बान, संत ओट प्रभ तेरा तान, आसा महला पंजवा, पूपत होए कै राज कमाया, कर कर अनर्थ बिहाजी माया, संचत संचत थैली कीनी, प्रभ उसते डार अवर कौदीनी, काच गगरिया अंब मझरिया, गर्भ गर्भ उवाहू मैं परिया, रहाओ निरपव होयो भया निहंगा, चीतना आयो करता संगा, लश्कर जोड़े किया संबाहा, निकस्या फूकता होए गयो सुवाहा, ऊचे मंदर महल अरानी, हस्त घोड़े जोड़े मन पानी, वड परवार पूत अरतिया, मोहे पचे पच अंधा मुआ, जिने उपाहा तिने बिनाहा, रंगरसा जैसे सुपनाहा, सोई मुक्ता तिस राजमाल, नानक दास जिस खसम दयाल, आसा महला पंजवा, इनस्यों प्रीत करी कनेरी, जो मिलिए तो वदै वधेरी, गल चमड़ी जो छोड़ै नाही, लाग छटो सतगुर की पाई, जग मोहनी हम त्याग गवाई, निर्गुण मिलियो वजी वधाई, रहाओ ऐसी सुंदर मन कौ मोह, बाट काट करे बन बन जो है, मन तन लागे हुए कै मीठी, गुरप्रसाद में खोटी डीठी, अगर उसके वड़े ठगाऊ, छोड़े नाही बाप ना माऊ, मेली अपने उनले बांधे, गुर कृपा ते मैं सगले साधे, अब मोरे मन पया आनंद, पहु चूका टूटे सब फंद, कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया, आसा महला पंजवा, आठ पहर निकट कर जाने, प्रभ का किया मीठा माने, एक नाम संतन आधार, होए रहे सब की पगशार, संत रहत सुनो मेरे भाई, ओवा की महिमा कथन ना जाई, रहाओ वर्तन जा कह केवल नाम, अनद रूप कीर्तन विश्राम, मित्र सत्र जा कह एक समान, प्रभ अपने बिन अवर ना जाने, कोट कोट अग कट नहारा, दुख दूर करन जी के दातारा, सूर बीर बचन के बली, कौला बपरी संती शली, ताका संग बांछे सुरदेव, अमोग दर्श सफल जा की सेव, कर जोड़ नानक करे अरदास, मोहे संत है टहल दीजे गुणतास, आसा महला पंजवा, सगल सुख जप एक नाम, सगल धर्म हर के गुणगाम, महापवित्र साध का संग, जिस पेड़त लागे प्रभ रंग, गुर प्रसाद ओए आनंद पावे, जिस मृत मन होए परगासा, ताकि गत में तो कहन ना जावे, रहाओ वर्त नेम मज्जन तिस पूजा, वेद पुराण तिन सिमरत सुनीजा, महापुनीत जाका निर्मल थान, साध संगत जाके हर हर नाम, प्रगट्यो सो जन सगले भवन, पतत पुनीत ताकि पगरेन, जाको पेट्यो हर हर राय, ताकि गत में तो कथन ना जाए, आठ पहर कर जोड़ते आवाओ, उन साधा का दर्शन पावाओ, मोहे गरीब को लेहोर लाए, नानक आए पै सरनाए, आसा महला पंजवा, आठ पहर उदके सुनानी, सद ही भोग लगाए सुगयानी,
ਬਿਰਥਾ ਕਾਹੂ ਛੋਡੈ ਨਾਹੀ, ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਤਿਸ ਲਾਗੈ ਪਾਈ। ਸਾਲ ਗਿਰਾਮ ਹਮਾਰੇ।

का सदा बैकुंठ, जहां का चवर सब ऊपर झूलै, ता का धूप सदा प्रफुलै। काट काट संपट है रे जा का, अपग सभा संग है सादा। आरती कीर्तन सदा आनंद, महिमा सुंदर सदा बेअंत। जिसे प्राप्त तिस ही लहना, संत चरण ओ आयो सरना। हाथ चढ़ो हर साल गे राम, कहो नानक गुर की नो दान। आसा महला पंजवा पंच पदा, जेह पेंड है लूटी परिहारी, सो मार्ग संतन दूरारी। सतगुर पूरे साच कहया, नाम तेरे की मुक्ते बिथी। जम का मार्ग दूर रहया रहाओ, जह लालच जागाती काट। दूर रहियो जनते बाट, जह आवटे बहुत घन साथ। पार ब्रह्म के संगी साध, चित्र गुबत सब लिखते लिखा। भगत जना कौ दृष्ट ना पेखा, कौ नानक जे सतगुर पूरा। वाजे ता कै अरहद तूरा, आसा महला पंजवा दो पदा। साधु संग सिखायो नाम, सर्ब मनोरथ पूर्ण काम। बुझ गई तृष्णा हर जसे अगाने, जब जब जीवा सारंग पाने। करन करावन सरन परया, गुर प्रसाद सहज कर पाया। मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाओ, लाल जवेहर भरे भंडार। तोट ना आवै जप निरंकार, अमृत शब्द पीवै जन कोए। नानक ता की परम गत होए, आसा कर सतवा महला पंजवा। हर का नाम हृदय नित ध्याई, संगी साथी सगल तराई। गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर ते सदा समाले रहाओ। तेरा किया मीठा लागै, हर नाम पदार्थ नानक मांगै। आसा महला पंजवा, साधु संगत तरिया संसार। हर का नाम मन आधार, चरण कमल गुरदेव प्यारे। पूजै संत हर प्रीत प्यारे रहाओ, जा कै मस्तक लिखिया भाग। कहो नानक ता का थिर सोहाग,

की तप्त हरि पलो पयो प्रे कहया मान्या सुख सहज इस घर का जानिया रहाओ। हौ बंदी प्रे खिजमतदार ओह अवनासी अगम अपार ले पखा प्रे चलो पाए पा गए पंच दूत लावे। ना मैं कुल ना सोभावंत क्या जाना क्यों पानी कंत मोहे अनी मोहे अनाथ गरीब ने मानी कंत पकर हम कीनी रानी। जब मुख प्रीतम साजन लागा सुख सहज मेरा तन सोहागा कहो नानक मोरी पूर्ण आसा सतगुर मेली प्रभ गुणतासा।

उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे भाई रहाओ। पाए ठगौली सब जग जोहया ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया गुरमुख नाम लगे से सोहया। वर्त नेम कर थाके पुनः चरना तट तीर्थ पवे सब तरना से उबरे जे सतगुर की सरना। माया मोहे सबो जग बादा हमें पचय मनमुख मूह राखा गुरु नानक बहा पकड़ हम राखा। आसा महला पंजवा सर्व दुख जब बिसरै स्वामी इहा उहा कामना प्राणी। संत तृप्तासे हर हर त्याए कर कृपा अपने नाए लाए सर्व सुख प्रभ तुमरी रिजाए रहाओ। संग होवत कौ जानत दूर सो जन मरता नित नित चूर जिन सब किश दिया तिस चितवत नाहे महा बिख्या मैं दिन रहन जाहे। कहो नानक प्रभ सिमरो एक गत पाई है गुर पूरे टेक। आसा महला पंजवा नाम जपत मन तन सब हरिया कल मल दोग सगल पर हरिया। सोई दिवस भला मेरे भाई हर गुण गाए परम गत पाई रहाओ। सा जन के पूजे पैर मिटे उपद्रय मन ते बैर गुर पूरे मिल झगड़ चुकाया पंच दूत सब वसगत आया। जिस मन वसया हर का नाम नानक ते सुपर कुर्बान। आसा महला पंजवा गाव लेहे तू गावन हारे जी पिंड के प्राण आधारे। जा की सेवा सर्व सुख पावे अवर काहू पह भौ ना जावे। सदा आनंद आनंदी साहेब गुण निधान नित नित जापिए बलिहारी ते संत प्यारे। जिस प्रसाद ब्रह्मन वासिए रहाओ। जा का दान निखूटे नाही भली भांत सब सह समाही। जा की बख्शना मेटे कोई मनवा साइय साचा सोई। सगल समग्री ग्रह जा कै पूर्ण प्रभ के सेवक दुख ना चूर्ण। ओट गही निरपौ पद पाई है सास सास सो गुणित गाई है। दूर ना होई कतहू जाई है नजर करे ता हर हर पाई है। अरदास करी पूरे गुरपास नानक मंगे हर तन रास। आसा महला पंजवा प्रथमे मिटिया तन का दुख मन सल का होवा सुख। कर कृपा गुर दीनो नाओ बल बल ते सतगुर को जाओ। गुर पूरा पायो मेरे भाई रोग सोग सब दुख विनाशे सतगुर की शरणाई रहाओ। गुर के चरण हृदय वसाए मन चिंतत सगले फल पाए। अग्न बुझी सब

मान बंधन काटो सेवक कर, बंधन काटो सेवक कर राखे, अमृत बानी रसना चाखे। वडे भाग पूज गुर चरना, सगल त्याग पाई प्रभ सरना। गुर नानक जाको भया दयाला, सोजन हो वासदा निहाला। आसा महला पंजवा, सतगुर सच

चतराई सियाण पाक तै कामना आई है, तुठा साहेब जो देवै सोई सुख पाई है। जे लख कर्म कमाई है किश पवै ना बंदा, जन नानक कीता नाम धर होर छोड़िया धंदा। आसा महला पंजवां, सर्व सुखा मैं पालिया हर जेवड़ ना कोई, गुर तुठे ते पाई है सा साहब सोई। बलिहारी गुर अपने सा सतकुरबाना, नाम ना विसरो एक खिन चसा, एहो की जैदाना रहाओ। पागट सच्चा सोए है जिस हर धन अंतर, सो छूटे महाजाल ते जिस गुर शब्द निरंतर। गुर की महिमा क्या कहा, गुर बिबेक सत सार, ओह आदि जुगादि जुगह जुग पूरा परमेसर। नाम ते आवो सद सदा, हर हर मन रंगे, जियो प्राण धन गुरु है नानक कै संगे। आसा महला पंजवां, साई अलख्या पार पोरी मन वसै, दुख दर्द रोग माए मैंडा हब नसै। हाउ वन्या कुर्बान साई अपने, होवे अंध घणा मन तन जापने रहाओ। बिंदक गाल सुनी सच्चे तिस धणी, सुखी हूं सुख पाए माए ना कीम गणी। नैण पसंदो सोए पेख मुस्ताक पई, मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई। बेदक तेव संसार

तेरी टेक गोविंद गोपाल दयाल प्रभ, तू सबना के नाथ तेरी सृष्ट सब रहाओ। सदा सहाई संत पेखे सदा हजूर, नाम बिहुनड़िया से मरण में सूर विसूर। दास दास तन पाए मिटिया तिना गौण, विसरिया जिन्ना नाम तिनाड़ा हाल कौन। जैसे पास

आओ जेते खंड ब्रह्मांड उधारे तिन खे जिन मन उठा आप पूरे भगत से जिसनो मन्ने आप सोई मानिए प्रगट पुरख प्रवान सब ठाई जानिए जिन सरैण आराध संभाले साहसाह नानक की लोचा पूर सचे पातशाह आसा महला पंजवा पूर रया सर्व ठाए हमारा खसम सोए एक साहेब सर छत दूजा नाहे कोए ज्यो पावे त्यों राख राखण हारिया तुझ बिन अवर ना कोए नदर निहारिया रहाओ प्रतपाले प्रभ आप कड़कड़ सारी है जिस मन उठा आप तिस ना विसारी है जो किश करे सो आप अपन भाणिया भगतां का सहाई जुग जुग जाणिया जप जप हर का नाम कदे ना झूरिऐ नानक दर्श प्यास लोचा पूरी है आसा महला पंजवा क्या सोवै नाम विसार गाफल गहलिया कीती इत दरियाए वंजन महिंदिया बोहे थड़ा हर चरण मन चढ़ लंगी है आठ पहर गुण गाए साधु संगी है रहाओ भोगे भोग अनेक विणना मैं सुनिया हर की भगत बिना मर मर रुनिया कपड़ भोग सुगंध तन मर्दन मालना बिन सिमरन तन शार सर पर चलना महाबिखम संसार विरले पेखिया छूटन हर की शरण लेख नानक लेखिया आसा महला पंजवा कोई न किसी ही संग काहे गरबी है एक नाम आधार पौजल दरबी है मैं गरीब सच टेक तू मेरे सतगुर पूरे देख तुम्हारा दर्शनो मेरा मन धीरे रहाओ राज माल जंजाल काज ना किते गनो हर कीर्तन आधार निहचल एहो तनो जेते माया रंग तेत पछावया सुख का नाम निदान गुरमुख गावया सच्चा गुणी निदान तू प्रभ गहर गंभीरे आस भरोसा खसम का नानक के जी हरे आसा महला पंजवा जिस मृत दुख जाए सह सुख पाई है रैन दिनस कर जोड़ हर हर त्याई है नानक का प्रभ सोए जिसका सब कोए सर्व रहया भरपूर सच्चा सच सोए रहाओ अंतर बाहर संग सहाई ज्ञान योग तिसे अराध मना विनाशै सगल रोग राखन हारिया पार राखै अगन माहे शीतल हर हर नाम सिमरत तप्त जाए सुख सहज आनंद घना नानक जन तूरा कार्ज सगले सिद्ध पए भेटिया गुरपूरा आसा महला पंजवा गोबिंद गुणी निधान गुरमुख जानिए होए कृपाल दयाल हर रंग माणिए आवो संत मिला हर कथा कहानियां अंदर सिमरो नाम तजलाज लुकानियां रहाओ जप जप जीवा नाम होवे अनद कणा मिथ्या मोह संसार झूठा विणसना चरण कमल संग ने हो किने विरले लाया तन सुहावा मुख जिन हर त्याया जन्म मरण दुख काल सिमरत मिट जावई नानक कै सुख सोए जो प्रभ पावई आसा महला पंजवा आवहो मीत एकत्र होए रस कस सब पुंच है अमृत नाम हर हर जप है मिल पापा मुंच है तत विचारो संत जनो ताते बिघन ना लागे खीन पए सब तस्करा गुरमुख जन जागे रहाओ।
ਬੁੱਧ ਗਰੀਬੀ ਖਰਚ ਲੈ ਹੋ ਹਉ ਮੈਂ ਬਿਖਜਾਰੋ ਸਾਚਾ ਹਟ।

दुर्मत मद जो पीवते बिखली पत कमली, राम रसायन जो रते नानक सच अमली। आसा महला पंजवा, उद्यम किया कराया आरंभ रचाया, नाम जपे जब जीवना गुरमंत्र दृढ़ाया। पाए परे सतगुरु कै जिन भरम बेदारिया, कर कृपा प्रभ अपनी सच सच सवारिया रहाओ। कर गहलीने अपने सच हुक्म रजाई, जो प्रभ दित्ती दात सा पूर्ण वड्याई। सदा सदा गुण गाई है जप नाम मुरारी, नेम निभायो सतगुरु प्रभ कृपा तारी। नाम तान गुण गाओ लाभ पूरे गुर दिता, वण जारे संत नानका प्रभ साहो अमिता। आसा महला पंजवा, जा का ठाकर तुही प्रभ ताके वड पागा, ओह सुहेला सद सुखी सब भ्रम पौ भागा। हम चाकर गोबिंद के ठाकुर मेरा पारा, करन करावन सगल बिद सो सदगुरु हमारा रहाओ। दूजा नाही और को ताका पौ करिए, गुर सेवा महल पाइए जगद उत्तर तरिए। दृष्ट तेरी सुख पाइए मन माहे निधाना, जा कौ तुम कृपाल पए सेवक से परवाना। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, वजो नानक मिले एक नाम रिद जप जप जीवे। आसा महला पंजवा, जा प्रभ की हों चेरली सो सब ते ऊंचा, सब की ताका कांडिये थोरा यार मुचा। जी प्राण मेरा तनो साहिब की मनिया, नाम जिसे कह उजली तिस दासी गनिये रहाओ। वे प्रवाहो आनंद में नाओ माणक हीरा, रजी ताई सदा सुख जाका तू मीरा। सखी सहेरी संग की सुमत दृढ़ावो, सेवो साधु पाओ कर तो निधर पावो। सगली दासी ठाकरे सब कहती मेरा, जिसे सिंगारे नानका तिस सुख है बसेरा। आसा महला पंजवा, संतां की होए दासरी एहो अचारा सिखरी, सगल गुणा गुणी उत्तमो परता दूर ना पिखरी। एहो मन सुंदर अपना हर नाम जीठे रंगरी, त्याग स्याण पचातरी तू जान गोपाल है संगरी रहाओ। परता कहे सो मानिए एहो सिंगार बनायरी, दूजा पाव विसारिए एहो तंबोला खायरी। गुर का शब्द कर दीप को एह सत की सेज बिशायरी, आठ पहर कर जोड़ रहो तौ पेटे हर रायरी। तिस ही चज सिंगार सब साई रूप अपार री, साई सुहागण नानका जो पानी करतार री। आसा महला पंजवा, डीगन डोला तउ लो जौ मन के परमा, प्रम काटे गुरे अपने पाए बिश्रामा। ओए बिखादी दोखिया ते गुरदे हूटे, हम छूटे अब उना ते ओए हम ते छूटे रहाओ। मेरा तेरा जानता तब ही ते बंदा, गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा। जब लग हुक्म ना बूझता तब ही लव दुखिया, गुर मिल हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया। ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा, गुर की सेवा सेव को नानक खसमै बंदा। आसा महला पंजवा, सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ, गृह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ। बलिहारी गुरे अपने सत सत बल जाओ, गुरु विटा हो वारिया जिस मिल सच सुवाओ रहाओ। सगन अप सगन तिस कौ लग है जिस जीत ना आवै,
तिस जम नेड़ न आवई जो हर प्रभु पावै। पुन दान जप तब जेते सब उपर नाम, हर हर रसना जो जपै तिस पूर्ण काम। पै बिन से प्रम मोह गए को दिसै ना बिया, नानक राखे पार ब्रह्म फिर दुख ना थिया। आसा करनावा महला पंजवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद चितवो चितव सर्व सुख पावो, आगे पावो के ना पावो। एक दा तार सगल है जाचक, दूसर कह पह जावो। हाँ मांगो आन ल जावो, सगल छत्रपत एको ठाकर, कौन समसर लावो रहाओ। उठो बैसो रह पे ना सको, दर्शन खोज खोजावो। ब्रह्मादिक सनकादिक सनक सनंदन सनातन संत कुमार, तिनको महल दुलभावो। अगमय अगमय अगाध बोध, कीमत परे ना पावो। ताकि शरण सतपुरख की, सतगुर पुरख ते आवो। भयो कृपाल दयाल प्रभ ठाकुर, काट्यो बंद गरावो। कहो नानक जो साध संग पावो, कहो नानक जो साध संग पायो, तो फिर जन्म ना आवो। आसा महला पंजवा, अंतर गावो बाहर गावो, गावो जाग सवारी। संग चलन कौ तोसा दीना, गोविंद नाम के व्यवहारी। अवर बिसारी बिसारी ना

खोजत खोजत खोज बिचारियो तत नानक हो जाना रे सिमरत नाम निधान निर्मोलक मन मानक पतियाना रे। आसा महला पंजवां दो पदे गुर प्रसाद मेरा मन वसिया जो मांगो सो पावो रे नाम रंग एह मंत्र पताना बहुर नकत हूं तावो रे। हमरा ठाकर सब ते ऊंचा रहन दिन सो तिस गावो रे खिन मैं थापो थापन हारा तिसते तुझे डरावो रे रहाओ। जब देखो प्रभ अपना स्वामी तो अवरै चीत ना पावो रे नानक दास प्रभया पहराया प्रंपो मेट लिखावो रे। आसा महला पंजवा चार बरन चौहा के मर्दनो खड़ दर्शन कर तली रे सुंदर सुगर स्वरूप सियाने पंचो ही मोय शली रे। जिन मिल मारे पंच सूर बीर ऐसो कौन बली रे जिन पंच मार बिदार गुदारे सो पूरा ए कली रे रहाओ। वडी कौम वस भागै नाही मोहकम फौजा ठली रे कहो नानक तिन जन निर्दलिया साध संगत कै चली रे। आसा महला पंजवा नीकी जी की हर कथा उत्तम आन सगल रस फीकी रे रहाओ। बहुगुण धुन मुन जन खट बेते अवर ना किश लायकी रे बिखारी निरारी अपारी सहजारी साध संग नानक पीकी रे। आसा महला पंजवा हमारी प्यारी अमृत तारी गुर निमख ना मन ते टारी रे रहाओ। दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे खिन राम गुरगम हर दम नह जम हर कंठ नानक उरहारी रे। आसा महला पंजवा नीकी सा संगानी रहाओ। पहर मूर्त पल गावत गावत गोविंद गोविंद बखानी चालत बैस्त सोबत हर जस मंतन चरण खटानी। हौ हौ रो तू ठाकर गौरो नानक सरन पछानी राग आसा महला पंजवा घर बारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। त्याग सगल सियान पा भज पार ब्रह्म निरंकार एक साचे नाम बाजो सगल दिसै शार। सो प्रभ जानिए सद संग गुर प्रसादी बुझिए एक हर कै रंग रहाओ। सरन समराथ एक केरी दूजा नाही ठाओ महापौजल लंगी है सदा हर गुण गाओ। जन्म मरण निवारी है दुख ना जम पर होए नाम निदान सोई पाए कृपा करे प्रभ सोए। एक टेक आधार एको एक का मन जोर नानक जपिए मिल साध संगत हर बिने अवर ना होर। आसा महला पंजवा जियो मंतन प्राण प्रभ के दिए सब रस भोग दीन बंदप जी दाता शरण रखन जोग। मेरे मन त्याए हर हर नाओ हलत पलत सहाय संगे एक स्यों लिवलाओ रहाओ। वेद शास्त्र जनते आवे तरण कौ संसार कर्म धर्म अनेक किरिया सभी ऊपर नाम आचार। काम क्रोध अहंकार बिनसै मिले सतगुर देव नाम दृढ़ कर भगत हर की भली प्रभ की सेव। चरण शरण दयाल तेरी तू निमाने मान जी प्राण आधार तेरा नानक का प्रभतान। आसा महला पंजवा डोल डोल महा दुख पाया बिना साधु संग खाट लाभ गोबिंद हर रस पार ब्रह्म एक रंग हर को नाम जपिए नीत। सास सास त्याए सो प्रभ त्याग अवर प्रीत रहाओ। करण कारण समर्थ सो प्रभ जी दाता आप त्याग सगल सियाण पा आठ पहर प्रभ जाप। मीत सखा सहाय संगी ऊच अगम अपार चरण कमल बसाए हृदय जी को आधार। कर कृपा प्रभ पार ब्रह्म
गुण तेरा जस गाओ, सर्व सुख बड़ी वड़ियाई, जप जीवै नानक नाओ। आसा महला पंजवा, उद्यम करो करावो ठाकरो, पेखत साधु संग, हर हर नाम चिरावो रंगन, आपे ही प्रभ रंग। मन में राम नामा जाप, कर कृपा वसो मेरे हृदय, होए सहाई आप रहाओ। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम, प्रभ पेखन का चाओ। दया करो किरम अपने को, यह मनोरथ सुहाओ। तन तन तेरा तू प्रभ मेरा, हमरे वस किश नाहे, ज्यों ज्यों राखे त्यों त्यों रहना, तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किलविख काटे, मज्जन हर जन तूर, पाए भगत परम पव नासै, हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवा, अगमे गोचर दर्स तेरा, सो पाए जिस मस्तक भाग, आप किरपाल किरपा प्रभ धारी, सतगुर बख्शिया हर नाम। कल युग उधारिया गुरदेव, मल मूत मूड़ जे मुग्ध होते, सब लगे तेरी सेव रहाओ। तू आप करता सब सृष्ट तरता, सब मैरिया समाए, धर्म राजा बिस्माद होवा, सब पई पैरी आए। सतयुग त्रेता द्वापर पणिया, कल युग ऊतमो जुगा माहे, अह कर करे सो वह कर पाए, कोई ना पकड़िया किसै थाए। हर जियो सोई करे, जे भगत तेरे जाचे, एहो तेरा बिरद कर जोड़, नानक दान मांगे, अपने संतां देह हर दर्स। राग आसा महला पंजवा, कर तेरवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सतगुर बचन तुम्हारे, निर्गुण निस्तारे रहाओ। महा बिखादी दुष्ट अपवादी, ते पुनी संगारे, नरक पवंते नरक पड़ंते, तिनके कोले उदारे, कोय न जाने कोय न माने, से प्रगट हर द्वारे, कवन उपमा देव कवन वडाई, नानक खिन खिन वारे। आसा महला पंजवा, बावर सोए रहे रहाओ, मोह कुटंब बिखै रस माते, मिथ्या गहन गहे, मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास, मन मुख सत कहे, अमृत नाम पदार्थ संगे, तिल मर्म ना लहे। कर कृपा राखे सत संगे, नानक शरण आहे।

नै ना नहीं राजन भागन हुक्म ना साधन किश किश ना चाही चरणन सरणन संतन बंदन सुखो सुख पाही नानक तप्त हरी मिले प्रेम प्री आसा महला पंजवा गुरै दिखायो लोए ना रहाओ इते उते कट कट कट कट तू ही मोहेना कारण करना तारण तरना एक है सोहेना संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोएना आसा महला पंजवा हर हर नामया मोला ओहो सह सोहेला रहाओ संग सहाई छोड़ ना जाई ओहो अगे अतोला प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओला अलख लखाया गुरते पाया नानक एहो हर का चोला आसा महला पंजवा अपनी भगत ने बाहे ठाकर आयो आहे रहाओ नाम पदार्थ होए सकार्थ हृदय चरण बसाहे एह मुक्ता एह जुगता राखो संत सगाहे नाम ते आवाओ सह समावाओ नानक हर गुण गाहे आसा महला पंजवा ठाकर चरण सुहावे हर संतन पावे रहाओ आप गवाया सेवक माया गुण रस रस गावे एक आसा दर्स प्यासा या ना पावे दया तुहारी क्या जंत विचारी नानक बल बल जावे आसा महला पंजवा एक सिमर मन माही रहाओ नाम ते अवर दै बसावो तिस बिन को नाही प्रभ सरणी आईय सरफल पाईय सगले दुख जाही जियन को दाता पुरख विदाता नानक कटकट आही आसा महला पंजवा हर बिसरत सो मुआ रहाओ नाम ते आवै सर्व फल पावै सो जन सुखिया हुआ राज कहावै हो कर्म कमावै बांध्यो नली परम सुआ कहो नानक जे सतगुर भेटिया सो जन निचल थिया आसा महला पंजवा कर चौदवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद ओहो नेहो नवेला अपने प्रीतम स्यों लाग रह रहाओ जो प्रभ पावै जन्म ना आवै हर प्रेम भगत हर प्रीत रचै प्रभ संग मिली जय हो मन दीजै नानक नाम मिलै अपनी दया करहो आसा महला पंजवा मिल राम प्यारे तुम बिन धीरज को ना करै रहाओ सिमरत शास्त्र बहु कर्म कमाए प्रभ तुमरे दर्श बिन सुख नाही वर्त नेम संयम कर थाके नानक साध सरण प्रभ संग वसै आसा महला पंजवा कर पंद्रवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद बिकार माया माद सोयो सूई बूझ ना आवै पगर केस जम उठारियो तद ही कर जावै लोभ बिखिया बिखै लागे हेर वित चित दुखाही खिन भंगना कै मान माते असर जाने नाही रहाओ वेद शास्त्र जन पुकारै सुनै नाही डोरा निपट बाजी हार मुका पछतायो मन पोरा डान सगल गैर वजह भरिया दीवान लेखै ना परिया जेहे कार्ज रह ओला सोए काम ना करिया ऐसो जग मोहे गुर दिखायो तो एक कीर्त गाया मान तान तज स्यानप सरण।

कृपा पाए सहजाए दरसाए अब रातिया गोविंद स्यों संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए गुर ज्ञान मंदर लाए रहसाए नहीं आए सहजाए मन निदान पाए सब तजी मने की काम करा चिर चिर चिर चिर भया मन बहुत प्यास लागी हर दर्शनो दिखावो मोहे तुम बतावो नानक दीन शरण आए गल लाए आसा महला पंजवां को बिखमगार तोरै आस प्यास तो हो।

गुण गोविंद गावो। अन दिनो प्रभ त्यावो भ्रम पीत जीत मिटावो। निद नाम नानक मोरै आसा महला पंजवां। काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम। हर भजन सफल काम रहाओ तज मान मोह विकार मिथिया। जप राम राम राम मन संतना कै चरण लाग। प्रभ गोपाल दीन दयाल पतत पावन पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग। कर भगत नानक पूर्ण भाग आसा महला पंजवां। हर खसोग बैराग आनंदी खेलरी दिखायो रहाओ। खिनहू पै निरपै खिनहू खिनहू उठतायो। खिनहू रस भोगन खिनहू खिनहू तजायो। खिनहू जोग ता बौ पूजा खिनहू परमायो। खिनहू कृपा साधु संग नानक हर रंग लायो। राग आसा महला पंजवां। कर सतारवां आसावरी इको ओंकार सतगुर प्रसाद। गोबिंद गोबिंद कर हां हर हर मन प्यार हां। गुर कया सोचित धर हां अनस्यो तोर फेर हां। ऐसे लालन पायो री सखी रहाओ। पंकज मोसर हां पग नहीं चले हर हां। गहड्यो मूड़ नर हां अन ना उपाव कर हां। तौ निकसै सरन पै री सखी थिर थिर चित थिर हां। बन ग्रिव समसर हां अंतर एक पिर हां। बाहर अनेक तर हां राजन योग कर हां। कहो नानक लोग या लोगी री सखी आसावरी महला पंजवां। मनसा एक मान हां गुरस्यो नेत ध्यान हां। दृढ़ संत मंत ज्ञान हां सेवा गुर चरान हां। तौ मिलिया गुर कृपान मेरे मना रहाओ। टूटे अन प्राण हां रयो सर्व थान हां। लयो जम भयान हां पायो पेड़ थान हां। तौ चूकी सगल कान लैनो जिसम थान हां। पै पावक पार प्राण हां निज कर तिसै थान हां। हर रस रसै मान हां लाथी तिस पुखान हां। नानक सह समायो रे मना आसावरी महला पंजवां। हर हर हर गुनी हां जपिया सह तुनी हां। साधु रसन पनी हां छूटन बिद सुनी हां। पाइय वड पुनी मेरे मना रहाओ। खोजै जन मुनि हां सर्व का प्रभ धनी हां। दुर्लभ कल दुनी हां दुख बिनासनी हां। प्रभ पूर्ण आसनी मेरे मना मन सो सेवी है हां। अलख अपेवी है हां ता स्यों प्रीत कर हां। बिनस ना जाए मर हां गुरते जान हां। नानक मन मान्या मेरे मना आसावरी महला पंजवां। एका ओट गहो हां गुर का शब्द कहो हां। आग्या सत सहो हां मने निदान लहो हां। सुख समाइये मेरे मना रहाओ। जीवत जो मरे हां दुत्तर सो तरे हां। सब की रेन होए हां निरपो कहो सोए हां। मिटे अंदेसिया हां संत उपदेसिया मेरे मना। जिस जन नाम सुख हां तिस निकट ना कदे दुख हां। जो हर हर जस सुने हां सबको तिस मन्ने हां। सफल सो आया हां नानक प्रभ आया मेरे मना आसावरी महला पंजवां। मिल हर जस गाइये हां परम पद पाइये हां। वा रस जो बिदे हां ता को सगर सिद्धे हां। अन दिन जागया हां नानक वट भागया मेरे मना रहाओ। संत भगत होइए हां दुरमत खोइए हां। दस रेन होए हां व्यापै दुख ना कोए हां। भगता शरण पर हां जन्म ना कदे मर हां। अस्त्र से भय हां हर हर जिन जप लय मेरे मना। साजन मीत तू हां नाम दृढ़ाए मूह हां। तिस बिन नाहे कोए हां मने अराध सोए हां। निमख ना विसरै हां तिस बिन क्यों सरै हां। गुर को कुर्बान जाओ हां नानक जपे नाओ मेरे मना आसावरी महला पंजवां। कारण करन तू हां अवर न सुजै मूह हां। करै सो होइए हां सह सुख सोइए हां।
तीर्ज मन पए हां, प्रभ कै दर पए मेरे मना रहाओ। साधु संग में हां, पूर्ण संज में हां, जब ते छुटे आप हां, तब ते मिटे ताप हां, कृपा धारिया हां, पत रख बनवारिया मेरे मना, एहो सुख जानिया हां, हर करे सो मानिया हां, मंदा नाहे कोय हां, संत की रेन होए हां, आपे जिस रखे हां, हर अमृत सो चखे मेरे मना, जिसका नाहे कोय हां, तिसका प्रभु सोए हां, अंतरगत बुझे हां, सबके सब के सब तिस सुझे हां, पत तो उधार लेहो हां, नानक अरदास एहो मेरे मना, आसावरी महला पंजवा एक तुका, ओए परदेसिया हां, सुनत संदेसिया हां रहाओ, जां स्यों रच रहे हां, सब कौ तज गए हां, सुपना ज्यों पए हां, हर नाम जिन लए, हर तज अन लगे हां, जन मैं मर भगे हां, हर हर जन लहे हां, जीवत से रहे हां, जिसे कृपाल होए हां, नानक भगत सोए। एको अंकार सतगुर प्रसाद राग आसा महला नावा, बिरथा कहो कौन से मन की, लोभ ग्रस्यो दसहू दिस्तावत, आसा लाग्यो धन की रहाओ। सुख कै हेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की, द्वारे द्वार स्वान ज्यो डोलत, नै सुधराम भजन की। मानस जन्म्या कार्थ खोवत, लाजना लोक हसन की, नानक हर जस क्यों नहीं गावत, कुमत बिना सह तन की। राग आसा महला पहला, अष्टपदियां कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। उत्तर आव घट सरवरन आवै, बके न बोले हर गुण गावै, जल आकाशी सुन समावै, रस सत झोल महारस पावै, ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे, भरपुर धार आसा बठाउरे रहाओ। सच ब्रत नेम ना काल संतावै, सतगुर शब्द करो जलावै, गगन निवास समाद लगावै, पारस परस परम पद पावै, सच मन कारण तत् बिलोवै, सुबर सरबर मैलन धोवै, जै स्यो राता तै सो होवै, आपे करता करे सो होवै, गुर हिव शीतल अग्न बुझावै, सेवा सुरत पूज चढ़ावै, दर्शन आप सहज कर आवै, निर्मल बाणी नाद बजावै, ज्ञान अंतर ज्ञान महारस सारा, तीर्थ मज्जन गुर विचारा, अंतर पूजा थान मुरारा, ज्योति ज्योत मिलावन हारा, रस रसिया मते कै पाए, तख्त निवासी पंच समाए, कार कमाई खसमर जाए, अवगत नाथ ना लिखिया जाए, जल मैं उपजै जल ते दूर, जल मैं ज्योतरिया भरपूर, किस नेड़े किस आखा दूर, नित गुण गावा देखा दूर, अंतर बाहर अवरना को, ज्योतिष पावै सोफन होए, सुन पारथर नानक कह बिचार, निर्मल नाम मेरा आधार। आसा महला पहला, सब जप सब तप सब जतराई, उजड़ पर मैं राहे ना पाई, बिन बूझे को थाए ना पाई, नाम बिहुने माथे शाई, साच धनी जग आए बिनासा, छूट प्राणी गुरमुख दासा रहाओ। जग मोहे बांधा बहुती आसा, गुरमति एक पय उदासा, अंतर नाम कमल परगासा, तिनको नाही जमकी त्रासा, जग त्रे जित कामन हितकारी, पुत्र कलत्र लग नाम विसारी, बिरथा जन्म गवाया बाजी हारी, सदगुर सेवे करनी सारी, बारह मैं कह कहाए, अंदरों मुक्त लेप कदे न लाए, माया मोह गुरसब जलाए, निर्मल नाम सद हृदय त्याए, तावत रखै ठाकर हाए, सिख संगत कर्म मिलाए, गुरबिन पूलो आवै जाए, नदर करे संजोग मिलाए,
रूड़ो कहो ना कहया जाई या कथ कथो ने कीमत पाई सब दुख तेरे सुख रजाई सब दुख मेटे साचै नाई कर बिन वाजा पग बिन ताला जे शब्द बुझै ता सच निहाला अंतर साच सबे सुख नाला नदर करे राखे रखवाला त्रिपवन सूजै आप गवावै बाणी बुझै सच समावै शब्द विचारे एक लिवतारा नानक तन सवार नहारा आसा महला पहला लेख असंख लिख लिख मान मन मान्या ऐसा सुरत वखान कथनी बदनी पड़ पड़ पार लेखा संखा लेख अपार ऐसा साचा तू एको जान जमन मरना हुक्म पछाण रहाओ माया मोहे जग बादा जमकाल बंदा छूटै नाम समाल गुर सुख दाता अवर ना पाल हालत पालत निभी तुद नाल शब्द मरै ता एक लिवलाए अचर चरै ता परम चुकाए जीवन मुक्त मन नाम साए गुरमुख होए ता सच समाए जिन तर साजी गगन आकाश जिन सब थापी थापो थाप सर्व निरंतर आपे आप किसे ना पूछै पूछै बख्शे आप तू पुर सागर माणक हीर तू निर्मल सच गुणी गहीर सुख मान पेटे गुरपीर एको साहेब एक वजीर जग बंदी मुक्ते हो मारी जग्या नीवर लाया चारी जग पंडित विरला विचारी बिन सतगुर पेटे सब फिर अहंकारी जग दुखिया सुखिया जन कोए जग रोगी भोगी गुण रोए जग उपजै बिन सह पत खोए गुरमुख होवे बूझै सोए महंगो मोल पारिया फार अटल छल गुरमती धार पाए मिलै पावै पैकार नानक नीच कह बिचार आसा महला पहला एक मरै पंचे मिलर होवै हमें जाय शब्द मल धोवै समझ सूझ सहज कर होवै बिन पूजे सगली पत खोवै कौन मरै कौन रोवै ओही करण कारण सब सह सिर तो ही रहाओ मुए कौ रोवै दुख कोए सो रोवै जिस बेदन होए जिस बीती जाने प्रभ सोए आपे करता करे सोए जीवन मरना तारे तरना जय जगदीश परम गत सरना हम बलिहारी सदगुर चरना गुर बोहित शब्द पै तरना निरपो आप निरंतर जोत बिन नामे सूतक जगशोत दुरमत बिन सै क्या कह रोत जन मुवे बिन पग सरोत मुवे कहो सच रोवे मीत त्रैगुण रोवे नीता नीत दुख सुख पर हर सहज सोचीत तन मन सौ पौ कृष्ण प्रीत पीतर एक अनेक असंख कर्म धर्म बहु संख असंख बिन पै भक्ति जन्म बिरंथ हर गुण गावे मिल परमारंथ आप मरे मारे पी आपो पाए थापो थाप सृष्टि उपाई ज्योति तू जात शब्द विचार मिल नहीं प्रात सूतक अगन पखे जा खाए सूतक जल थल सभी खाए नानक सूतक जन्म मरी जय गुर प्रसादी हर रस पी जय राग आसा महला पहला आप विचारे सो परखे हीरा एक दृष्ट तारे गुरपुरा गुरमाने मनते मन तीरा ऐसा सहो सराफी करै साची नगर एक लिवतर रहाओ पूंजी नाम निरंजन सार निर्मल साजरता पैकार सिफत सहज कर गुर करतार आसा मनसा शब्द जलाए राम नारायण कह कहाए गुरते वाट महल कर पाए कंचन काया जोता नूप त्रिपवन देवा सगर स्वरूप मैं सोतन पल्ले साचा खूट पंच तीन नव चार समावै तारण गगन कल तार रहावै बाहर जा तो उल्ट परावै मूर्ख होए ना आखी सूजै जेवा रस ने कया बूजै बेका माता जसों लूजै उत्तम संगति उत्तम होवै गुण कौतावै अवगुण धोवै बिन गुर सेवे सहज ना होवै हीरा नाम जिवे हर लाल मन मोती है तिसका माल नानक परखै नदर निहाल आसा महला पहला
ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਮਨ ਮਾਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਿਲੀ ਮਹਿਲ ਪਛਾਣ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਵਿਚਾਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ਰਹਾਓ, ਐਹ ਨਿਸ ਨਿਰਮਲ ਥਾਨ ਸੁਥਾਨ, ਤਿਨ ਪਵਨ ਨੇ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ, ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ, ਸਾਚਾ ਹਰਖ ਨਾਹੀ ਤੇ ਸੋਗ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਮਾਰਸ ਭੋਗ, ਪੰਚ ਸਮਾਈ ਸੁਖੀ ਸਭ ਲੋਗ, ਸਗਲੀ ਜੋਤ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋਈ, ਆਪੇ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਸੋਈ, ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ, ਢਾਹੇ ਉਸਾਰੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ, ਹੁਕਮੇ ਵਰਤੈ ਜੋਤਿਸ ਭਾਵੈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਬਾਲਕ ਬਿਰਧ ਨਾ ਸੁਰਤ ਪੁਰਾਨ, ਪਰ ਜੁਗਨ ਬੁੱਢੈ ਅਭਮਾਨ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਕਿਆ ਲੈ ਸਨਦਾਨ, ਜਿਸਕਾ ਅੰਤਨ ਸਹਿਜ ਨਾ ਜਾਨਾ, ਭਰਮ ਭੁਲਾਨਾ ਫਿਰ ਪਛਤਾਨਾ, ਗਲ ਫਾਹੀ ਬੌਰਾ ਬੌਰਾਨਾ, ਬੂੜਤ ਜਗ ਦੇਖਿਆ ਤਉ ਡਰ ਭਾਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇਵਟ ਭਾਗੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਨੀ ਲਾਗੇ, ਆਸਾ

गुरमुख राम नाम तृप्ता से खोइत पावो से हरे रहाओ। काम क्रोध मन मोह शरीरा लाभ लोभ अहंकार सो पीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा। अंतर नावन साज पछाण अंतर की गत गुरमुख जाने साच शब्द बिन मैल ना पछाण। निरंकार मैं आकार समावे अगल कला सा साई टकावे सो नर गर्भ जो न आवे। जहां नाम मिले ते जाओ गुर प्रसादी कर्म कमाओ नामे राता हर गुण गाओ। गुर सेवा ते आप शाता अमृत नाम वस्या सुखदाता अंदर बाणी ना मेरा ता। मेरा प्रभु लाए ता को लागे हो मैं मारे सब दे जागे एथे उथे सदा सुख आगे। मन चंचल बिद नाही जाने मन मुख मैला शब्द ना पछाणे गुरमुख निर्मल नाम वखाणे। हर जियो आगे करी अरदास साधु जन संगत होए निवास। केले वेख दो काटे हर नाम परगास कर विचार आचार पराता सतगुर बचनी एको जाता नानक राम नाम मन राता। आसा महला पहला मन मैंगल सक देवाना बन खंड माया मुहे हैराना। ए त्युत जाहे काल के चापे गुरमुख खोज लह कर आपे बिन गुर शब्द मन नहीं ठौरा। सिमराओ राम नाम यत निर्मल अवर त्यागो हमे कौरा रहाओ। एहो मन मुग्ध कहो क्यों रहसी बिन समझे जमका दुख सहसी। आपे बगसे सदगुर मिल काल कंटक मारे सच पे लै। एहो मन कर्मा एहो मन धर्मा एहो मन पैता ते जन्मा सागत लोभी एहो मन मूड़ा गुरमुख नाम जपै मन रूड़ा। गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख त्रिभवन सोजी होई। एहो मन जोगी भोगी तपता पै गुरमुख चीने हर प्रभ आपै। मन बैरागी हो मैं त्यागी घट घट मनसा दुबदा लागी राम रसायन गुरमुख चाख है दर कर महली हर पत राख है। एहो मन राजा सूर संग्राम एहो मन निरपो गुरमुख नाम मारे पंच अपने वस किए हो मैं ग्रास एक तथाए किए। गुरमुख राग स्वाद्यन त्यागे गुरमुख एहो मन भक्ति जागे अनहद सुन मान्या शब्द विचारी आत्म चीन पै निरंकारी। एहो मन निर्मल दर कर सोई गुरमुख भगत पाओ तन होई अह निस हर जस गुर प्रसाद घड़ घड़ सो प्रभ आ जुगाद। राम रसायन एहो मन माता सर्व रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के दास दासा। आसा महला पहला तन बिनसै तन का को कही है बिन गुर राम नाम कतल है। राम नाम तन संग सखाई अहनस निर्मल हर लिवलाई। राम नाम बिन कवन हमारा सुख दुख समकर नाम ना छोड़ो आपे बख्श मिलावन हारा रहाओ। कनक कामनी हेत गवारा दुबदा लागे नाम विसारा जिस तू बख्शे नाम जपाए दूत ना लाग सके गुण गाए। हर गुरदाता राम गोपाला जो भावे त्यों रख दयाला गुरमुख राम मेरा मन पाया रोग मिटे दुख ठाक रहाया। अवर ना औखद तंत ना मंता हर हर सिमरन किल विख हंता तू आप लावे नाम विसार तू आपे राखे कृपा तार। रोग परम भेद मन दूजा गुर बिन परम जपै जप दूजा। आद पुरख गुर दर्शना देख विण गुर शब्द जन्म के लेख देख अचरज रहे बिस्माद घट घट सुर नर सहि समाद। भर पुर तार रहे मन माही तुम संसार अवर को नाही जाकी भक्त हित मुख नाम संत भक्त की संगत राम। बंधन तोरे सहि त्यान छूटे गुरमुखार गुर ज्ञान ना जम दूत दुख तिस लागे जो जन राम नाम लिव जागे। भगत वचल भगता हर संग नानक मुक्त पै हर रंग आसा महला पहला एक तुगी। गुर सेवे सो ठाकर जाने दुख मिटे सत शब्द पछाने। राम जपो मेरी सखी सखैनी सतगुर सेव देखो प्रभ नैनी रहाओ। बंधन मात पिता संसार बंधन सुत कन्या अरनार
बंधन कर्म धर्म हो किया। बंधन पोत कलत मन बिया, बंधन किरखी करे किसान, होमे डन सह राजा मंगे दान। बंधन सबदा अन विचारी, तिप्त नाही माया मोह पसारी, बंधन शासन चैतन जाए, बिन हर भगत न पवी थाए। बंधन भेदबाद हंकार, बंधन बिन सह मोह विकार, नानक राम नाम शरण आई, सतगुरु राखे बंध ना पाई। राग आसा महला पहला, अष्टपदियां करती जा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। जिन सिर सोहन पट्टिया, मांगी पाए संदूर, से सरकाती मुनिया, गल विच आवे धूड़, महिला अंदर होंदिया।

दूता नो फरमाया ले चले पत गवाए जे तिस पावे दे वड्याई जे पावे दे सजाए अगों दे जे चेती है ता कायत मिले सजाए साहा सुरत सवाई गवाई आ रंग तमाशा चाहे। बाप रवानी फिर गई कोर ना रोटी खाए इक ना वक्त खुवाई है इक ना पूजा जाए चौके बिन हिंदवाणिया क्यों टिके कड़े नाए। राम न कबहू चेते ओ हुण कहण न मिले खुदाए एक घर आवे अपने एक मिल मिल पुछे सुख एक ना हो लिखिया बैबे रोवे दुख। जो तिस पावे सोथी है नानक क्या मानुख आसा महला पहला कहां सो खेल तबेला कोड़े कहां पेरी सहनाई कहां सो तेग बंद गाढ़ेरड़ कहां सो लाल कवाई कहां सो आरसिया मोबंके एथे दिसै नाही। एहो जग तेरा तू गोसाई ए कड़ी मैं थापो थापे जर वंड देवै भाई रहाओ कहां सो घरदार मंड मैला कहां सो बंकसराई कहां सो सेज सुखाली कामण जिस वेख नींद ना पाई कहां सो पान तंबोली हरमा होइया शाही माई। इस जर कारण कणी मगुती इन जर कणी खुवाई पापा बाजो होवे नाही मुया साथ ना जाई। जिसनो आप खुवाए करता खुसले चंग्याई कोटी हूं पीर वर्ज रहाए जा मीर सुनिया ताया थान मुकाम जले बिज मंदर मुछ मुछ कोयर रुलाया। कोई मुगल ना होवा अंधा किने ना परचा लाया मुगल पठाना पई लड़ाई रण में तेग बगाई ओनी तुपकतान चलाई ओनी हस्त चढ़ाई जिनकी चीरी दरगह फाटी तिना मरना पाई। एक हिंदवाणी अवर तुरकानी पटियाणी ठकराणी एक ना पेरन सिर खुर पाटे एक ना वस मसाणी जिनके बंके करी ना आया तिनक्यो रैण विहानी। आपे करे कराए करता किसनो आख सुनाई है दुख सुख तेरा पाना होवे किसथे जाई रुवाई है। हुक्मी हुक्म चलाए विकसै नानक लिखिया पाई है एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा काफी महला पहला घर अठवां अष्टपदिया। जैसे गोयल गोयली तैसे संसारा कूड़ कमावे आदमी बंद है कर बारा जागो जागो सूते हो चले अवन जारा रहाओ नीत नीत कर बांदी है जे रहना होई पिंड पवे जियो चल।

कौन रोई, धंधा पिटो पाई हो तुम कूड़ कमावाओ, ओह ना सुनई कत ही तुम लोग सुनावाओ। जिसते सुता नानका जागा ए सोई, जे कर बुझे अपना तानी दना होई, जे चलदा लै चलिया के संपै नाले, तां तन संचो देख के बुझो विचारे। वणज करो मकसूद लै हो, मत पछो तावो, औगुण छोड़ो गुण करहो, ऐसे तत्परावो। धर्म भूम सत बीज कर, वैसी किरस कमावो, तावा पारी जानियो लाह लै जावो। कर्म होवै सतगुर मिलै बूझे बिचारा, नाम वखाणे सुने नाम नामे ब्योहारा। ज्यो लाह तोटा तिवै वाड़ चलदी आई, ज्योत पावै नानका साई वड़ियाई। आसा महला पहला। चारे कुंडा टूंडिया को निमी मेंडा, जे तुद पावे साहेबा तू मैं हूं तेंडा। दर बीबा मैं नीम को कह करी सलाम, हिको मेंडा तू तनी साचा मुख नाम रहाओ। सिद्धा सेवन सिद्ध पीर मांगे रिद सिद्ध, मैं एक नाम न विसरे साचे गुरबुद्ध। जोगी पोगी कपड़ी क्या पवे दसंतर, गुर का शब्द नाची नहीं तत्सार निरंतर। पंडित पांदे जो इसी नित पड़े पुराना, अंतर वस्त ना जाननी कट ब्रह्म लुकाना। एक तप

करै नित तीर्थवासा, आप न चिन्है तामसी कहे पय उदासा। एक बिंद जतन कर राख दे से जति कहावै, बिन गुर शब्द न छूट ही परम आवै जावै। एक गिरही सेवक साधका गुरमती लागे, नाम दान इसनान दृढ़ हर भगत सो जागे। गुर ते दर कर जानिए सो जाए सजाण, नानक नाम न विसरै साचे मन मानै। आसा महला पहला मनसा मने समायले, पहो जल सज तरना या जुगा दयाल तू ठाकर तेरी सरना। तू दा तो हम जाचका हर दर्शन दी जाए, गुरमुख नाम ते आई है मन मंदिर पीजै रहाओ। कूड़ा लालच छोड़ी है तो साच पछाणै, गुर कै शब्द समाई है परमार्थ जाणै। एहो मन राजा लोभिया लुभतो लोभाई, गुरमुख लोभ निवारी हर सिंह बने आई। कलर खेती बीजिया क्यों लाहा पावै, मन मुख सच ना पीजई कूड़ कूड़ गड़ावै। लालच छोड़ो अंधे हो लालच दुख पारी, साचो साहिब मन वसै हो मैं बिखमारी। दुबदा छोड़ कुवाटड़ी मूसोगे भाई, अहनस नाम सलाही है सतगुर सरनाई। मन मुख पत्थर सैल है त्रिग जीवन फीका, जल मैं केता राखिए अब अंतर सूका। हर का नाम निदान है पूरे गुरदिया, नानक नाम ना विसरै मथे अमृत पिया। आसा महला पहला चले चलन हार वाट फटाया, तंद पिटे संसार सच ना पाया। क्या पवी है क्या ढूंढी है गुर शब्द दिखाया, ममता मोह विसरजे अपने कर आया रहाओ। सच मिले सचियार कूण ना पाई है, सचे सोच तलाए बहु ना आई है। मोया कहो क्या रोवो, रोए ना जान हूं रोवो सच सलाए हुक्म पछाण हूं। हुक्मी मजो लिखाए आया जानिए, लाहा पल्ले पाए हुक्म सियाणिए। हुक्मी पैंदा जाए दरगह पानिए, हुक्मे ही सरवार बंदर बाणिए। लाहा सच न्याओ मन वसाइए, लिखिया पल्ले पाए गर्व न्याइए। मन मुखिया सिर मार वाद खपाइए, ठग मुठी कूड़ियार बन चलाइए। साहेब हृदय वसाए न पछोता वही, गुनहा बख्शन हार शब्द कमा वही। नानक मंगै सच गुरमुख कहलिए, मैं तुझ बिन अवरना कोए नदर निहालिए। आसा महला पहला क्या जंगल ढूंढी जाए, मैं कर बन हरी आवला। सच टिकै कर आए शब्दो तावला, जै देखा तै सोए अवर ना जानिए। गुर की कार कमाए महल पछाणिए, रहाओ आप मिलावै सच ता मन भावई। चलै सदर जाए अंक समावई, सच्चा साहिब मन वसै। वसया मन सोई आपे दे वड़ियाईयां, दे तोट ना होई।

सब नावै नौ लोई दी जिस कृपा करे सो पाए। बिन नावै सब दुख है सुख तिस जिस मन वसाए। तू बेअंत दयाल है तेरी सरनाई गुरपुरे ते पाई है नामे वड्याई। अरहाओ अंतर बाहर एक है बहुविध से ट्यो पाई। हुक्मे कार कराईंदा दूजा किस कही है भाई। बुझना या बुझ

क्या कर कह आ जाए। आप पछाण शब्द मरै मन हो तज विकार, गुरसरनाई भज पए बख्शे बख्शन हार। बिन नामे सुख ना पाईऐ ना दुख विचों जाए, एहो जग माया मोहे वे आपिया दूजे भरम पुलाए। दुहागणी पिरकी सार ना जानही क्या कर करें सिंगार, अंदन सदा जल्दिया फिर ऐसे जरव न पतार। सुहागणी महल पाया विचों आप गवाए, गुरसरनाई गुरशब्दी सिंगारिया अपने सह।

दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवरजना। तदै तार कला जिन छोड़ी, हर चीजी जन रंग किया, तिसदा दिया सब नी लिया, कर्मी कर्मी हुकुम पया। नन्ने नाहा भोग नित भोगे, ना डीठा ना संभलिया, गली हो सो हगण भैने, कंत न कबहू मैं मिलिया। पप्पै पातशाहो परमेसर, वेखण काओ परपंच किया, देखे बूझे सबके जाने, अंतर बाहर रव रहया। फफै फाही सब जग फासा, जमकै संगल बंद लया, गुर प्रसादी से नर उबरे, जे हर शरणागत भज पया। बब्बै बाजी खेलन लागा, चौपड़ कीते चार जुगा, जी जंत सब सारी कीते, पासा ढालन आप लगा। पब्बै पालै ऐसे फल पावै, गुर प्रसादी जिन को पौ पया। मन मुख फिरै ना चेतै मुड़े, लख चौरासी फेर पया। मम्मै मोह मरण मधुसूदन, मरण पया तब चेतव्या। काया पीतर यवरो पड़िया, मम्मा अखर विसरिया। यइय जन्म ना होवी कदी, जेकर सच पछाणे। गुरमुख आखै गुरमुख बूझै, गुरमुख एको जाणै। आरारै रव रहया सब अंतर, जेते किए जनता। जनतो पाए तंदै सब लाए, कर्म होवा तिन नाम लया। लल्लै लाए तंदै जिन छोड़ी, मीठा माया मोह किया, खाना पीना समकर सहना, पाणै ताकै हुकम पया। ववै वासदेव परमेश्वर, वेखण कहो जिन वेस किया, वेखै चाखै सबके जाणै, अंतर बाहर रव रहया। अड़ाड़ै राड़ करै क्या प्राणी, तुसै त्यावो जे अमर होवा, तिसै त्यावो सच समावो, ओ सिविटों कुर्बान किया। हा है होर ना कोई दाता, जी

तू सुन हरना कालिया की वाड़ी है राता राम, बेखफल मीठा चार दिन फिर होवे ताता राम। फिर होए ताता खरा माता नाम बिन परताप, ओह जेव सायरो दे लहरी बिजल जिवै चमकै। हार बाज राखा कोई नाही सोए तुझे बिसारिया, सच कह नानक चेतरे मन मरे हर नाम कालिया। पवरा फूल पवंतिया दुखत भारी राम, मैं गुर पूछिया अपना।

मछली विशुन्नी नैन रुन्नी जाल बद्धक पाया, संसार माया मोह मीठा अंत परम चुकाया। भगत कर चित लाए हर सियों छोड़ मनो अंदेसिया, सच कह नानक चेतरे मन जियड़िया परदेसिया। नदिया वहा विशुन्या मेला संजोगी राम, जुग जुग मीठा विस्परे को जाने जोगी राम। कोई सहज जाने हर पछाने सतगुरु जिन चेतिया, बिन नाम हर के परम पूले पचै मुगदिया चेतिया। हर नाम भगत नारदै साचा से अंत ताही रुन्या, सच कह नानक शब्द साचै मेल चिरी विशुन्या। एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला तीजा, शंत कर पहला हम करे साचा सोहला, साचा शब्द सुहाया राम। तन फिर मेल पया प्रभया मिलाया राम, प्रभ आप मिलाया सच मन वसाया, कामन सहजे माती गुर शब्द सिंगारी, सच सवारी सदा रावे रंग राती। आप गवाए हर वर पाए ता हर रस मन वसाया, कहो नानक गुर शब्द सवारी सफल्यो जन्म सबाया। दूजड़े कामन परम पुली हर वर ना पाए राम, कामन गुण नाही बिरथा जन्म गवाए राम। बिरथा जन्म गवाए मन मुख एयाणी औ गुणवंती चूरे, अपना सतगुर सेव सदा सुख पाया ता फिर मिलिया हदूरे। देख पिर विकसी अंदर हो सरसी सच्चा शब्द सुभाए, नानक मिण नावे कामन परम पुलाणी मिल प्रीतम सुख पाए। पिर संग कामन जानिया गुरमेल मिलाई राम, अंतर शब्द मिली सहजे तपत बुझाई राम। शब्द तपत बुझाई अंतर सांत आई, सहजे हर रस चाखिया मिल प्रीत में अपने, सदा रंग माने सच्चा शब्द सुपाखिया। पढ़ पढ़ पंडित